0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: करदर्शन।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपके बीच लेकर आई हूँ ज्ञान की कुछ बातें। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं जिसकी एक सुंदर सी अभिव्यक्ति है, क्षमा। हर मनुष्य की अपनी एक अभिव्यक्ति होती है जिसमें क्षमा एक मुख्य अभिव्यक्ति है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि मेरे बहुत पहले मेरे पास एक मेरी एक फ्रेंड है जो कि जैन धर्म से बिलोंग करती है। उसके कुछ मैसेज आए जिसमें उनके द्वारा पूरे साल किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट या ना देना और दूसरों को मतलब क्षमा याचना की गई थी। तो दरअसल जैन पंथ का एक पर्युषण पर्व मनाया गया जाता है जिसके इसके लिए 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा होता है, जिसके अंतर्गत सभी मातावलंबी जो है क्षमा की भावना रखने का प्रयास करते हैं। हम पाते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म में भी अपने गुनाहों की तौबा करने की और सभी की खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए शबे बारात पर्व, जिसका अर्थ होता है मुक्ति की रात, मनाया जाता है। उनका मानना है कि इस रात को साल भर का लेखा जोखा अल्लाह के लिए पेश किया जाता है। लोग रात भर जाकर इबादत करते हैं। और ईसा मसीह जी ने भी उनका भी कहा है कि वह बाइबल में इस प्रकार से उनका मिलता है कि जिन लोगों ने पाप तुम क्षमा करोगे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। मतलब जिन लोगों के पाप को आप क्षमा करेंगे तो वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिन लोगों के पाप तुम क्षमा नहीं करोगे तो वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब ईसा मसीह जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। तो यानी कि हर धर्म में, हर पंथ में क्षमा की बात करता ही है। हर धर्म क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कहा तो ये भी जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। परंतु हम समझते हैं कि बड़ों को ही नहीं छोटों को भी क्षमा चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं अब तक पश्चिमी देशों में से सुनने में आती थी वैसी ही अब भारत वर्ष में भी सुनाई देने लगी है। एक नगर में एक 9 वर्षीय स्कूली छात्रा द्वारा अपनी शिक्षिका की चाकू से हत्या कर दी गई। इसमें तो मतलब इससे तो यही पता चलता है ना कि क्षमा करने और क्षमा लेने का महत्व छोटे बड़े सभी के लिए बराबर का है। क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए विशाल हृदय चाहिए, सभ्य और विराट हृदय। संस्कृति की एक सुंदर अभिव्यक्ति है क्षमा। क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए भी विशाल हृदय चाहिए। सामान्य शिष्टाचार के कारण या बिना दिल की गहराई के किसी से छोटी मोटी भूल या गलती होने पर क्षमा मांग लेना या कर देना या खेद प्रकट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रास्ते चलते कभी स्पर्श हो तो या किसी की बात समझ न आने पर, अन्य दैहिक कार्य व्यवहार में छोटी गलती होने पर सॉरी कहना अच्छे संस्कार है। परंतु होता क्या है जब किसी से जानबूझकर अपमानित करने के संकल्प से काम क्रोध लोभ अहंकार या विकार व शारीरिक दुर्व्यवहार किया या हृदय भेदी शब्द बाणों की बौछार की, तब क्या हम दिल के स्नेह की गहराई से क्षमा कर पाते हैं क्या? गलती फिर न होगी ऐसा स्वीकार करने के बाद भी गलती करने पर क्या स्नेह का सागर बन स्नेह की रत्नों का भेंट कर दे सकते हैं क्या? हाँ, वृक्ष की तरह पत्थर स्वीकार करके फल दे सकते हैं क्या? यदि इसका उत्तर हाँ है तो सचमुच हम क्षमा और स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा शिव की सच्ची देवी संतान है।
तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आगे की चर्चा हम जारी रखते हुए एक सुंदर अभिव्यक्ति क्षमा की ओर। सक्षम होते हुए भी क्षमादान महानता है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अर्थात क्षमा उसे ही शोभा देती है जिसके पास विष हो। जहाँ हम सक्षम नहीं थे वहाँ मजबूरी वश दिल पर पत्थर रखकर किसी को क्षमा कर देना या क्षमा मांग लेना, यह भी अच्छी बात है क्या? परंतु सक्षम होते हुए भी किसी के दुर्व्यवहार पर भी उसे ना समझ समझ कर क्षमा दान देना, आत्मवत सर्वभूतेषु वाली भावनाएं स्वतः ही दिल की गहराई को से जागृत हो जाना वास्तव में महानता है। ऐसे सच्चे संत वास्तव में उस चंदन की लकड़ी की तरह है जो सर्व गुणों से सुगंधित है, जिस पर अनेक विषधर लिपटे रहने पर भी वह सुगंध देने की गुणों का त्याग नहीं करती। एक है समदर्श त्याग नहीं करती, एक है समदर्शी समव्यवहारी।

एक है संदृष्टा ही क्षमाशील। जितना जरूर है काम की कालीमा के वश दुशासन कीचक किया भस्मासुर वन नारी का अपमान करने पर क्षमा कर पाना, धरती माँ की तरह गड्ढा करने वाले को भी धारिणी बनकर रत्न फल प्रदान करना कितना विराट हृदय चाहिए। आज गाली देने वाले को गले लगाना तो दूर की बात है, जिन्हें हम स्वजन मानते हैं उनके प्रति एक शब्द भी किसी अन्य द्वारा कहे जाने पर अधिकतर हम शुभ भावना के पुष्प छिपाकर रख लेते हैं। कई बार बात तक करना पसंद नहीं करते, वह जीवन पर्यंत वह क्रम चलता है तो यह तो क्रम चलता रहता है। मेरा कोई अपना नहीं, कोई पराया भी नहीं, सभी के लिए समदर्शी समव्यवहारी समदृष्टा भाव वाला ही किसी को भी किसी भी गलती पर क्षमा कर सकता है। एक होता है दया भाव, अपकारी पर भी उपकार करने की भावना दया भाव से ही जागृत होती है, होगी ना। अभी नादान है, ना समझ है, भले ही बुद्धिमान है लेकिन कहते हैं किसी अवगुण की वशीभूत है। ऐसे स्मरण मात्र से गलती करने वाले को क्षमा करने के लिए का भी भाव आ जाते हैं। तो क्या होता है, एक बार एक साधु पुराने से फटे हुए कपड़े पहनकर राख शरीर में लपेटे एक गांव से गुजर रहा था। गांव के शैतान बच्चों ने उस पर रेत कंकड़ फेंकने शुरू कर दिए, परंतु साधु ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और चलता रहा। तो आगे एक व्यक्ति ने भी एक पत्थर बच्चों की तरह साधु के ऊपर फेंक दिया जो सिर में जाकर लगा। साधु रोने लगा। एक समझदार व्यक्ति ने पूछा कि जब बच्चे धूल कंकड़ मार रहे थे तब आपने कुछ भी नहीं कहा, जब आप अब आप रो रहे हैं तो क्या कहता है। साधु ने कहा कि बच्चे तो नादान थे, ना समझ थे, परंतु यह तो बड़ा था, समझदार था। हम समझते हैं कि ऐसे स्थिति में समझदार और उम्र में हाँ बड़े में को नादान समझकर क्षमा कर देने में बड़ी आत्मिक संतुष्टि होती है। एक होता है विश्व बंधुत्व के भाव, एक होता है विश्व बंधुत्व के भाव मतलब किसी के द्वारा क्रोध में आकर दुर्व्यवहार या शारीरिक उत्पीड़न किए जाने पर क्षमा केवल वही कर सकते हैं जो समस्त संसार को अपना समझते हैं, हर कदम पर शिक्षा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने ही माता पिता बंधु बनो बांधो द्वारा कुवचन कहे जाने पर जिस प्रकार सहन कर लिया जाता है उसी प्रकार विश्व बंधुत्व की भाव जागृत होने पर क्षमा स्वतः ही कर दिया जाता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे फिर आकर मिलते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। क्षमा एक सुंदर अभिव्यक्ति, सभी के प्रति सम्मान भाव या समान भाव होने पर ही क्या होता है, अवगुण चित्त पर नहीं आएगा, यानी कि और क्षमा कर सकेंगे, मतलब परम पिता परमात्मा शिव के अव्यक्त महावाक्यों के अनुसार सम्मान देने वाला सबके दिल में मान्य स्वतः बन जाता है। सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को सम्मान देना देना नहीं लेना है। ब्रह्मा बाबा ने आदि देव होते हुए भी, ब्रह्मा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सभी बच्चों को सदा सम्मान दिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह के बीज होने। विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी आत्मा भी हम तभी बन सकते हैं, तभी हम इसका अनुभव करते हैं जब हम आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हैं। सम्मान देने वाले बच्चे ही आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है, क्योंकि जिनको सम्मान देता है उन द्वारा दिलों की क्या होती है, दुआएं मिलती है जो सहज स्वमान याद में दिलाती है। और अगर सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं तो सम्मानदाता बनो। हाँ, कोई कैसा भी है इसे सम्मान देना है, ऐसे नहीं कोई सम्मान दे तो मैं दूं, नहीं, यह तो बिजनेस हो गया ना, दाता नहीं हुआ। सम्मान दो तो मन में संकल्प रहता है, हाँ, यह हो, यह बदले में, यह ऐसा करे, वह करने लगे लग जाए। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना। एक होता है, एक है क्षमा करना, दूसरा है क्षमा मांग लेना। तो इसमें क्या होता है, केवल क्षमा करना ही नहीं लेकिन गलती होने पर क्षमा मांग लेने के लिए देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। हाँ, और हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हम तो बड़े हैं, यह कोई हमारा बॉस है क्या ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचने वाले लोग गलत होने पर भी क्षमा मांगना तो दूर, झुकना भी पसंद नहीं करेंगे। केवल मुख द्वारा क्षमा मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु हृदय से अपनी कमी को स्वीकार कर क्षमा मांग लेने वाले ही अधिक प्रकार के टकराव और तनाव से सहज मुक्ति मिल जाती है उन्हें। गलती स्वीकार करने पर गलतियों को कई बार क्या होता है, माफ भी हो जाती है। कितनी गलतियां जो होती है वो माफी भी हो जाती है उसकी, जो दिल से अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। और जिन्हें पश्चाताप होता है ऐसे क्या होता है, सह हृदय माफी मांगने में संकोच करते हैं, नहीं करते हैं। और लोग उन्हें क्या करते हैं, उन्हें माफी कर देते हैं। कभी कभी हम गलतियों पर पर्दा डालने के लिए क्या करते हैं, झूठ छल कपट का सहारा लेते हैं। बाद में उस गलती को सार्वजनिक हो जाने पर हम क्या करते हैं, कोई भी माफ करने पर संकोच करता है। लोग भले ही स्वयं कैसे भी हों, हाँ, परंतु दूसरों से सच्चाई की अपेक्षा अवश्य रहती है। नारियों में भक्त शिरोमणि मीरा हो या पश्चिमी विद्वान सुकरात, दोनों ने ही जहर के क्या कहते हैं, जहर के प्याले को खुशी से पी लिया था और क्षमा कर दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक आदिदेव ब्रह्मा बाबा ने समाज में इतनी प्रतिष्ठा उनकी होते हुए भी इस ज्ञान यज्ञ का विरोध करने वालों, स्वयं को गाली देने वालों, लाखों भवन में आग लगाने वालों को, कलंकित करने वालों को भी क्या किया, क्षमा किया। लोगों की एक धारणा यह भी है कि भारत के गुलामी राजा पुरु और पृथ्वीराज चौहान द्वारा आक्रमणकारियों के लिए नरमी और क्षमा के कारण हुई, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी को क्षमा करने से नहीं, वरन ऐसा होता है आपसी वैमनस्व और एक होता है कि के कारण लोगों के द्वारा उनके साथ किए गए
एक विश्वासघात के कारण ऐसी घटनाएं घटित हुई। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। और चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं क्षमा एक सुंदर अभिव्यक्ति की ओर। दिल को मिलता है बड़ा सुकून, दिल को मिलता है सुकून किस चीज से? क्षमा मांग लेने से और फिर क्षमा प्राप्त हो जाने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जीवन कमल पुष्प समान खिल उठता है, मन मयूर नाच उठता है और शारीरिक बीमारियों पर भी नियंत्रण हो जाता है। इसी तरह एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति साधु के पास पहुंचा और कहा कि वह बहुत दुखी है। साधु जानता था कि इसने बहुत सारे अपराध किए हैं। उसका हाथ देखने के बहाने कहते हैं, उन्होंने बताया कि आपकी आयु अब केवल एक पक्ष यानी कि 15 दिन ही शेष रह गए हैं। एक सप्ताह बाद आ जाना, तुम्हें सुख का मार्ग बता दूंगा। वह व्यक्ति चला गया, परंतु जाने के बाद उसने यह सोचकर कि अब तो जाना ही है तो क्यों ना जिससे भी धन का हिसाब है वह चुका दिया जाए, जिस चीज के साथ अपराध हुए हैं उनसे माफी मांग ली जाए। उसने यही किया। सातवें दिन खुशी खुशी पहुंचा और साधु को बताया कि जिस चीज से के साथ मैंने गलत किया था या उनसे मैं माफी मांग ली है और जिनसे भी मेरा हिसाब किताब था वो सारे हम चुका दिए हैं। अब मैं पूर्णता क्या हूँ, निश्चिंत हूँ और खुश हूँ। मौत चाहे अब आ जाए, कोई चिंता नहीं। साधु ने कहा कि अब आप निश्चिंत होकर जियो, यही सुख का मंत्र है। तुम्हारी आयु अभी बहुत शेष है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम अपने मन में अगर किसी के प्रति कुछ गलत भाव रखते भी हैं और हमें पता रहता है कि हमने ये गलतियां की, तो उसकी चुप्त हो जाने से हम खुद ब खुद क्या होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। तो अंत में यही निवेदन है कि यदि अवश्य भावी महाभारत को किसी के क्षमा मांगने और क्षमा करने मात्र से रोका जा सकता है तो हे आत्मन क्या करना है? अभी तक जो तुमने लोगों के दंश सहे हैं उन्हें भुलाकर सभी को अपना समझकर स्वयं को और सृष्टि की जितनी भी जीवात्माओं को थोड़े दिनों की थोड़े दिनों का मेहमान मानकर क्षमा करते चले और जाने अनजाने में भी किसी के प्रति कुछ स्वयं से गलत हुआ है उसे हृदय से स्वीकार कर माफी क्या करना है, माफी लेते चले तो घाव समय द्वारा भी भर जाएंगे और वे हमारी शुभ भावना क्या होगा, शुभ भावना रूपी मरहम से तत्काल ही भर जाएंगे। किसी ने कितना अच्छा कहा है, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी आसान कर ली, किसी को माफ किया, किसी से माफी मांग ली। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर, पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे थे सेल्फ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के कई कोर्सेज हम करते आ रहे हैं और अगर करियर में है तो बहुत सी बातें जहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, एंगर मैनेजमेंट की, लेकिन अभी तक हम ये समझ नहीं पाए थे कि सेल्फ को भी मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ को ही नहीं पहचानते थे। खुद की पहचान के साथ साथ जहाँ मैनेज करने की बात आई, वहाँ पहली बात जो आई थी वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करने की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अपने प्रति सबसे पहले जिम्मेवार हूँ और उसके बाद बाकी जिम्मेवारियाँ मेरे सामने आती हैं। अगर पिछली कड़ी को एक बार थोड़ा सा और देखें तो हमने बात की थी कि अगर मैं अपनी खुशी और अपने दुख की जिम्मेवार हूँ तो फिर मैं किसी और की खुशी या दुख की जिम्मेवार नहीं हो सकती। आज थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से पिछले

0: एपिसोड में आपने बताया था कि मेरे साथ मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जो जो भी इमोशन क्रिएट करती हूँ, जो भी थॉट फीलिंग क्रिएट करती हूँ, उसकी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। तो अगर मैं खुश हूँ अपनी वजह से हूँ, मैंने क्रिएट किया, और अगर मैं दुखी हूँ तब भी मैंने क्रिएट किया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ हमने ये बात की थी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स भी आया है, बहुत से लोगों के मन में ये बात उठ रही है कि जब दूसरा दुखी होता है और वो वजह मैं बन रहा होता हूँ कि मेरी वजह से हुआ, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई या कुछ हुआ, तो वो दुखी और वो बार बार मुझे कह रहा है आई एम यू नो सैड बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ, तो वो मुझे कैसे इफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी तरफ अगर मैं या कोई और किसी और के दुख के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता, तो फिर तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी तरह से करता जाऊँ। तो ये दो बातों को थोड़ा हम और चाहेंगे कि अगर हम खुले।
1: पहली बात तो अपने को समझ लें, जब ये फिट एकदम क्लियर हो जाता है कि आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर एवरीवन इज द क्रिएटर ना, इफ आई एम द क्रिएटर यू आर योर क्रिएटर, तो हर एक अपना अपना क्रिएटर हो गया ना, हम संकल्प हमारी रचना है। जब सबसे पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि मैं अपने संकल्पों का रचयिता हूँ, सो आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन आई एम द क्रिएटर ना। यस, सिचुएशन ट्रिगर तो होती ही है, डेफिनेटली है कि जब तक परिस्थिति आती नहीं, इट्स लाइक दिस स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स, तो स्टिम्यूलस तो आएगा, वो व्यक्ति है, परिस्थिति है, वट एवर, स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स, बिटवीन द टू फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स, ये बॉक्स तो आ रहा है ना बीच में। और इसीलिए देखा जाता है एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग हैं, लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। एक ही ट्रेजेडी में अलग अलग लोग हैं, रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक कपल है जिनसे मिलना हुआ कुछ समय पहले, उनके 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ा, 2-year-old child died, stimulus, the death of a child, young baby, बड़ी बात है ना, इससे बड़ी बात कहेंगे तो क्या हो सकती किसी के लिए। लेकिन अब दो लोग हैं, दोनों के सामने सेम स्टिम्यूलस, अब दोनों कौन है, पेरेंट्स है, तो दोनों के लिए स्टिम्यूलस जो आया है वो इक्वली हैवी है, इक्वली चैलेंजिंग है, दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अगर स्टिम्यूलस रिस्पॉन्सिबल है तो दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अब इसमें हमने देखा कि एक जो वाइफ है उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए लॉस बड़ा नहीं है या उसको कुछ लग नहीं रहा कि मेरा बच्चा चला गया, ऑफ कोर्स द लॉस इज देयर, लेकिन फिर सिचुएशन को तो एक्सेप्ट करना ही होगा, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आप फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो एक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड मूव्ड ऑन, यू नो, चाहे वो अपने जॉब में ऑक्यूपाइड है या लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, स्वीकार कर लिया है कि ये मेरे साथ हुआ है। द फादर ऑफ द चाइल्ड एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे अब खुश रहने का कोई हक नहीं है, दैट इज द रिस्पॉन्स, सेम स्टिम्यूलस, दो रिस्पॉन्स, शी सेज आई हैव अंडरस्टूड, नॉट इन माई कंट्रोल, आई हैव टू मूव अहेड, ही सेज आई विल नेवर बी हैप्पी, आई हैव नो राइट टू बी हैप्पी, सेम सिचुएशन डिफरेंट रिस्पॉन्स। और सिंपल लेवल पर ये तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है, आप एक ऑफिस में देख लो, हम सपोज 10 लोगों की एक टीम है, एक ही बॉस है, एक बॉस ने आज एक एक करके सबको बुलाया, सपोज हम सब ने एक गलती कर ली, एक एक को बुलाया, डांट दिया, एक ही रिस्पॉन्स होगा सबका, स्टिम्यूलस एक ही है, परिस्थिति एक ही है, रिस्पॉन्स हर एक का अलग अलग। तो जब हम हर सीन में ये देखते हैं कि सेम सिचुएशन अलग अलग लोग अलग अलग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स कौन क्रिएट करेगा,
0: हम खुद लोग, yes.
1: जितना भी हम दर्द में जाएंगे हम सब उस परिस्थिति को ब्लेम कर रहे हैं। लेट्स से बॉस से डांट पड़ी तो हम अपनी अपनी सीट पर चले गए, किसी को 5 मिनट लगा ठीक होने में, किसी को 5 घंटे लग गए, किसी को तो 5 दिन लग जाते हैं ठीक होने में कि क्यों मुझे डांटा, अलग अलग रिस्पॉन्स, राइट। लेकिन जो 5 मिनट भी अपसेट है या 5 दिन भी अपसेट है, दोनों ब्लेम किसको करते हैं,
0: बॉस को।
1: अब दर्द का लेवल तो अलग अलग है, लेकिन दोनों ब्लेम किसको कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ये सोच रहे हैं कि मेरे दर्द का कारण देयर। नाउ हियर आई हैव टू अंडरस्टैंड आई एम द क्रिएटर नॉट द बॉस, द बॉस इज द स्टिम्युलस व्हिच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड। तो आप कोई भी परिस्थिति

0: में देख लो।
1: अच्छा, तो मतलब बात ये आई कि किस बॉस ने डांटा, सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, बॉस ने डांटा, जायज, मतलब ये बात ये कही जाती कि वो इट विल हिट, ओके, जो जो भी
0: बॉस
1: उन्होंने,
0: इज नॉट गोइंग टू हिट।
1: नो नो, व्हाट एवर इज गोइंग टू से कम्स टू मी, एंड ऑफ कोर्स आई विल नॉट लाइक, दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स, इज माई रिस्पॉन्स ऑल्सो, बट हाउ डू आई शील्ड इट देन? सी, इफ हिज रिएक्शन, मतलब वट एवर ही हैज रिएक्टेड, मैं उससे अफेक्ट ना हूं, ऐसे कैसे हो सकता है?
0: नहीं, ये बात नहीं है। आपने जो कहना है वो आपने किया। लेट्स से यू आर माय बॉस जस्ट नाउ, ओके। सो आपको जो कहना है आप कहेंगे। पहली बात, आप उस बेसिस पर कहेंगे जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है अभी। कभी-कभी गलती तो इतनी होती है, लेकिन आपका ये मूड ठीक नहीं होगा, सो यू आर जस्ट गोइंग टू रिएक्ट। बट मुझे पहली बात ये समझना होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो आपकी क्रिएशन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो इतना जोर जोर से शोर मचा दिया, दैट्स बिकॉज आप दर्द में हैं, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, नॉट बिकॉज यू हेट मी। द फर्स्ट थिंग वाई आई गो इन टू पेन इज इवन इन अ बॉस कोलीग, इवन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अब सपोज हस्बैंड पूरा दिन ऑफिस से आए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस, आके वाइफ को डांट दिया, जोर से कुछ कह दिया, तो वाइफ, इफ शी अंडरस्टैंड्स कि ही रिएक्टेड लाइक दिस बिकॉज ऑफ हिज ओन पेन, बिकॉज वो दर्द में है, शोर कौन मचाता?
1: जो दर्द में
0: जो दर्द में होता है। लेकिन बुरा उसको इसलिए लगता है, मुझे ऐसा कहा, मतलब वो मुझसे नाराज है, मतलब वो मुझसे नफरत करते हैं, मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते। कंक्लूजन हो गया, तो आई गो इन टू पेन। वंस आई गो इन टू पेन, आई कांट अंडरस्टैंड दैट यू आर इन पेन।
1: अच्छा, और ये जो सारे थॉट्स ये मैंने क्रिएट किए थे,
0: ऑफकोर्स,
1: उन्होंने जो कुछ किया वो तो किया है क्या,
0: या
1: उनके करने से, उनकी क्रिएशन
0: जो
1: से मैंने
0: मैंने किया,
1: क्रिएट किया?
0: तो फिर हम वही कह रहे हैं ना बार बार
1: हाँ,
0: कि सिचुएशन, सी द हस्बैंड इज देयर, द बॉस इज देयर, वट एवर, समबडीज डेथ इज देयर, बट उसके सामने एक एक थॉट जो क्रिएट किया वो किसने क्रिएट किया?
1: वो मैं, बट अब वो सिचुएशन ही ऐसी है, तो थॉट में दूसरा कैसे क्रिएट,
0: तो
1: मैं ये
0: फिर हम
1: थॉट
0: अभी
1: क्रिएट
0: कह रहे हैं
1: करूं
0: ना कि वही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग थॉट्स
1: तो
0: क्रिएट करते हैं।
1: मैं बेस्ट रिस्पॉन्ड करूं?
0: दैट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सिचुएशंस अलग अलग आनी है। लाइफ इज दैट, अलग अलग सीन्स आने हैं। हर परिस्थिति में व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर मी?
1: एंड इफ दे स्टार्ट स्ट्रेट अवे ब्लेमिंग यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल.
0: हाँ, क्योंकि अगर मैं दर्द में चली गई, आपने मुझे गुस्सा किया, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कोई चॉइस है, मैंने दर्द क्रिएट किया, तो मैं किसको जिम्मेवार ठहराऊंगी? तो आपको जिम्मेवार ठहराऊंगी, तो आपसे नफरत करूंगी, फिर चेंज किसको होना चाहिए?
1: मुझे
0: सी, दैट्स हाउ द होल विशियस साइकिल अगेन गोज एंड अगेन। आई कीप टॉकिंग अबाउट यू हैव टू चेंज एंड डोंट बॉदर दैट आई हैव टू चेंज, बिकॉज आई थॉट मैं जो दर्द क्रिएट किया उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था?
1: वो व्यक्ति था,
0: इसीलिए हमने कहा बार बार भी ये सेंटेंस अगर ले लो ना, दैट यू आर द क्रिएटर, यू आर द
1: लेकिन
0: क्रिएटर,
1: उन्होंने तो दे डिडंट बिहेव, ही डिडंट बिहेव राइटली विद मी,
0: या बट डिड आई रिस्पॉन्ड राइटली?
1: हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड? ओके,
0: यस, अग्रीड। वी आर नॉट सेइंग कि किसी का बहुत जोर जोर से चिल्लाना या बहुत, वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो किया सो किया, अब मैंने क्या करना है? अटेंशन जब इस तरफ आएगी तभी तो।
1: तो उस तरफ तो आती नहीं है. यस,
0: एंड फिर मैंने सोचा कि मैंने जो थॉट्स क्रिएट किए वो सारे इसलिए क्रिएट हो रहे थे क्योंकि उन्होंने गुस्सा किया,
1: क्योंकि स्टिमुलेट कहीं हुए. ओह गॉड, यस.
0: तो फिर किसको चेंज होना चाहिए? उनको। इट्स वेरी डीप रूटेड, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ। इफ आई कैन से उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कैन आई ऑल्सो क्रिएट अ थॉट, वो इतने दर्द में है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो मेरे से नाराज नहीं है, एक्चुअली वो कोई और पेन में है। लेट मी फाइंड आउट दैट इट कुड बी अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। इट कुड बी अ रिस्पॉन्स कि हाँ वो दर्द में है, लेकिन मैं अपना ध्यान रख लूं ताकि अपना ध्यान रख के मैं उनका भी ध्यान रख सकती हूँ। डिफरेंट रिस्पॉन्स।
1: बट ही इज शाउटिंग एट मी, यू नो, ही इज अक्यूजिंग मी, ही इज सेइंग सो मेनी बैड थिंग्स टू मी, ही इज
0: ही
1: टेलिंग
0: इज
1: मी दैट यू आर
0: ओनली
1: नॉट
0: थ्रोइंग
1: गुड.
0: आउट हिज फ्रस्ट्रेशन एंड हिज पेन एंड आई कंज्यूम दैट पेन।
1: सो आई हैव टू, यू नो, प्रोटेक्ट माई सेल्फ. सी
0: आई
1: अगेन,
0: कंज्यूम एंड क्रिएट एंड वी स्टार्ट विद इवन वॉचिंग द टेलीविजन, वॉचिंग अ मूवी। आप देखो ये तो फिर भी हमारे रिश्तेदार है ना, वॉट अबाउट वो जो एक्टर्स जो टीवी पर है या जो आप मूवी में है, वहां वो गुस्सा करते हैं बुरा हमें लगता है यहाँ बैठकर, वहां कोई शरीर छोड़ता है रोते हम हैं यहाँ बैठकर, क्या कर रहे हैं. हाउ मेनी पीपल सिट एंड क्राई विद द मूवी?
1: आई डू दैट.
0: या यू डू दैट. सो सी दैट्स फ्रॉम वेयर द हैबिट इज गोइंग वेरी डीप. कि कैसे हमारी इमोशंस जो हैं वो हम दर्द को कैसे कंज्यूम कर लेते हैं कि वो दर्द में है लेकिन उन्होंने हमें वो दर्द नहीं दिया. वो उनका अपना दर्द था जो उन्होंने बाहर निकाला. जब मूवी भी है, चलो अब तो सामने तो कोई नहीं है ना, वो तो स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ हम क्यों रो रहे हैं? ये किसने क्रिएट किया? वो एक्टर ने थोड़ी क्रिएट किया आके.
1: वो तो हमें आके कुछ भी नहीं कह रहा.
0: अब उसी सिनेमा थिएटर के अंदर सब लोग तो नहीं रो रहे ना. सो एवरीवन इज क्रिएटिंग देयर ओन थॉट्स. इसको आप जितना हर सीन में देखते जाओगे ना, यू विल एंजॉय द डे. यू विल एंजॉय क्योंकि आप देखते जाओगे, आई एम क्रिएटिंग, आई एम क्रिएटिंग.
1: मैंने क्या क्रिएट किया?
0: यू नो इट्स वेरी नाइस एंड दिस इज सेल्फ अवेयरनेस. इट डजंट मीन कि हम फर्स्ट डे में परफेक्ट हो जाएंगे, बट देन द जर्नी बिगिंस. कि ये जो अभी अभी मैंने जेलसी का थॉट क्रिएट किया, ये किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया. नहीं, ये उसकी वजह से. ना, मैंने क्रिएट किया. मैंने क्रिएट किया. ये अभी जो
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी. यस.
0: ये अभी अभी जो हर्ट हुआ, कौन हर्ट हुआ? मैं हर्ट हुई. किसने क्रिएट किया? लेकिन उन्होंने बोला. हाँ, उन्होंने बोला. हर्ट किसने क्रिएट किया? दिस इज टॉकिंग टू माई सेल्फ. एंड जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे, हमारा रिश्ता अपने आप से
1: वेरी स्ट्रांग हो जाएगा.
0: I start looking after myself. It doesn't mean that day one I will become pain free. No, it's not going to happen.
1: No, yes, yeah. I continue to react, yeah. Actually.
0: But the journey has begun. The journey has begun ke hum apne saath apne upar dekhna shuru kar dete hain. Abhi bhi hurt honge kabhi kabhi, abhi bhi gussa aayega, lekin blame band ho jayega. उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से. ना ना, मेरे रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स. डू आई हैव अ चॉइस? यस. व्हेन डू आई वांट टू चेंज? नाउ. कम ऑन, यू नो. सो यू स्टार्ट वर्किंग. आप अपने कोच बन जाते हैं. जैसे गिरा, कौन गिरा? मैं गिरी. किसकी वजह से गिरी? अपनी वजह से. उठो फिर, चलो मूव दिस. सो कॉन्स्टेंटली फिर आपका अटेंशन किस पर होने लग जाता है?
1: अपने ऊपर.
0: ये मेडिटेशन है ना. दिस इज वॉट इट इज. अभी तो अपने लिए टाइम नहीं था ना, क्योंकि सारा ध्यान तो इसको इसको इसको सबको चेंज होना था. तो इतने लोगों की तरफ ध्यान था, तो अपने ऊपर नंबर ही नहीं आया मेरा अपने ऊपर ध्यान रखने का. अब मुझे जब समझ में आया कि और कोई नहीं क्रिएट कर रहा है.
1: ओ वेरी गुड. यू नो, सो सिचुएशंस को लेके जो टेंशन होती है, जो इनसिक्योरिटी है, वो सब आई कैन स्टॉप डूइंग दैट एक्चुअली.
0: ऑफ कोर्स,
1: यू नो, बिकॉज़ आई एम क्रिएटिंग इट. आई एम सो इनसिक्योर, आई एम फीलिंग सो टेंस, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट. So it's like I can do it. I can stop it now, right now, because I am creating it.
0: Every time, this is very deep. इसको practice करना, ये एक बहुत बड़ी, जिसको कहे ना, liberation हो जाती है blame culture से, कि दूसरे जिम्मेवार हैं, दूसरे. I can never be happy then. I can never be happy. Now when I start looking at myself, I am creating. I am creating. होगा दर्द कभी कभी, लेकिन ठीक होने में कितना time लगेगा?
1: हाँ, because the moment this thought, but it has to rub in actually.
0: इसलिए एवरी डे, एवरी डे आई एम द क्रिएटर. सम पीपल से, लेकिन आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं. यस, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स, क्योंकि अपनी जीवन का जिम्मेवार मैं हूं, वो अपनी जीवन के जिम्मेवार हैं. तो वो जो क्रिएट कर रहे हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मैं जो क्रिएट करूंगा
1: मैं अपने लिए. लेकिन अगर वो गलत करते जाए, सपोज हमारे बच्चा है या कोई भी है, वो गलत पे गलत गलत पे गलत करता जा रहा है, तो At least I achha, but I don't have to take create the pain, but I have to create this thought that this is wrong.
0: Yeah, I can.
1: This action is wrong.
0: I can tell him what is right to do, but that doesn't mean I have to go in pain. You know, for example, bachcha ulta jawab de diya, thoda sa rudely baat kar diya. So I even just recently at a program, we had 2 days program. तो एक दिन हमने ये टॉपिक डिस्कस किया कि आज सारा दिन स्टेबल रहना है, और नेक्स्ट डे वी वर गोइंग टू आस्क कि व्हाट इज द रिजल्ट. तो एक यंग मदर, शी केम एंड शी सेड कि मैं जैसे ही प्रोग्राम के बाद घर पहुंची, तो मेरे को लगता है 3 या 4 साल की डॉटर उसकी, तो वो मेरे साथ बहुत गुस्सा थी कि मैं उसको प्रोग्राम में नहीं लेके गई, मैं घर छोड़ गई थी उसको इतने घंटे के लिए. तो मैं जैसे ही पहुंची, वो मुझसे बहुत रूडली बात करने, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, तो शी सेड वो इतना रूडली बात किया. शी सेड मैंने एक बार उससे प्यार से बात किया कि बच्चे मैं तुमको शाम को ले जाऊंगी, उसने फिर से किया. शी सेड क्योंकि मुझे याद था कि आज मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है. शी सेड उसने 3 बार ऐसा किया, और मैंने 3 बार अपने ऊपर ध्यान रखा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है. एंड शी सेड द मैजिक वाज वो ठीक हो गई. शी सेइंग दैट वाज लाइक रियलाइजेशन हिट मी. शी सेड क्योंकि पहले अगर वो मेरे साथ इस तरह से रूडली बात करती तो आई वुड हैव शाउटेड बैक एट हर कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है, यू नो, या कभी तो जोर से उसको एक मैं लगाई देती उस टाइम. शी सेइंग वो ठीक हो गई. शी सेड हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बच्चों को ठीक करना. लेकिन हम ठीक कैसे करते हैं? जैसे एक बच्चा रूडली बात कर रहा है, हम उससे और रूडली बात करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. हम उसको डांट कर बताते हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? रूडली बोलकर उसको बोल रहे हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए. हाउ विल इट वर्क? सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्स. अब वो बच्चा रूडली बात कर रहा है, वो राइट कर रहा है रॉन्ग कर रहा है इज नॉट द क्वेश्चन एट ऑल. वो स्टिम्यूलस है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्स.
1: इन फैक्ट सो राइटली सेड दैट हम रूडली बोल के उनको बोलते हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए.
0: वो गुस्सा कर रहे हैं, हम गुस्सा करके उनको बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्रोल जाकर उनको बोलते हैं डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. हाउ विल इट वर्क? हाउ विल इट वर्क? लेकिन हम उस टाइम क्यों आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं वो स्टिम्युलस ऐसा है कि मुझे इस तरह से डिस्टर्ब तो होना ही चाहिए. अगर मेरा बच्चा रूडली बात करे तो मैं क्या डिस्टर्ब नहीं हूं? सो मेरे डिस्टर्बेंस का कारण कौन? आप. द डे दिस थिंग स्टार्ट सिंकिंग इन कि आसपास मेरे चाहे कोई कुछ भी करे फिर भी रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, तो सारा ध्यान किस पर आ जाएगा?
1: अपने ऊपर.
0: माय रिस्पॉन्स. एंड दैट फॉर दैट लेडी दैट डे इट वाज लाइक शी सेड दिस इज द वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन. आई हैव अंडरस्टूड. एंड इट वाज हर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इट वाज नॉट थियोरी. शी सेड इस तरह से तो बड़ा करना है इनको, हमें सिर्फ अपना ध्यान रखना है, वो तो अपने आप ठीक हो गई. शी सेइंग और यही मैं अगर उसको बोल के ठीक करने की कोशिश करते तो ध्यान किस पर रखना था? रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की नहीं लेनी है. हमने क्या सोचा? बच्चे को ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने को ठीक रखना, दूसरों को सुधारना हमारी जिम्मेवारी हो चुकी है. Without taking care of myself.
1: My response, oh, very true. That is what stability is all about.
0: That is what stability is all about.
1: यहाँ एक और बात जो सामने आती है कि जहाँ हमने ये कहा था कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ उसके क्रिएटर मैं हूँ, वैसे ही दूसरा जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके क्रिएटर मैं नहीं हूँ. अगर वो पेन में है तो चाहे वो बार बार ये कह रहा है कि आपके कारण, आपने ऐसे किया था, आपने ऐसे किया था, आप लेट आए हैं या आप कहीं और थे या आप जो भी थे, आपके कारण मुझे दर्द हो रहा है, तो फिर तो मैं अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं तो मैं कुछ भी कर सकता.
0: या दैट्स ट्रू ना. उसको हमें राइट पर्सपेक्टिव में लेना है. लेट्स से कि मेरा एक पर्टिकुलर व्यवहार करने का तरीका आपको पसंद नहीं, लेकिन दर्द आप क्रिएट करते हैं. आई एम गोइंग टू रिमेम्बर दैट. अब आप अगर मुझे बार बार ये बोलने वाले हैं कि आपके दर्द का कारण मैं हूं, आई एम नॉट टेकिंग इट. क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आपके दर्द का कारण आप हो, मैं स्टिम्युलस हूं. डेफिनेटली मेरे वर्ड्स, मेरे बिहेवियर वो आपके लिए स्टिम्युलस हैं, लेकिन रिस्पॉन्स आप क्रिएट कर रहे हो. अब आई हैव टू चेक माई सेल्फ. जैसे आपको अपने को चेक करना है, मुझे अपने को चेक करना है. लेकिन वो मैं तब कर पाऊंगी जब मैं स्टेबल हूं. अगर मैं गिल्ट में चली गई तो फिर मैं भी क्या रिस्पॉन्स क्रिएट किया?
1: पेन का.
0: अब पेन में जाने के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही खत्म हो गई. एंड देन आई विल नॉट लाइक यू, यू विल नॉट लाइक मी, आई विल नॉट लाइक यू. एंड देन वी स्टार्ट थ्रोइंग दैट नेगेटिव एनर्जी एट ईच अदर. तो अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही है एंड यू आर वेरी वोकल अबाउट इट, आप मुझे सीधा बताते हैं कि आपकी वजह से ये सब, तो मैं सिर्फ आपकी बात सुन सकती हूँ, नॉट गेट डिस्टर्ब्ड. ध्यान सिर्फ ये रखो कि सपोज मैंने कुछ आपको सेंटेंस कहा, आपने दर्द क्रिएट किया, उसके बाद आपने कहा कि मैं उसकी जिम्मेवार हूं, तो अब ये मेरी परिस्थिति हो गई. नाउ दिस इज माय स्टिम्युलस कि यू आर
1: सेइंग, मैंने अपना दर्द फेंका ना आपको.
0: सो नाउ दिस इज माय स्टिम्युलस. अब इस स्टिम्युलस में मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है? पहली चीज मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझे दर्द में नहीं चले जाना है.
1: ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है.
0: दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो मैं तब निभा पाऊंगी व्हेन आई अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट गिल्टी ऑफ योर पेन, योर पेन इज योर क्रिएशन. वो स्टेबिलिटी क्रिएट करके अब मैं अपने आप को चेक कर लेती हूँ कि व्हाट कैन आई चेंज अबाउट माय सेल्फ जिससे आपके लिए वो स्टिम्युलस चेंज हो जाए, आपका रिस्पॉन्स नहीं.
1: क्योंकि आप अभी भी उतनी हिम्मत, आप में उतनी ताकत नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे कि आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेवार हो अपने जो आपने दर्द क्रिएट
0: नहीं. लेकिन ये हो सकता है ना कि जब आपका, क्योंकि वी नो वन थिंग कि परिस्थिति आएगी तभी तो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा. लेट्स से मेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, मैं जरा जोर जोर से चिल्लाकर आपसे बात करती हूँ, तो ये स्टिम्युलस आपको आता है तभी तो आप दर्द क्रिएट करते हो. अब आपके अंदर ताकत नहीं है कि आप इस स्टिम्युलस को फेस करो, तो आप स्टिम्युलस को बोलते रहते हो चेंज चेंज चेंज, यू चेंज, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन. तो आपकी ये सेंटेंस को मैं लेती हूँ और अब मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ कि एज अ सिचुएशन मैं अपने आप को कितना चेंज करने के लिए रेडी हूँ. लेकिन मैं ये जिम्मेवारी नहीं लेती कि आपके दर्द का कारण मैं हूँ. दर्द तो फिर भी आपने क्रिएट किया. जब मुझे ये ध्यान में रहेगा तो मैं पहले खुद दर्द में नहीं जाती, और जब मैं दर्द में नहीं जाती तभी मैं अपने को देख पाती हूँ और तब चेंज करने का कोई मार्जिन है. जैसे रिलेशनशिप्स में दो लोग एक दूसरे को कहते रहते हैं आप मेरे दर्द का कारण हो, द अदर पर्सन डजंट एक्सेप्ट बिकॉज वो जैसे ही हर्ट हो जाता है तो ही डजंट एक्सेप्ट दैट आई एम द कॉज ऑफ एनीथिंग एंड देन ही डजंट चेंज. तो बेसिकली मुझे गिल्ट में नहीं जाना है ना, या ना कोई मुझे अपने इमोशन से मुझे यू नो बहा कर लेकर जा सकता है. आजकल होता क्या है ज्यादातर कि हम स्टेबल न होने के कारण दूसरों की इस तरह की स्टेटमेंट्स की वजह से हम बह जाते हैं यू नो, और फिर दैट इज ऑल्सो नॉट स्टेबिलिटी. परिवर्तन यस आई एम रेडी टू चेंज बट विद स्टेबिलिटी, कि क्या परिवर्तन करना है मुझे.
1: एंड आई वांट टू चेंज,
0: आई वांट टू चेंज एंड आई हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट चेंज. ये नहीं कि मैंने चेंज किया और फिर मैंने दर्द क्रिएट कर दिया. आई मीट सम सिस्टर्स, उनके हस्बैंड्स कहते हैं आफ्टर मैरिज डोंट वर्क एनीमोर, आपको जॉब नहीं करना है, आपको घर पे रहना है. और जब तक वो पत्नी नहीं मानती है पूरा घर दर्द में है, इन लॉज हस्बैंड, हमारी खुशी के लिए आपको जॉब छोड़नी है. चलो अब आपके पास चॉइस है कि या आपको जॉब करनी है या आपको जॉब छोड़नी है. आप ये समझकर कि आप उनको खुशी देंगे आप जॉब छोड़ते हैं, लेकिन आपने क्रिएट क्या किया वो जॉब छोड़ने के टाइम. अगर आपने ही दर्द क्रिएट कर दिया तो आप घर पर रहकर खुशी कैसे देंगे किसी को.
1: बिकॉज यू विल नेवर बी हैप्पी,
0: यू विल नेवर बी हैप्पी. सो इम्पोर्टेंट फर्स्ट इज दैट इन ऑर्डर टू गिव any energy out I will have to create it. And then you have to see these sisters, 20 years they have been sitting at home aur 20 saal ke baad bhi ye regret kar rahe hain apna wo decision.
1: Inki wajah se maine chosen.
0: Yes. To fir wo ghar rehkar bhi khushi kahan hui? Fir hum kehte hain humne unke liye itna kiya itna kiya itna kiya, wo abhi bhi khush nahi hai. Wo kyon khush nahi hai? Kyunki humne kiya kiya kiya bahut kuch lekin hum khush nahi the. To hum jab khush nahi the to wo khush kaise honge.
1: बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वेरी ट्रू शिवानी, कि जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं वही दूसरों के प्रति भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं
0: विद स्टेबिलिटी,
1: हाँ, विद एंड हैप्पीनेस, यू नो,
0: दैट इज स्टेबिलिटी. हम डूइंग लेवल पर निभा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. कहेंगे मैं अपने इन लॉज का ध्यान रखती हूँ, मैं हस्बैंड में बच, मैं तो सारा दिन घूमती रहती हूँ घूमती रहती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, फीलिंग क्या है. कहते फिर भी कोई खुश नहीं होता. कैसे होगा अगर मैं दर्द में हूँ वो सब करने के टाइम. तो इसलिए डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुश रह कर सब कुछ करना है, फिर आप कोई खुश हो सकता है, नहीं तो आप दर्द में तो सब लोग दर्द.
1: और सबसे बड़ी बात जो हमें ताकत मिल जाती है वो ये कि खुश रहना मेरा अपने हाथ में है, आई कैन क्रिएट इट एनी टाइम आई वॉन्ट. इनफैक्ट आप सबसे हम यही कहेंगे कि वो हैप्पीनेस के मोमेंट्स को खुद क्रिएट करें, हैप्पीनेस के थॉट्स को खुद क्रिएट करें, और फिर हम काम, इनफैक्ट कोई भी काम शुरू करने से पहले, इनफैक्ट आई थिंक समवेयर वी शुड स्टार्ट विद दैट
0: थॉट, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद 1 मिनट साइलेंस. आप दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, बीच बीच में रुक कर हमारा है कोई कार्य शुरू करने लगे हैं, पॉजिटिव थॉट. You know, happiness is not excitement, jump kar rahe hain sara din. Happiness is positive thought, stable thought. I can do this, I will do this with stability. Taki beech mein wo negative thought nahi aaye. Hoga ya nahi hoga, mere se hoga, pata nahi kya.
1: No, pata nahi wo kaisa feel karenge, unko kya feeling hogi. Very true. शिवानी आज की इस बात ने कहीं ना कहीं हमें एम्पावर किया है और एक क्लैरिटी के साथ बात सामने आई है कि वेयर वी स्टैंड. थैंक यू सो मच
0: शांति.
1: इस पूरी श्रृंखला के दौरान पूरी बातचीत में कहीं कोई ऐसी बात लगती है जिसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आपके लिए ये स्टिमुलस है, और अगर आपका कुछ रिस्पॉन्स है आपका हम स्वागत करते हैं. आप इस प्रोग्राम में जरूर शामिल हों, चाहे फोन द्वारा या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873 triple 6 triple 5, और हमारा ईमेल आईडी है ओम शांति स्टूडियो एट bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। आने वाली कड़ियों में और बातें करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट से जुड़े हुए। अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ। इन दिनों हम बात कर रहे हैं लाइफ स्किल्स से। भाई जीवन में ऐसा क्या हुआ कि हम जीना ही भूल गए? वो स्किल्स जो शायद अभी तक नहीं जानते थे, हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। कितनी तरह के थॉट्स हम एक दिन में क्रिएट करते हैं और फिर उनका इम्पैक्ट क्या है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमने बात की थी कि 7 तरह के डिफरेंट थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और उनके इम्पैक्ट्स हमारे जीवन पर क्या होते हैं। आगे बढ़ें और हमने जब राइट थॉट्स की बात की तो 10 रॉन्ग थॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं रॉन्ग को राइट कैसे करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक बार फिर रिकैप करते हैं क्योंकि जब भी पढ़ाई शुरू की जाती है, नई स्किल सीख रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हमारे पास रजिस्टर होने में। वो जो 10 आपने कहे थे कि रॉन्ग थॉट्स हैं जिनको राइट करना जरूरी है, चाहे हम पॉजिटिव नहीं भी सोच रहे लेकिन ये रॉन्ग जो है वो राइट किया जा सकता है, तो कौन से हैं वो थॉट्स?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक बार समझ में आ जाए कि ये 10 कौन से हैं, कौन से मिरर्स हम यूज करते हैं, और फिर तब अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन से मिरर में मैं अपने को देख रहा हूं। सबसे पहले तो मैग्निफाइंग, कि हम छोटी बात को बड़ी बना करके देखते हैं। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, हम परिस्थिति को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं, एक्सट्रीम्स में देखते हैं, जो भी बुरा है। वास्तव में परिस्थिति जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे है, उसको सही रूप से देखना चाहिए। तीसरा है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ बात हुई तुरंत निर्णय पर आ जाते, फिर उसकी भी बुरी इफेक्ट होती है। हमें थोड़ा वक्त देना है, अच्छी तरह से परिस्थिति को एनालिसिस करे और फिर उसके बारे में आगे हम सोचे तो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। चौथी बात है ऑलवेज मेंटेलिटी, कि जब कुछ प्रॉब्लम आता है तब मेरे साथ ही होता है, वो ऑलवेज मेंटेलिटी भी बुरी है। पांचवी बात है वाई मी एटीट्यूड, कि कुछ समस्या हुई तो मुझे ही हुई, हमेशा हमें नहीं होती है। कुछ समस्याएं बल हमें भी होती है लेकिन औरों के सामने भी समस्याएं आती है, उस प्रकार से हमें परिस्थिति को देखना चाहिए। छठी बात है कि हम देखते हैं कि सर्चिंग नेगेटिविटी, कुछ बात हुई उसमें नेगेटिविटी को ढूंढ निकालते हैं, बल अच्छा बहुत ज्यादा हुआ है, बुरा तो बहुत थोड़ा हुआ है,
0: तब भी हम वो ढूंढ रहे हैं।
1: हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग में हम पॉजिटिव को ढूंढते हैं, परंतु यह सर्चिंग नेगेटिविटी में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। सातवा है नॉटिंग, कि फोर्सिबली कोई बात को भूलने की कोशिश करते हैं, वह हमें नहीं करना है। वास्तव में क्या छोड़ना है वह नहीं सोचो, परंतु क्या पकड़ना है उसको सोचो। हमें कहाँ जाना है उसके बारे में विचार करो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आठवीं बात है कि डिस्क्वालीफाइंग द गुड, अच्छा ऑलरेडी हुआ है लेकिन आपने उसको डिस्क्वालीफाई किया। नवी बात है लेबलिंग, कि हम लोगों को भी लेबल करते हैं और लेबलिंग के कारण भी बहुत ही डिसएडवांटेजेस होते हैं। और दसवा है फ्लाई मेंटेलिटी, कि जीवन में अच्छा भी है बुरा भी है, मक्खी कैसे गंदगी पर ही बैठती है ऐसे हमें भी आदत हो जाती है, हम गंदे पर ही बैठते हैं। ये 10 बातें अगर व्यक्ति एक बार याद रख ले अच्छे से और सारे दिन में जो भी घटनाएं होती, फिर सोचो कि उसमें से मैंने कौन से मिरर में अपने आप को देखा। कई बार आप ऐसा भी पाएंगे कि एक परिस्थिति में एक के साथ 2 या 3 मिरर में भी आप अपने आप को देख रहे हैं। वो तीनों को पहले पहचाने और फिर उसमें परिवर्तन करे तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव राइट थिंकिंग की भी हमें आदत हो जाएगी।
0: शिवानी, ये जो 10 रॉन्ग सडनली हमारे सामने आए हैं, इट्स एन अमेजिंग रेवलेशन, लेकिन अगर नहीं चेंज हुआ सो व्हाट्स रॉन्ग?
2: क्या ये थॉट नहीं चेंज हुआ तो बहुत सारा उसका आगे बहुत सारा इफेक्ट आएगा। सारा दिन में हम, जैसे भाई साहब ने कहा, 35,000 to 50,000 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और आज दिन तक हम अवेयर भी नहीं थे कि वो 7 टाइप्स की हैं, उस हर टाइप में भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं। हम ये भी अवेयर नहीं थे कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब अंदर का जो पूरा प्रोसेस था हमें अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी, एंड फिर जब हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, वी वर ट्राइंग टू चेंज द रिजल्ट विदाउट ट्राइंग टू वर्क ऑन द सोर्स ऑफ दैट रिजल्ट, कि वो रिजल्ट क्रिएट क्यों हुआ। चाहे वो रिजल्ट ये था मैं फील कैसा कर रहा हूँ, चाहे वो रिजल्ट ये था मैंने बात ऐसे क्यों कर दी, चाहे वो रिजल्ट ये था कि मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, चाहे रिजल्ट ये था कि मैं वर्क में क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा। बहुत बार लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे से खुश नहीं होते, फिर भी मुझे वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। सो वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग, जब वो प्रोडक्ट बाहर निकल कर आया, बिकॉज वी वर नॉट लुकिंग एट द प्रोडक्ट जब वो अंदर डिवेलप हो रहा था अभी, बाहर तो फिर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट निकला। तो जब हम अपने ऊपर ये चेकिंग करने शुरू करते तो हम देखते कि वो एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरता। थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हैं, इवन जब रात को सो रहे हैं तो भी चल रहे हैं, इवन दो इट्स एट अ लिटिल स्लो स्पीड। जैसे ही थॉट्स क्रिएट होती, इट इज फॉलोड बाय फीलिंग, हमें महसूस होगा। इसीलिए जैसे आपने कहा था कि थॉट तो पता ही नहीं चलती, ये पता चलता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पर आ गया। फर्स्ट स्टेज की तो मैं अवेयरनेस ही नहीं थी, ऑलरेडी प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज से उठ के सेकेंड डिपार्टमेंट पर आ चुका है, फीलिंग के डिपार्टमेंट पर। लेकिन अगर फीलिंग के डिपार्टमेंट पर भी मैंने चेक कर लिया, यू नो इट्स लाइक अ प्रोसेस प्लांट, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर सेकेंड स्टेज पर भी आपको पता चल गया कि फॉल्टी है, इट्स इजी ना। आप तुरंत फर्स्ट स्टेज पर वापस जाएंगे एंड वहीं के वहीं आप अपने प्रोसेस प्लांट को चेंज कर लेंगे। हम फीलिंग पर भी उसको चेक नहीं करते, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कई बार पूरी दुनिया के बारे में, इट डेवलप्स माई एटीट्यूड, मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड धीरे धीरे, जो कई बार हम कहते हैं इसका एटीट्यूड ही बहुत नेगेटिव है, इसको जो देखो इसको ये नेगेटिव दिखाई देता है,
0: एटीट्यूड चिंता वाला है,
2: हाँ, इसका ये एटीट्यूड है, हाँ. तो ये एटीट्यूड है मतलब क्या कि ये तो है ही ऐसा, यू नो
0: मतलब मैंने एक बार एंग्जाइटी की फीलिंग क्रिएट की, घबराहट की हुई, उसके बाद आगे भी वही होती जाएगी, आगे भी, सो अल्टीमेटली हर सिचुएशन में मैं घबराऊंगा।
2: इट माइट नॉट बी इन हर सिचुएशन बट इट इज डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन, धीरे धीरे वो जाएगा व्हेन इट विल कम टू हर सिचुएशन। अभी एटीट्यूड मतलब लेट्स से आपसे मैं जितनी बार मिली मैंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट क्रिएट किया, तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति जो एटीट्यूड है वो उस क्वालिटी का बन, हाँ आपके प्रति, अभी वो सबके प्रति नहीं, अभी सिर्फ वो आपके प्रति है। लेकिन अब जैसा मेरा एटीट्यूड आपके प्रति हो जाएगा वो फिर मेरे एक्शन में आएगा। यू नो इफ आई से यू नो शी इज अ वंडरफुल पर्सन, नाउ दिस इज माई एटीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली मेरा आपसे बात करने का तरीका, आपकी हर बात को परसीव करने का तरीका, आप कुछ भी कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये है ये बहुत अच्छे है। एंड ये अगर मेरा एटीट्यूड उसका ऑपोजिट हो, आप कितनी भी अच्छी बात कहेंगे मेरे को उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा एटीट्यूड डिफरेंट डिवेलप हुआ हुआ है। तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम मैंने एटीट्यूड कौन सा डेवलप किया हुआ है आपके बारे में। जैसे भाई साहब ने कहा कौन से शीशे के थ्रू हम हर चीज को देखते हैं, एटीट्यूड इज अ बिग मिरर दैट वी क्रिएट, जिसके थ्रू हमें हर चीज उस रंग के फिर दिखाई देती है। अब एटीट्यूड लेवल पर जब आ जाती बात तो हम कहने लगते हैं मैं ऐसा ही हूँ, दिस इज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। यू नो कई बार कहते हैं इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ही बहुत केयरलेस है, ये सीरियसली लेते ही नहीं है, दैट्स माई एटीट्यूड। लेकिन बना कैसे, thought, feeling, attitude, now comes out into action. Action मतलब कोई word या कोई physical कर्म, action. अब जैसा मेरा action होगा, पर कई बार मैं वही action को बार बार बार बार repeat करती, then it becomes my habit. Once it has become my habit, जिसको हम कहें, you know, my संस्कार, then it's not with one person,
0: मैं ऐसे ही हूँ।
2: ये अब मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है। शुरू शायद वो किसी एक से हुआ था, जो कई बार हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि कई बार हमें आदत है कि ऑफिस में काम कराने का तरीका कैसा, गुस्सा किया काम करवाया, तो घर पे भी बच्चों का से वो कुछ करवाने का तरीका कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों के साथ भी कैसा हो जाएगा, वैसा। क्यों? बिकॉज गुस्सा करना ये मेरा संस्कार बन चुका है. गुस्से से काम करवाना ये मेरा संस्कार बन चुका है. देन इट विल नॉट रिमेन विद दैट पर्सन स्पेसिफिक, देन इट इज विद मी, बिकॉज अब ये मेरा पैकेज है. दिस इज हु आई एम. ये हर एक के साथ ये होगा. एंड आई हैव लॉट ऑफ संस्कार्स. तो ये जो मेरे सारे संस्कार हैं, दिस इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी. तो हर थॉट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि फाइनली इट इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी. ये मेरा व्यक्तित्व है. थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी. अब हम जाते हैं पर्सनैलिटी वर्कशॉप्स के अंदर, हम जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर. क्या करने के लिए? मेरी पर्सनैलिटी चेंज कर दो. फिजिकल नहीं, इट्स दिस पर्सनैलिटी विच इज रेडी. स्टार्ट हुई थी थॉट से. आपको चेंज करना है कुछ भी, you'll have to start at the level of thoughts. And then the most important part, ki jaisi meri personality hogi, har step pe main wo personality ko lekar jaunga, to har step pe jaisi meri personality hogi, wo energy bahar jayegi. Jo energy bahar jayegi, wohi energy wapas aayegi. Jab energy wapas aati hai, hum usko destiny kehte hain. Mere saath jo hota hai, wo mera bhagya hai. तो मेरी थॉट मेरा भाग्य क्रिएट करती है. और अगर मैं अपनी थॉट को चेंज कर दूं, तो मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूं. क्योंकि भाग्य कुछ भी नहीं है. भाग्य इज जस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी, बट दे आर अ रिटर्न ऑफ द एनर्जी दैट आई हैव सेंट आउट. द मिनट आई अंडरस्टैंड दिस, दैट आई क्रिएट माई डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द थॉट्स आई क्रिएट, अवेयरनेस बहुत ज्यादा होने लग जाती है उसके ऊपर. क्योंकि फिर आपको रियलाइज होता है कि सारी पावर आपके पास है, सारा कंट्रोल आपके पास है. चेंज द कंट्रोल, डेस्टिनी विल चेंज टोटली.
0: आई थिंक द वे ही आल्सो सेड कि आप एक्चुअली अट्रैक्ट करते हो उन सारी घटनाओं.
2: बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये कैसे वर्क करता है? वो इस तरह से वर्क करता है कि जैसे थॉट आप क्रिएट करोगे, धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब जो कर्म आप करोगे. जब हमें लॉ ऑफ कर्म समझ में आता है कि जो कर्म मैं करूंगा उसी का रिटर्न मुझे मिलेगा. मेरे कर्म की क्वालिटी किस बेसिस पर है? जो मेरी पर्सनालिटी की क्वालिटी है. तो इसका मतलब कर्म की क्वालिटी पर्सनालिटी की क्वालिटी से, वो थॉट की क्वालिटी से, तो कर्म का रिटर्न भी थॉट की क्वालिटी से. तो भाग्य अपने आप, आपने ग्रेविटेट कर लिया ना वो भाग्य को अपनी तरफ,
0: जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप दे रहे थे बेसिकली.
2: दैट इज कमिंग,
0: मतलब जो मैंने क्रिएट किया वही मैंने पाया.
2: यस. अब थोड़ा सा और एक स्टेप पर देखना है कि अगर थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है, तो थॉट्स की सोर्स क्या है? पहले भी हमने देखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ध्यान से कि नेगेटिव न्यूज़पेपर्स, न्यूज बहुत ज्यादा ना पड़े, इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है थॉट्स पे. गॉसिपिंग की आपने पहले बात की कि क्यों नहीं गॉसिप करें. इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने अंदर भर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट करती है. सेकेंड है बिलीफ सिस्टम्स. बहुत सारी हमारी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने बनाई हुई हैं, जिनको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. कि जैसे बात हुई कि गुस्से से काम करवाना, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करो तो काम जल्दी हो जाता है. एक बिलीफ सिस्टम है. ये बिलीफ होगा, थॉट उसी क्वालिटी की चलेगी, पर्सनालिटी वही बनेगी, डेस्टिनी भी फिर उसी के हिसाब से होगी. तो इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थॉट्स चेंज होती जाएंगी, भाग्य बदलता जाएगा.
0: बिल्कुल, एक बहुत नया एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं हम कि भाग्य, जिसे हम अभी तक कह रहे थे कि बहुत सारे और बाकी चीजों पर है, सिचुएशंस. तो आज जो बात है कि थॉट की पावर जो है वो चेंज कर सकते हैं.
1: और एक बात ये भी करनी चाहिए कि राइट थिंकिंग अगर हमें डेवलप करना है, सचमुच प्रैक्टिस करनी है, तो एक चार्ट लिखना चाहिए.
0: वो जो रॉन्ग्स हैं, 10 रॉन्ग्स
2: को राइट में करें.
1: मिलके हाँ, उसको ऐसे करे कि भी सारे दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाएं भी पहले पहले लिखो, मेजर न भी लिखो. तो ये 10 घटनाएं हुई, उस समय मुझे फीलिंग्स क्या हुई, कि निराशा की फीलिंग हुई, गुस्सा आया, ईर्ष्या हुई, क्या फीलिंग्स आपको हुई. फिर थर्ड कॉलम में लिखो कि मेरे रॉन्ग थॉट क्या थे,
0: जो मैं 10 से चुना,
1: जो 10 मिरर्स थे, वो कौन से मिरर में मैंने उसको फिट किया, उसको लिखो कि ये मेरे रॉन्ग थॉट थे. फिर ये लिखो कि भी राइट थॉट क्या होना चाहिए, कि भी ये घटना फ्यूचर में हुई तो मैं ये राइट थॉट करूंगा. उसे फिर रिपीट करिए कि बस फ्यूचर में घटना ही मैं यही करने वाला हूं. तो आत्मा में भी वह जाएगा कि कि फ्यूचर में होगा, आपने अपने आप को प्रोग्राम दिया कि मैं यही राइट थॉट करने वाला हूँ। ऐसी प्रैक्टिस 3-4 सप्ताह भी करने लगो, ऑटोमेटिक आप राइट थिंकिंग करेंगे।
0: तो ये हर रोज शाम को करें या हर एक घंटे बाद करें?
1: एक्चुअली
0: बिकॉज वो याद ही नहीं रहेंगे घटनाएं।
1: टाइम मिले तो भले 2-3 घंटे बाद भी करो। और कोई कहे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, सारा दिन मैं बिजी रहता हूँ, तो बोले शाम को भी करिए।
2: बेसिकली एक छोटी सी नोटबुक अगर आपके पास है, यू शुड जस्ट स्क्रिबल इट डाउन इमीडिएटली,
0: एक्चुअली याद नहीं रहता फिर।
2: एक्चुअली उसी टाइम अगर करते हैं ना, तो एक तो उस टाइम आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने से बचा लेते हैं। लेट्स से अभी मेरे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई और मैं आधा पौना घंटा उसी के बारे में सोच रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ माइंड जा रहा, क्यों नहीं लेट मी डू दिस एक्सरसाइज उसी टाइम, सो दैट आई इवन सेव दैट हाफ एन आवर ऑफ एनर्जी ऑफ डिप्रेशन।
0: पहली चीज तो ये कि ये ब्लेम गेम जब खत्म होगा ना, अभी तक भी जब बहुत मेजर वाले इश्यूज आते हैं, इट्स नेवर लाइक कि मैंने क्रिएट किया।
2: सी इश्यू बहुत बड़ा हो सकता है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, किसी ने चीट किया मुझे, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो

0: बच्चा है, चीट किया मुझे, इट्स अ बिग इशू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी थॉट तो मुझे क्रिएट करना है ना.
1: वही तो मैं कह रही हूँ कि वो जो फीलिंग आई है, जो फीलिंग ऑफ हर्ट, रिजेक्शन या जो कुछ भी, एंगर जो भी है, वो मैंने क्रिएट की, ये एक्सेप्टेंस और रजिस्टर होना, ये भी अभी वक्त लग रहा है. Why does it take time? I don't want to take the onus or what it is.
0: Because we were not aware also, na? हम देख ही नहीं रहे थे कभी भी. जितना मैं बाहर देखती हूँ, मुझे हर चीज सिर्फ बाहर ही दिखाई देती है. मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था कुछ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था, कुछ नॉट सो अच्छा, मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा. तो ऑटोमेटिकली मैं कंक्लूजन क्या करूंगी कि ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है, ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है. दिस इज लाइक एन ऑटोमेटेड मोड, कि ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, आपकी कोई चॉइस नहीं है. मशीन और ह्यूमन बींग में क्या फर्क है? मशीन के पास कोई चॉइस नहीं है. ह्यूमन बींग मीन्स एट एवरी स्टेप अ चॉइस, कि भले किसी ने बटन प्रेस किया भी है, आपको ऑन होना है या ऑफ होना है, इट्स योर चॉइस, नाउ डिसाइड. आपको ऑफ होना है, ऐसे होके बैठ जाना है, ऑन होना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है. और इस केस में तो सिर्फ दो चॉइसेस नहीं है, ऑन एंड ऑफ, बहुत सारी चॉइसेस है. एंड जितना हम अवेयरनेस में रहते हैं, हमें लगता है कि हर सिचुएशन में एक्चुअली कितनी सारी चॉइसेस थी. हमने हमेशा वो प्रोग्राम्ड चॉइस ले ली कि इन्होंने ऐसा कहा तो बुरा तो लगना ही है, गुस्सा तो आना ही है. सो वी वर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनी अदर पॉसिबिलिटी, ऑफ एनी अदर चॉइस ऑन दैट.
1: इनोवेशन,
0: क्रिएटिविटी.
2: और कारण है कनुप्रिया बहन की, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. बस मुख्य बात है कि हर बात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इवन मेरे थॉट के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल
1: हूँ. मैं कैसा फील कर रही हूँ, कैसा वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, इसकी जिम्मेदारी अगर मैं ले लूँ,
2: एक ले लो, फिर और सब कुछ
1: सारे हो जाएंगे.
0: और अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज स्ट्रगल हो रही है. सी, पेरेंटिंग स्ट्रगल, जॉब स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल, हर चीज में तो एक रिलेशनशिप्स स्ट्रगल, हर एक चीज में क्यों स्ट्रगल हो रहा है? क्योंकि मैं जो ये सारी जिम्मेवारियां उठा रहा हूँ, मैं पहले अपना ध्यान नहीं रख रहा. तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि वो थॉट बीज है, ये पूरा उसका वृक्ष है. बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी. अभी हम निभा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट तरह से निभ रही है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना, लेकिन शायद मेरा ही थॉट और व्यवहार मेरे बच्चे को इमोशनली वीक कर रहा है. तो देन एम आई फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बात, शायद आई एम क्रिएटिंग डैमेज, आई एम क्रिएटिंग अ डैमेज, आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल फॉर माई चाइल्ड ग्रोथ. तो दैट आई हैव टू क्वेश्चन. बट वाई विल आई नॉट बी एबल टू डू दैट? पेशेंस नहीं है, कि मैं नहीं प्यार से समझा सकता, मुझे गुस्सा तो आ ही जाता है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी ली है.
1: ओके, अपनी जिम्मेवारी नहीं ली, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसे थॉट क्रिएट कर रही हूँ, उसकी नहीं ली. इट्स नॉट दैट इजी. सी अगेन, अभी भी मैं अगर सोचूं, मुझे कोई चीज बुरी लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, और मैंने थॉट क्रिएट जाने की भी कोशिश की कि मैं जाके देखूं कि क्या है थॉट, तो वो थॉट जो है वो है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो सिचुएशन है. वो अब उसको मुझे ठीक करने के लिए आई विल वेट फॉर द सिचुएशन टू कम, और आई कैन से इधर आई गिव अप देन एंड आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स. लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ है वो इशू. ये चेंज कैसे होगा ये थॉट?
2: इसके लिए एक बात जो फाउंडेशन समझना चाहिए कि परिस्थितियों में जान नहीं होती है. जो हम
1: थॉट में जान है,
2: हाँ,
0: एनर्जी तो वही
2: है ना. सिचुएशन आर लाइफलेस, हम जो उसको लाइफ देते हैं अपने थॉट्स से देते हैं. तो बस थॉट्स को मुझे चेंज करना है और वो मेरे कंट्रोल में है,
1: क्योंकि हमने उस पे जाके देखा.
2: एंगल को तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ. कौन से एंगल से मैं आपको देख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट लेट मी चेंज द एंगल.
0: और उसके लिए अगर हम कॉन्शियसली प्योर और पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं, जबकि कोई परिस्थिति भी नहीं है. अगेन वी थॉट फर्स्ट स्टेप वॉज जब कोई परिस्थिति नहीं है, चेक करो कैसी थॉट्स है. दूसरी स्टेप, जब कोई परिस्थिति नहीं है, कॉन्शियसली पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, जिसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं. यू नो, चैनलाइजिंग माई माइंड इन द राइट डायरेक्शन. गिरीश भाई ने पहले कहा था एक बार कि जिस डायरेक्शन में थॉट्स फ्लो होंगी, ग्रूव्स उसी तरह बनते जाएंगे, पानी जैसे फ्लो होगा. तो अब हम कुछ समय रोज निकालें अपने लिए कि हम पानी को डिलिबरेटली उस तरह से चैनलाइज करें जिस तरह से वी वॉन्ट माई माइंड टू वर्क. अपने आप नहीं हो जाता है, सिचुएशन आने पर नहीं हो पाता है. तो तब करना होगा व्हेन एवरीथिंग इज साइलेंट. और इसीलिए मेडिटेशन हम करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, कि सुबह उठ

0: के कुछ पढ़े बिना, किसी से बात करे बिना, कुछ भी और करे बिना, क्योंकि जैसे ही आप यू नो एक्टिविटी में चले गए आपका ये माइंड फिर हो जाता है। कई बार तो आप चेक करें, जब आप सुबह उठते हैं पिछले दिन की बातें वो ऑटोमेटिक अभी भी चल रहे हैं, लाइक अ कमेंट्री वो माइंड में चलता जा रहा है।
1: पहली आंख खुलती है और वो सारा का सारा बैकलॉग सामने,
0: एक्चुअली वो सारा का सारा बैकलॉग सामने नहीं आया, नींद में भी वो चल रहा था। अभी तो आंखें खुली सिर्फ, इसीलिए उठने के बाद आप रेस्टेड फील नहीं करते, आप फील नहीं करते कि आप चार्ज थे, क्योंकि रात को सोने से पहले हमने उसको स्लो डाउन नहीं किया था। आंखें बंद हो गई, शरीर सो गया, माइंड अभी भी चल रहा था। सुबह जैसे ही आंखें खुली, बीसी की वही सीडी बज रही है अंदर, वही वाले गाने सारे बज रहे अंदर, वो रात भर भी बज रहे थे। आज मेजोरिटी लोगों से आप पूछो, सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन किसका करता है? यू नो, जो आपने टाइम का अलार्म लगाया है 5 मिनट और, किसका मन करता है सोने को? मेजोरिटी विल से यस,
1: सब बोलेंगे यस।
0: नाउ व्हाई आप 5 घंटा 6 घंटा सो लिए, उसके बाद 5 मिनट और क्यों सोना है? क्योंकि जैसे ही उठते हैं वी स्टिल फीलिंग वेरी टायर्ड, बॉडी ठीक है बट माइंड अभी भी बहुत थका हुआ, क्योंकि वह पूरी रात भी चल रहा था कंटिन्यूसली। तो इसलिए अपनी थिंकिंग पर वर्क करें कॉन्शियसली रात को सोने से पहले एंड सुबह उठते ही, नींद बहुत अच्छी होगी, सुबह की तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो सारा दिन का काम इजी हो जाएगा उसको करने के लिए।
1: डॉक्टर पटेल, यहाँ हम अलग अलग थॉट्स को देख रहे थे, अभी एलिवेटेड थॉट्स पर हम अभी आ रहे थे कि वो उनमें कौन से थॉट्स शामिल हैं।
2: अभी एलिवेटेड थॉट जैसे हमने देखा टॉक्सिक थॉट, वो नेगेटिव इफेक्ट में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट को देखें तो एलिवेटेड थॉट सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो एलिवेटेड थॉट है वो हाई एनर्जी थॉट है, उसमें ऊर्जा की हमारी एनर्जी भाई होती, आप खुद भी उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं। साथ साथ जो एलिवेटेड थॉट्स है वो जैसे टॉक्सिक थॉट्स नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ऐसे एलिवेटेड थॉट्स है वो पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एंडोर्फिन्स, नॉर एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सीरोटोनिन, यह सब अच्छे केमिकल्स है कि जिसके कारण ये जो फील गुड की बात थी वह फीलिंग्स आती है। तो एलिवेटेड थॉट से एक केमिकल रिलीज होते हैं, इसके कारण यह सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: और इनमें कौन से थॉट शामिल होंगे, कौन से वो थॉट्स?
2: अभी एलिवेटेड थॉट्स किसको कहेंगे कि बी नो व्हिच आर रियली एलिवेटेड, एक रियल इसमें हम जो डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, उससे भी जो ऊपर के थॉट है, सबसे पहले तो सेल्फ के बारे में कि भी सेल्फ की एलिवेटेड लेवल क्या है, कि मैं रोल कॉन्शियस नहीं हूं, मैं रेस कॉन्शियस भी नहीं हूं, स्किन कॉन्शियस नहीं हूं, आई एम अ सोल, आई एम दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, उसमें माइंड को स्टेबिलाइज करना वह सबसे पहला एलिवेटेड थॉट है। फिर उससे आगे अगर देखना है कि उससे आगे एलिवेटेड थॉट है कि आत्मा के गुण मेरे कौन से है, कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूं, शांति का खुट खजाना मेरे में समाया हुआ है, शांति को कहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम सही चीज को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। शांति अच्छी चीज है परंतु हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वह है हमारे अंदर ही। यह थॉट अगर कि मैं आत्मा ही शांति से भरपूर हूं, आत्मा के सातों गुणों का अखूट खजाना मुझ में समाया हुआ है, यह दूसरा एलिवेटेड थॉट है। और थर्ड एलिवेटेड थॉट कि परमात्मा से मेरे संबंध क्या है, मेरा सोर्स है वह परमात्मा ही है, बस परमात्मा से मुझे सर्व शक्तियों को प्राप्त करना है, वह सही सोर्स होगा तो भी सब प्राप्तियां सहज हो जाएगी। आज हम टेम्परेरी छोटी छोटी चीजें लेने के लिए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भी किसी को पानी दे दो उससे तो अच्छा है कि भी पानी दिया एक दिन प्यास बुझी, उसको नल दिखा दो कि भी नल कहाँ है तो जीवन भर उसकी प्यास बुझेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को समझना, उससे मन बुद्धि का संबंध जोड़ना, वह सबसे बड़ा एलिवेटेड थॉट है।
0: बहुत सारे भाई बहने जो टीवी का प्रोग्राम ये काफी समय से देख रहे हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। ये थॉट हम जितनी बार अपने साथ क्रिएट करते हैं वी स्टार्ट फीलिंग गुड इमिजिएटली। कोई परिस्थिति भी आती है तो हम तुरंत अपने आप को ये थॉट क्रिएट करते आई एम अ पीसफुल सोल। तो थॉट चेंज की फीलिंग चेंज हो गई, कर्मा चेंज हो गया, डेस्टिनी चेंज हो गई, हमने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम. लेकिन ये आई एम अ पीसफुल सोल, उस टाइम कैसे ये थॉट क्रिएट करेंगे? अगर मॉर्निंग में जब कोई परिस्थिति नहीं थी तो 5 मिनट बैठकर अपने माइंड को ये तरह की थॉट्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस कराई थी. एंड एलिवेटेड थॉट्स क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि दे आर द ट्रूथ. तीनों बातें जो बताई कि आई एम अ सोल, सोल की क्वालिटीज और आत्मा का पिता परमात्मा कौन, ये तीनों चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है. बाकी सारी चीजें लेबल्स हैं, अक्वायर्ड हैं. ये तीनों चीजें परमानेंट हैं. बाकी सब चीजें आज हैं, कल नहीं भी हो सकती है, टेम्पररी है, इसलिए हमेशा फियर बना हुआ है. जैसे ही आप ट्रुथ पर आ गए जो इटर्नल है, तो फियर एंड डिपेंडेंसी खत्म हो जाती. ऑटोमेटिकली फीलिंग कैसे आएगी? फील वेरी गुड. तो एवरी मॉर्निंग सिट एंड शेयर विद योर सेल्फ. अपने आप को समझाओ, मैं कौन हूँ? गुस्सा करने से काम होता है? नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल. तो पीसफुल सोल काम कैसे कराएगा?
1: पीसफुली.
0: दिस इज अ सेल्फ टॉक, सेल्फ लर्निंग. दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइफ स्किल्स. कि अपने आप को वो स्किल सिखाना कि आज सारा दिन में मैंने जो कुछ करना है मुझे इन स्किल्स को सीख कर फिर करना है. एवरीथिंग विल चेंज देन.
1: तो आप दोनों हमारे साथ हैं. थैंक यू. अभी तक जिस तरह से चाचा शिवानी ने भी कहा कि एक पूरी साइकिल है, तो मेरा अगर एटीट्यूड है, मेरे थॉट्स के कारण मेरा एटीट्यूड है किसी के प्रति, या उस वो कर्म में आता है, उस एटीट्यूड फिर फीलिंग पीछे जाए और थॉट कैसे बनता है वो, उसको देखना शुरू करें. ये है वो स्किल, ये है वो टेक्निक जो अभी तक कहीं मिसिंग थी. लेट्स लर्न इट. लर्न करेंगे, उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, जीवन परिवर्तित होगा. तो इस परिवर्तन को महसूस करें. कोई बात मन में आ रही है, आप हमारे साथ फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज इतना ही. आगे फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप जाइए वहां, वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत.
3: साधी भोळी माझी आई,
0: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8. आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में. एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं. यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है. तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए. नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भाग दौड़, तनाव और अशांति से भरे आज के जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता का मार्ग दिखाता है. विषय है ध्यान, मन का मौन और आत्मा का संगीत. आज का मनुष्य बाहर से बहुत व्यस्त है लेकिन भीतर से उतना ही थका हुआ है और अशांत भी है. सुविधाएं बढ़ी हैं पर शांति घटती जा रही है. कारण साफ है, हम बाहरी दुनिया को संवारने में लगे हैं लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का समय नहीं निकाल पा रहे. ध्यान हमें इसी आंतरिक यात्रा पर ले जाता है. ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है. ध्यान एक ऐसी चेतन अवस्था है

0: मन की निरंतर चलने वाली विचार श्रृंखला धीरे धीरे शांत होने लगती है। जब विचार थमते हैं तब मन मौन होता है और इस मौन में जो अनुभूति होती है वही आत्मा का संगीत है। यह संगीत शब्दों से परे है लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन में दिखाई देता है। हमारा मन अक्सर या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में लाता है। वर्तमान में रहना ही शांति की पहली शर्त है। जब हम अभी और यहीं को स्वीकार करना सीखते हैं तब जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। एक सुंदर उदाहरण है, यदि किसी शांत झील में आप पत्थर फेंक दें तो लहरें उठती हैं और पानी अशांत हो जाता है, लेकिन यदि पत्थर ना फेंका जाए तो झील स्वाभाविक रूप से शांत रहती है। हमारे विचार वही पत्थर हैं। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें हम विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करते बल्कि उन्हें छोड़ देना सीखते हैं। परिणाम स्वरूप मन स्वयं शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही आवाज हमें सही और गलत का भेद सिखाती है। यही आंतरिक मार्गदर्शन हमारे निर्णयों को स्पष्ट, संबंधों को मधुर और व्यवहार को संतुलित बनाता है। ध्यान हमें प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि उत्तरदायी बनाता है। ध्यान का प्रभाव केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहता। एक शांत व्यक्ति अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में भी शांति फैलाता है। जब भीतर स्थिरता होती है तब बाहर परिस्थितियां चाहे जैसी हों हम उनसे सहजता से निपट सकते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि ध्यान किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या आयु वर्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। बच्चा हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या सन्यासी, ध्यान हर किसी के लिए है। दिन में 5 से 10 मिनट का नियमित अभ्यास भी जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। ध्यान को हम जीवन में सहज रूप से उतार सकते हैं। सुबह कुछ क्षण शांत बैठकर स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करना, गहरी और जागरूक श्वास लेना या दिन में किसी भी समय अपने विचारों को देखना, यही सरल ध्यान है। प्रिय श्रोताओं, आज की दुनिया में हमें और अधिक भागने की नहीं बल्कि भीतर ठहरने की आवश्यकता है। मौन से डरने की नहीं बल्कि उसे मित्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि मौन में ही आत्मा बोलती है और वहीं से जीवन का वास्तविक संगीत प्रभावित होता है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जब मन मौन होता है तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है और जब यह संगीत जीवन में उतरता है तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। तो ये था आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते।

0: आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस.
3: थैंक यू
2: सिस्टर. कल किसी से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही थी. तो मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा. पहले तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि द यूनिवर्स इज नॉट पनिशिंग यू और ब्लेसिंग यू. एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दैट बिकॉज अगेन इससे कनेक्टेड मैं सवाल पूछना चाहूंगा. द यूनिवर्स इज ओनली रेस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल एटीट्यूड दैट यू आर एमिटिंग. यहां तक. वॉट इफ एवरी वर्ड यू सेड वेर अ विश टू द यूनिवर्स. Would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Now, make sure to only put out ones that you want back. Yahan law of attraction kehta hai, you don't attract what you want, you attract what you are.
3: Perfect. This is all that we have been discussing since the last so many days. You don't attract what you want. You attract what you are. And what are you? Thoughts, feelings, attitude, starting from belief system. अब जब हमें ये वाली बात समझ में आ जाती है पूरी कंप्लीट, अगर हम समझ लें इस इक्वेशन को कि ये कैसे चल रही है. Can I afford to have a wrong belief system?
2: कैसे पता चले कि मेरा रॉन्ग बिलीफ है कि राइट बिलीफ है.
3: अच्छा, टेंशन इज नेचुरल. एक बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम लिया तो सारा दिन में काम करते हुए मन ने कहा टेंशन तो होती है, टेंशन तो होगी ही, चिंता तो नेचुरल है, तो चिंता होती गई. वो एटीट्यूड में आया, एक्शन में आ गया, पर्सनालिटी वैसे बनती गई. डेस्टिनी मेरी क्या हुई?
2: Full of tension.
3: टेंशन से रिलेटेड बीमारियां, टेंशन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जो मेरा टीम मेंबर्स के साथ आया, क्योंकि टेंशन इज नेचुरल, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही था कि टेंशन इज नेचुरल. आज तो सिर्फ टेंशन इज नेचुरल भी नहीं कहते, टेंशन इज गुड, मतलब स्ट्रेस इज गुड, बिकॉज स्ट्रेस इज द ड्राइविंग फोर्स. स्ट्रेस नहीं होगा तो हम बहुत पैसिव हो जाएंगे.
2: यू स्ट्रेस,
3: गुड स्ट्रेस, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हो जाएगा तो डेस्टिनी भी वही होगी. अब कह रहे हैं चाहिए खुशी, चाहिए शांति, मतलब डेस्टिनी को चेंज करना ना. आज मेरे भाग्य में तनाव है, चिंता है, मुझे अपने भाग्य में खुशी चाहिए. आई हैव टू गो बैकवर्ड्स कि ये जो टेंशन है ये कौन से बिलीफ सिस्टम से मेरे डेस्टिनी में आई है कि टेंशन इज नेचुरल. अब मुझे खुशी चाहिए. लेट मी ट्राई, जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, लेट मी एक्सपेरिमेंट विद अ न्यू बिलीफ सिस्टम. पहले बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल, अब हमने देखा पीस इज नेचुरल, ब्लिस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज नेचुरल. अब ये बिलीफ सिस्टम लिया,
2: पहले देखा था कि गुस्से से ही काम निकलता है, एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर इज नेचुरल. नेचुरली आप जब तक एक बार बोलो दो बार बोलो नहीं सुनेगा, डांट के बोल दिया काम हो गया.
3: राइट. कितने सारे सारा दिन बिलीफ सिस्टम है ना. जैसे आपने एक बार पहले भी शेयर किया था कि छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा है और अगर वो कुर्सी से टकरा जाए या किसी चीज से टकरा जाए तो उसको हम ये सिखाएंगे नहीं कि ये चलने में गलती थी. और ये लगती है छोटी बात कि हम उसको क्या कहेंगे, कुर्सी को हाथ मारेंगे, कोई बात नहीं लग गया ना, कुर्सी गंदी,
2: और सब स्टाफ को डांटेंगे हटाओ कुर्सी, किसने रखी ये गंदी कुर्सी, बेटर नहीं रोना, चलो कुर्सी को निकाल दो,
3: तुम्हारी गलती नहीं, कुर्सी खराब. सीख लिया. अच्छा, बच्चे को खिलौना ला के दिया, बच्चे को मूवी ले गए, सर्कस ले गए, उसको सिखाया दिस इज हैप्पीनेस. वी टॉट द चाइल्ड, दिस बिलीफ सिस्टम इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम अस टू अदर पीपल अराउंड अस.
2: बच्चा तो मैंने देखा घास लेके खुश हो जाता है, मिट्टी का टुकड़ा लेके खुश होता है, कागज फटे पुराने गंदे कागज को देख के हंसता है, खुश होता है.
3: बच्चा अगर हम फर्स्ट देखे बच्चा तो वो तो ऐसे इतना ओरिजिनली इतना प्योर होता है. बच्चे को फियर नहीं पता होता, बच्चे को एंगर नहीं पता होता, बच्चे को जेलसी नहीं पता होती, बच्चे को कॉम्पिटिशन नहीं पता होता, बच्चे को कंपैरिजन नहीं पता होता. किसने सिखाया। छोटा बच्चे को हम प्री स्कूल में जाने से पहले सिखाते हैं, कॉम्पिटिशन है, इतने सब बच्चे हैं, उसमें आपको आगे जाना है। वी नेवर टीच द चाइल्ड योर ओन परफॉर्मेंस मैटर्स, वी से इट हैज टू बी इन कॉम्पिटिशन टू अदर पीपल। बच्चा एग्जाम देके घर आता है, सी हम कैसे सटल तरह से बिलीफ सिस्टम को ट्रांसमिट करते हैं। बच्चा एग्जाम देके घर आता है, हम कहते हैं कैसा हुआ आपका पेपर आज, कैसा हुआ, कहना ठीक हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, ऑलवेज सेकेंड क्वेश्चन, बाकी सबका कैसा हुआ?
2: बहुत अच्छा हुआ
3: ना। अब आपकी परफॉर्मेंस इन रेफरेंस टू बाकी सब, बाकी सबका बहुत अच्छा हुआ, फिर आपका क्यों नहीं अच्छा हुआ? और अगर उसने कह दिया नहीं बाकी सबका तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ, फिर ठीक है। कॉम्पिटिशन, कंपेरिजन, ये बिलीफ सिस्टम हम सिखा रहे हैं। छोटे बच्चे को बड़ों के सामने खड़ा करा देंगे, गाना गा के सुनाओ, वो वाली पोइट्री सुनाओ, डांस करके दिखाओ, वो कर देता है छोटा सा बच्चा, सब लोग वाह वाह करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बिलीफ सिस्टम तभी से पड़ता है, परफॉर्मेंस गेट्स अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी अराउंड मी।
2: कंपैरिजन का तो कोई लिमिट ही नहीं रहा, वो देखो उसकी हेल्थ, देखो वो स्विमिंग में फर्स्ट, देखो ये। मैं अपने बच्चों को भी बोलता था कि भाई अगर कोई किसी और चीज में फर्स्ट है तो क्या वो आपकी तरह इतना अच्छा गा सकता है। आई शुड टेल, मेरी बेटी को मैंने बोला एक दिन, वो बोलने लगे ये इनको दुनिया के आता है, इनको शेयर मार्केट आता है, इनको अकाउंटिंग आती है, इनको पूरा बिजनेस रन करना आता है। तो मैंने बोला यू आर एन आर्टिस्ट, तुम जैसी वो पेंटिंग कर सकती है क्या, तुम्हारे जैसा वो गा सकती है, यू आर अ क्लासिकल सिंगर, यू आर अ पेंटर, तो उसमें एक है इसमें एक है। लेकिन नहीं, उसने तुमको मुक्का मारा और तुम चुप क्यों रहे, वो कितना स्ट्रॉन्ग है।
3: कॉम्पिटिशन एंड तो ये सारी चीजों से फिर डेस्टिनी में आ रहा है ना प्रभाव उसका। लेकिन क्योंकि भाग्य में आज जेलसी भी होगी, दुख भी होगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा कि अदर पीपल आर बेटर देन मी, क्योंकि बचपन से मुझे ये बिलीव सिस्टम नहीं किसी ने क्रिएट किया, आई एम अ यूनिक सोल, ये नहीं सिखाया ही नहीं किसी ने। आई एम अ सोल, माई क्वालिटीज आर प्योरिटी पीस लव, बाकी सब तो स्किल्स एंड टैलेंट्स है, ये भी नहीं सिखाया। स्किल्स एंड टैलेंट्स को ही मेरी आइडेंटिटी बना दिया, मेरे मार्क्स को मेरी आइडेंटिटी बना दिया, मेरी डिग्री को, मेरे प्रोफेशन को मेरी आइडेंटिटी बना दिया। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ये बताया ही नहीं। और फिर जब क्वालिटीज वैल्यूज की बात भी की तो वी थॉट वी हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर। प्यार किसी और से मिलेगा, रिस्पेक्ट औरों से मिलेगी, विश्वास औरों से मिलेगा, मुझे ये करना है, ये मेरी इनहेरेंट नेचर है, ये नहीं सिखाया। तो ये बिलीव सिस्टम्स होने से आज हम अपने डेस्टिनी को चेक कर रहे हैं। अब आपने जो पढ़ के सुनाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन
2: जी,
3: बिकॉज मोस्ट ऑफ अस टुडे आर अवेयर अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सिर्फ उसको ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं किया। सो वी थॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स व्हाटएवर आई वांट स्ट्रांगली
2: आई हैव टू विजुअलाइज दैट
3: एंड आई विल गेट इट। एंड आपने जो पढ़ा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट व्हाट यू वांट,
2: इट इज व्हाट यू आर,
3: इट इज व्हाट यू आर, जस्ट लुक एट द लाइन, मींस यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू आर। अब अगर मैं कहूं मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, दिस इज व्हाट आई वांट, मुझे इतना पैसा कमाना है इज व्हाट आई वांट, बट व्हाट आई एम इज अ पर्सनालिटी ऑफ डाउट। अब वांट तो मेरे अंदर डाउट करने की नेचर है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं,
2: हो सकता कि नहीं ये,
3: हाँ, और मेरे से बेटर है, दिस इज हु आई एम, मींस दिस इज माय थॉट्स। जब मैं उस टारगेट के बारे में सोचती हूँ आई क्रिएट वेरी पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स, नहीं नहीं मुझे करना है, मुझे बनना है। लेकिन जो मेरी पर्सनालिटी है, मेरी थॉट प्रोसेस है, वो डाउट करने की है, वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की है, आत्मविश्वास की कमी है, हीन भावना है अपने बारे में, दूसरों को देखने की आदत है, दूसरों जैसा बनने का संस्कार है, दूसरों को कॉपी करने का संस्कार।
2: ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप जो बात कर रही हैं अभी, तो लाखों करोड़ों रुपए की किताबें बिकती हैं, लाखों करोड़ों रुपए की टिकट्स बिकती हैं, लोग इसके क्या शिविर, मतलब जो भी है,
3: रिट्रीट्स, वर्कशॉप्स करते हैं,
2: कि बट उन्होंने यहाँ ये कहा कि आप बस उसको इमेजिन कीजिए कि मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, और ये देखिए अपने आप हो जाएगा।
3: और इसीलिए आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने वो किया लेकिन वो हुआ नहीं, मैंने विजुअलाइज किया। लेकिन
2: मुझे ये पॉइंट आपका बहुत पसंद आया कि मैंने क्यों किया, देखा कि बाजू वाले को मिल गई उसकी जेलसी में। आई एम जेलस बट वॉट आई वॉन्ट इज दैट कार।
3: राइट।
2: तो इन्होंने किताबों में ये लिखा है कि एक औरत जाती थी, रोज विजुअलाइज करती थी कि शोरूम में गाड़ी देखी, लाल गाड़ी, कि मैं उस गाड़ी को चला रही हूँ, गाड़ी को चला रही हूँ, एक दिन मुझे वो गाड़ी मिल गई।
3: राइट।
2: एक जादू है।
3: सी, आप जो एक एम रखेंगे, नहीं जादू नहीं है, जैसे आपने एक एम रखा कि मुझे एक्टर बनना है तो बन गए ना।
2: मैं जेलसी से नहीं बना ना।
3: नहीं, सपोज एक जेन्युइन एम,
2: मैंने मेहनत की ना,
3: तो मेहनत
2: में फोटो खींची, फोटो खींच के देखा कि वेदर मैं फोटोजेनिक हूँ कि नहीं, बाकी दूसरे फोटोग्राफ लगा के देखे, अपनी हाइट देखी, देखा, फिर रेडियो स्टेशन गया, रेडियो स्टेशन में मैं अपनी वॉइस टेस्ट की, स्टेज शोज किए हैदराबाद में, रविंद्र भारती में, लोगों को इनवाइट किया, उनकी ओपिनियन लिए, फिर फिल्म इंस्टीट्यूट गया।
3: लेकिन ये सब कुछ किया और ये सपोज बहुत लोग करते हैं
2: तो
3: यू विल गेट व्हाट यू आर। इसको देखें
2: तो मैं व्हाट एम आई, इसमें मैं क्या था, मुझे क्यों मिला,
3: इज विल पावर। व्हाट एम आई इज डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की शक्ति, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं कहीं भी। यू विल गेट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट।
2: ये शक्ति तो फिर उसमें है जब वो एडमिशन फॉर्म था जिसमें लिखा था कि क्या नाम है, क्या करना चाहते हैं। अगर एक्टिंग कोर्स में सिर्फ 8 सीट थी, 2 फॉरेनर्स की, मतलब हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में एक्टिंग कोर्स में जाना चाहते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 8।
3: राइट।
2: तो उसमें से मैंने लिखा आइदर एक्टिंग और नथिंग एल्स। नीचे अगर एक्टिंग कोर्स में नहीं मिला तो आप एडिटिंग कर लीजिए, कैमरा कर लीजिए, बाकी के कोर्सेज कर लीजिए। आई सेड नथिंग डूइंग, नो फिल्म एप्रिसिएशन, नथिंग, एक्टिंग ओनली।
3: राइट। सो विल पावर,
2: क्लैरिटी,
3: डिटर्मिनेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस।
2: ये तो अपने आप को चेक करके आया ना, टेस्ट भी तो किया था,
3: तो डेस्टिनी बनी ना। लेकिन सी, टेस्ट तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग होंगे जो गुड लुकिंग है, टैलेंटेड है, वॉइस भी अच्छी है, कई बार तो इन्फ्लुएंस भी है औरों का कि सब कर देंगे, लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट, बट व्हाट एम आई। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है साथ में, और किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, कोई भी चीज जो आपको अचीव करनी है, उस चीज को अचीव करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, सिर्फ डिजायर नहीं उस चीज को अचीव करने का, दैट्स व्हाट इट सेज, यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू आर। व्हाट आई वांट, एक डिजायर, एक गोल कि ये दिस इज व्हाट आई वांट, बट आई विल गेट ओनली अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम। सपोज मुझे एक बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए, कोई भी पेरेंट चाइल्ड रिश्ता, पेरेंट कहेंगे मुझे बच्चे के साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। लेकिन व्हाट एम आई, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत क्रिटिकल बच्चे के प्रति, बहुत पोजेसिव, सफोकेटिंग, तो आई मे वांट बट आई विल नॉट गेट, आई विल गेट व्हाट आई एम। दिस डिफरेंस मेरे को बहुत,
2: आई वांट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, If I am friendly,
3: I am accepting, I am non-judgmental. Not only I am friendly. Friendly means kya? I accept my child. मैं critical नहीं हूँ, मैं appreciate करता हूँ, मैं उसका comparison नहीं किसी और के साथ करता सारा दिन, मैं उसको हमेशा motivate करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा प्यार उसके प्रति अनकंडीशनल रहता है, ये सब कुछ मैं करूंगा, देन आई विल गेट दैट रिलेशनशिप व्हाट आई वांट। लेकिन वांट है कि आई वांट अ नाइस रिलेशनशिप, आई वांट अ गुड फ्रेंडशिप, लेकिन मैं डाउट करता हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ ना, आई वांट,
2: और मैं वो चाहता हूँ ये बने जो मैं चाहता हूँ,
3: एब्सोल्युटली,
2: उसकी चॉइस में yes, मुझे पसंद नहीं,
3: यस यस, मैं दूसरों को अपने
2: की हो या शादी की हो,
3: कहीं भी,
2: यहाँ उठने बैठने की हो, मेरी चॉइस के फ्रेंड्स हो, मेरी चॉइस के तुम गाड़ी चलाओ, मेरी चॉइस के तुम कपड़े पहनो,
3: कंट्रोलिंग ना, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कुछ और बनाने की, व्हाट आई वांट, व्हाट आई एम। सिर्फ वांट से नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुझे आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दैट, यू विल नॉट गेट इट बाय वांटिंग। इवन अगर आप दिन में यू नो क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कहे वो थॉट बार बार क्रिएट करो, बार बार क्रिएट करो, वो विजुअलाइज करो, उसको कागज पे लिखो, अपने सामने रखो, उसमें कोई डाउट भी मत क्रिएट करो. सपोज आई से आई वॉन्ट अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, नो डाउट आई वॉन्ट, बट वॉट अबाउट द क्वालिटीज विच आर नीडेड टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. यू वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड एक्टर, वॉट अबाउट द क्वालिटीज विच आर नीडेड टू बिकम अ वेरी गुड एक्टर. स्किल्स एंड टैलेंट्स एक बात है, स्किल्स एंड टैलेंट्स डेवलप भी हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी क्या मैंने डेवलप की जो मुझे वो वॉन्ट मिल जाए. तो अब जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ वर्क करेंगे, हमें ये याद रखना होगा, माई थॉट्स बिकम डेस्टिनी, नॉट माई डिजायर्स बिकम डेस्टिनी, नॉट माई टैलेंट बिकम्स डेस्टिनी, माई थॉट्स बिकम डेस्टिनी. तो थॉट को क्लीन करना होगा, थॉट की चेकिंग करनी होगी. आई विल गेट हु आई एम.
2: मेरा एक दोस्त था, बड़ी अच्छी बात उसने कही कि यार मेरा अस्थमा जाता ही नहीं था. तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि चलो वो फलाने फलाने दादर में एक बहुत अच्छा होम्योपैथ है और उसकी दवा में उसकी खा लो तो आप ठीक हो जाएंगे. तो मैं यार अपनी बीवी के सर में दर्द हो गया था, मेरे को मालूम था कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन मैंने 6 महीने उसके लिए खा ली. मुझे तो ना फेथ भी नहीं था और मुझे मालूम था ठीक नहीं होना. मैं कहा कि देख ला बेकार चीज होम्योपैथ, अभी देखो.
3: क्योंकि ट्रस्ट नहीं किया.
2: नहीं अभी व्हाट आई एम
3: राइट,
2: आई वांट कि मैं ठीक हो जाऊं,
3: हो जाओ,
2: लेकिन मुझे मालूम है इससे नहीं होना है.
3: सो नहीं
2: होगा, कितना कॉम्प्लिकेशन है.
3: एब्सोल्युटली. तो ये सारा दिन अब चेक करना है, क्योंकि थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी. जब ये क्लियर हो जाता है तो अब अपने भाग्य में, अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो एक ही व्यक्ति के पास जाना है.
2: अपने पास आना है
3: और कहीं नहीं जाना है.
2: मेरे पास जाऊं.
3: Absolutely.
2: I love this.
3: और कहीं नहीं जाना है और किसी से नहीं पूछना है, बस देख लेना है क्या चाहिए भाग्य में और उसको करते जाना है.
2: आज की सबसे अच्छी बात लगी है मुझे.
3: दिस इज बट वेरी इम्पोर्टेंट एंड दिस मेक्स अस वेरी पावरफुल कि मेरा भाग्य मेरी अपनी रचना है.
2: मैं कहां भीख मांगता फिरता हूं.
3: अब जब हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज यू गेट नॉट व्हाट यू वांट, यू गेट What you are. अब who are you? आत्मा. मैं कौन हूँ? जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो मैं हूँ वो मुझे मिलेगा. तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, बंडल ऑफ संस्कार एंड कार्मिक अकाउंट.
2: आत्मा.
3: मैं कौन हूँ?
2: संस्कार.
3: आत्मा, आत्मा जिसके बहुत सारे संस्कार हैं एंड जिसके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट हैं.
2: जी.
3: ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट भी आर व्हाट आई एम. मैंने ही क्रिएट किए थे.
2: और प्रेजेंट में भी तो बना रहा हूँ ना.
3: प्रेजेंट में बना रहा हूँ, पास्ट के कैरी फॉरवर्ड भी तो कर रहा हूँ.
2: तो दोनों भी है ना.
3: जब हम
2: वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ फिर बना रहा
3: हूँ, प्रेजेंट भी बना रहा हूँ. अब क्या होता है, कई भाई बहने फिर लिखते हैं कि हमने अच्छी थॉट क्रिएट की, क्लीन थॉट क्रिएट की, सिंसियरिटी, मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फिर भी वो डेस्टिनी वो नहीं बनी जो चाहिए. थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी. ये मेरे साथ हर क्षण वर्क हो रहा है, ऑलवेज वर्क हो रहा है. अब कब वर्क हो रहा है? जब से मैं आत्मा इस यात्रा पर हूं. सिर्फ मैं जब से इस शरीर में हूं तब से नहीं. थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी ये फॉर्मूला सिर्फ इस शरीर में प्रवेश होने के बाद नहीं वर्क हुआ मेरे साथ. थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी ऑलवेज.
2: ये पॉइंट मैंने कभी सोचा ही नहीं.
3: ऑलवेज. अब मैंने पिछले कॉस्ट्यूम्स में भी थॉट्स हैव रिटन माय
2: डेस्टिनी.
3: अर्लियर जन्म मींस पहला कॉस्ट्यूम. कॉस्ट्यूम बदला था पर थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी इक्वेशन तो तब भी वैलिड थी.
2: तब भी सारा कैरी फॉरवर्ड हो क्या रहा है?
3: वो तब से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. अब क्योंकि वो तब से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उस एलिमेंट को अपने इक्वेशन के अंदर हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. मेरा कार्मिक अकाउंट है कुछ. सपोज मेरा कार्मिक अकाउंट है कि मैं कुछ मैंने किया है पास्ट में, जिस वजह से अब मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे उतनी सफलता नहीं मिलती है, नहीं मिलती है. किसी और का कार्मिक अकाउंट है, वो मेहनत नहीं करता ज्यादा, जिसे सफलता आती जाती है, मिलती जाती है. ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको डिलीट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं करना चाहिए. क्योंकि इग्नोर करने से अभी दुखी हो जाते हैं और अब दुखी होकर अब का थॉट्स भी चेंज हो जाता है. इफ लेट्स से मेहनत करो सफलता नहीं मिल रही, मेहनत करो सफलता नहीं मिल रही, पॉजिटिव थॉट्स भी अब क्रिएट कर रहा हूं, क्लीन भी हो ऑनेस्ट भी हो, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही उतनी जितनी आई वॉन्ट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई वॉन्ट इतनी सक्सेस. मेरे को डाउट भी नहीं है कुछ भी उसमें, 100% कन्विक्शन है, सिचुएशंस फेवरेबल है, सब कुछ प्रेजेंट में 100% से ज्यादा परफेक्ट है, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि एक फैक्टर और है और वो है मेरा पास्ट कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट. ये पास्ट कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट मेरी सक्सेस उतनी नहीं ला रहा जितनी मुझे चाहिए. अब ये देखकर मन डिस्टर्ब होता है. जैसे ही मन डिस्टर्ब होता है, अब जो थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, दुख, चिंता, निराशा, होपलेस फीलिंग के व्हाट इज दिस, हाउ मच एम आई गोइंग टू वर्क हार्ड एंड नॉट गेट रिजल्ट. इफ एट दैट टाइम आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस के थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी. अभी जो मेरी डेस्टिनी हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर मेरी पास्ट थॉट्स का भी है, एंड पास्ट मीन्स पास्ट पास्ट पास्ट पास्ट कार्मिक अकाउंट्स का भी है. उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और ये ध्यान रखना है कि उसको देखते हुए अभी जो थॉट्स क्रिएट हो रही है उसमें कोई नेगेटिविटी ना आ जाए उस वजह से, तब वो डेस्टिनी इम्प्रूव हो जाए.
2: पॉइंट समझाने, अगर मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है और मैंने पहले जो जो सोचा था, जो भी किया था, आज मेरी सक्सेस में वो बाधा डाल रहा है, तो मैं वीक नहीं हो जाऊंगा? ठीक है यार, मैं तो फेल ही होना था मुझे, मैं तो उल्टा मैं ना वो हो जाऊंगा डिप्रेस.
3: सपोज हम पैरामीटर रख के करते हैं इसको वापस. सपोज मुझे 100% चाहिए कुछ चीज में, इक्वेशन में 100%, सब फैक्टर्स परफेक्ट है, मेहनत भी परफेक्ट, मिलना चाहिए 100%, सब बोल रहे हैं आपको 100% मिलना चाहिए.
2: ये मिल कितना रहा, 60-70?
3: चलो 50.
2: 50.
3: ओके, मिला 50, फिर मेहनत की 50, फिर मेहनत की 50. अब परेशान अगर हो गए, अब चिंता में चले गए,
2: वहम में चले जाएंगे,
3: वहम में भी चले गए,
2: अंगूठी पहन लो, ये पूजा करा लो,
3: अब जैसे
2: ये...
3: उसमें गए तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस
2: कम हो गया,
3: कम हो रहा, तो लो कॉन्फिडेंस, अपसेट फीलिंग, इनसिक्योरिटी कि शायद मेरे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है. अब जैसे ही ये थॉट्स प्रेजेंट के, ये जो हो रहा है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पास्ट का था, लेकिन जैसे ही ये थॉट्स प्रेजेंट में क्रिएट होने लग जाए तो प्रेजेंट थॉट्स से भी डेस्टिनी है. तो जो 50 पर हम पहुंचे थे,
2: 60 हो जाएंगे फिर.
3: 50 पर हम पहुंचे थे जब हमारी स्थिति अच्छी थी.
2: अच्छा, मतलब और रिवर्स कर दिया?
3: नेचुरली नो, मेरी स्थिति बिल्कुल अच्छी थी
2: तो और गिर गए.
3: सी, आप 100%
2: 50 से 40, 40 से 30, हम तो उल्टा गियर में चले गए.
3: नेचुरली हो जाएगा.
2: हाँ.
3: क्योंकि आई एम एकदम कॉन्फिडेंट, मैंने मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन 50 मिला. मतलब जब मेरी स्थिति परफेक्ट थी
2: तब
3: तो मुझे
2: मिला.
3: 50 मिला.
2: और जब मैं फुल ऑफ नेगेटिव हो गया, निराशा आ गई और लोगों में जाके हाथ दिखाने लग गया, पूजाएं कराने लग गया, अंगूठियां पहनने लग गया,
3: तो अब मेरी थॉट्स नेगेटिव होने लग गए हैं, तो अब मेरी पास्ट कार्मिक अकाउंट उधर ही है, उसी पैरामीटर पर है, लेकिन प्रेजेंट थॉट्स
2: और नीचे गिरा रहे हैं,
3: तो मेरे को 50 से 40 हो जाएगा, और फिर वो मेरे पर प्रभाव डालेगा.
2: ये भी बिलीफ है ना,
3: 30, क्या
2: दिस इज नेचुरल ना? 100 बार फेल होता है बंदा तो गांव गांव गली गली दरगाह से मंदिर से चर्च से गुरुद्वारे से हर जगह जाता ही है ना.
3: सो इस इक्वेशन को याद रखना, लेकिन थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी. 50 को एक्सेप्ट करना पहले,
2: 40 नहीं होने देना.
3: अगर 50 पे भी बने रहे, लेट्स से
2: फाइट करना
3: है, तो नो, लेट्स से आई रिमेन एट 50 फॉर एवर फर्स्ट, इज इन दैट ओके?
2: मच बेटर देन गोइंग टू 20.
3: दिस इज इट.
2: ये बड़ी अच्छी लगी बात.
3: दिस इज इट.
2: वेरी नाइस.
3: एक्सेप्टिंग कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, दिस आई हैव टू एक्सेप्ट.
2: मैं अपना बेस्ट देकर 50 पे तो हूँ, और मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट जितना भी डिस्टर्ब करे, प्रेजेंट में मैं अच्छा बनाऊंगा.
3: एब्सोल्युटली. और
2: मतलब ये पॉजिटिव बात है,
3: ये पॉजिटिव है, और जो इतना डिटर्मिनेशन से इस पॉजिटिव पे चलेगा ना, वो 50 से 60 पे जाएगा, क्योंकि उसने प्रेजेंट फैक्टर तो बहुत पावरफुल है ना. अगेन मैं डिक्लाइन पे ना चला जाऊं. अगर मुझे ये सारे पैरामीटर्स पता होंगे ना कि ये है मेरी प्रेजेंट क्वालिटीज. सपोज प्रेजेंट मेरे अंदर ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क, यू नो समबडी कैन बी लाइक दैट. मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे पास रिसोर्सेज है, परिस्थितियां फेवरेबल है, सब कुछ अच्छा है, तब मुझे 50 मिल रहा है. क्योंकि इन सब फेवरेबल सिचुएशंस और क्वालिटीज में एक फैक्टर है पास्ट कार्मिक अकाउंट, जो मैंने ही क्रिएट किया था मेरी थॉट्स के हिसाब से. वो फैक्टर थोड़ा सा मेरा अभी अनफेवरेबल लग रहा है. चार फैक्टर्स फेवरेबल, एक फैक्टर थोड़ा सा उसको नीचे खींच के 50 पे ले आता है. लेट मी रिमेम्बर, मेरे प्रेजेंट चार बहुत फेवरेबल है, अभी भी एक अनफेवरेबल है. लेकिन उस एक अनफेवरेबल फैक्टर को प्रेजेंट के फेवरेबल पर ना प्रभाव डालकर, नहीं तो मेरे सारे पांच अनफेवरेबल हो जाएंगे. मैंने डीमोटिवेट हो गया, सेल्फ डाउट क्रिएट कर लिया, दूसरों को देखकर जेलेसी भी क्रिएट कर ली, इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गया. तो पास्ट अनफेवरेबल था, अब प्रेजेंट अनफेवरेबल हो जाएगा. अगेन थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी.
2: Beautiful.
3: This, if I always remember this, I have to do that. Past is a very powerful, dominating factor.
2: तो सिस्टर ये बात बहुत पसंद आई मुझे कि पास्ट है.
3: है. उसको एक्सेप्ट करना चाहिए.
2: एक्सेप्ट नहीं. देखिए, मैंने नई गाड़ी खरीदी आज. मैंने खुद ही एक्सीडेंट मार दिया. उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि कोई मेरा दोस्त चला के मार दे या ड्राइवर ठोक के आ जाए तो मैं चिढ़ता रहूंगा.
3: yes.
2: जब मैंने समझ गया, जैसे आपने समझा दिया मुझे अभी, कि जो कुछ मेरे पास्ट मैंने ही किया था, मेरी वजह से ही जो 50 पे अटका हूँ, तो एक तो वहाँ इतना गुस्सा और इतनी टेंशन और इतनी वो परेशानी नहीं, एक्सेप्टेंस आ गया.
3: yes.
2: अब यहाँ से मुझे 50 का 60 करना है.
3: right.
2: और 40 पे नहीं जाना है कि भाई हाथ दिखाने जाऊं, कुंडली दिखाने जाऊं, पूजाएं करूं, नजर उतारूं.
3: नॉट ओनली दैट, यहाँ पर ब्लेम, निराशा, निराशा नहीं आनी
2: चाहिए. निराशा के साथ साथ मैं ब्लेम गेम मेरा दूर हो गया.
3: yes. so it's very
2: कोई
3: important.
2: और मुझे गिरा रहा है.
3: Absolutely.
2: लोग मुझे गिरा रहे हैं, यहाँ कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, यहाँ कोई दूसरे लोग सिफारिश से आगे बढ़ गए, मुझे पीछे.
3: वेरी ब्यूटीफुल.
2: ये सारी, मतलब आपसे yes. बात करते करते ये मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं.
3: ये सारी चीजें मेरे प्रेजेंट थॉट्स को क्या कर रही है. ये सारे थॉट्स जो आपने बोले, दूसरों से कंपैरिजन, ये सोचना कि दूसरे मुझे गिरा रहे हैं या दूसरे कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, जिस ये सारे मेरे प्रेजेंट की थॉट्स.
2: मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो कहते हैं आम भाषा में,
3: ऑफिसेस में बोलते हैं. ये मेरी प्रेजेंट थॉट्स को क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं.
2: एक्सेप्टेंस हो गया, ब्लेम करना छोड़ दिया, अब हम अपनी थॉट्स को
3: और पावरफुल बनाए, जिधर अभी है उससे. और जब भी अगर परिस्थिति अनफेवरेबल होगी, यू नो सिचुएशंस मेरी फेवर में नहीं जा रही है, और फिर भी मैं स्ट्रांग रहूं, तो हम अपनी शक्ति को कितना ऊपर उठा के ले जाते हैं.
2: ये स्ट्रांग कैसे रहूं, मैं अगले एपिसोड में पूछूंगा आपसे. बहुत इंटरेस्टिंग है. थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू. ओम शांति.
2: थैंक यू सो मच. ओम शांति. नमस्कार.
4: Law of attraction does not mean you get what you want. It actually means you get what you are. Our thoughts and words are what we are. These vibrate to the universe and we get them back. What you are is a soul carrying sanskars and karmic accounts. So, what we are going to get will be according to our sanskars and karmic accounts. Thoughts create destiny is always true for the soul, whether in this costume or an earlier one. Costumes may change, but the thoughts created then will still create our destiny. Destiny is created according to our qualities and skills of the present and also karmic accounts of the past. Even if we are not getting the desired result, do not let any of the present qualities and karmas decline. If we create jealousy, insecurity, anxiety, then we are creating a negative present. Accept the past carry forward and keep yourself strong and motivated in the present. If the present remains powerful and positive, we will gradually settle the past and create beautiful karmas which will influence our present and our future.
5: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर अरविंद सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर रेडियो प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। तो आइए दोस्तों, इस सफर को बहुत खूबसूरत यादगार सफर बनाते हैं। और कहते हैं, उस रोज दिवाली होती है जब मन में हो मौज बहारों की, चमकाए चमक सितारों की, जब खुशियों के शुभ घेरे हो, तन्हाई में भी मेले हो, आनंद की आबा होती है, उस रोज दिवाली होती है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको 50s और 60s के ओल्ड मेलोडी सुनाता हूँ। तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना है 50s और 60s में जो रिलीज हुई थी, और उस समय जो लोग मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे, और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकला, और इसलिए उस दौर को हिंदी फिल्मों का सुनहरा दौर कहा जाता था। जीवन में हर एक बात का कोई मतलब जरूर होता है। समय बलवान है, समय पर ही पता चलता है क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। जब ये हसरत होती है तो गीत का सार याद आता है। और चलिए मैं उस गीत की तरफ इशारा करता हूं जो 1951 में रिलीज हुई थी, जिसमें अर्जुन और शम्मी कपूर को पिक्चराइज किया गया था। शम्मी कपूर को तो आप सभी जानते हैं ही, लेकिन अर्जुन का पता नहीं चला बाद में क्या हुआ इस फिल्म के बाद। तो चलिए इस रोमांटिक गीत को सुनते हैं, फिर बातें करते हैं।

0: का कदम।
1: जी हाँ, ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। मुकेश और लता जी ने इस गीत को गाया है, इंदिवर साहब ने इसे बहुत अच्छी तरह से लिखा है और रोशन साहब ने इसे संगीत से सवारा है। फिल्म मल्हार 1951 का ये खूबसूरत गाना आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। कहते हैं जब प्रेम के दीपक जलते हो, सपने जब सच में बदलते हो, मन में हो मधुरता भावों की, जब लहके फसले छाओं की, उत्साह की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं 1950s के कुछ गाने मैं सिलेक्टेड आपको सुना रहा हूं, और खास 50s और 60s का, वो भी जो अक्षर बी से शुरू हो जाता है। तो बड़े अरमानों से ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपने सुना, लता और मुकेश ने वो गाना आपने सुना मल्लार फिल्म का। तो आइए 1951 के बाद एक और फिल्म आई थी आर और पार, ये फिल्म आर पार 1954 में ये फिल्म आई थी, जिसमें कालू नाम का एक टैक्सी ड्राइवर होता है और मुंबई में टैक्सी चलाता है। तो उस समय होता क्या है, जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं उनके बहुत सारे मुश्किलें आती हैं, अच्छी भी बातें होती हैं उनके साथ में, और रात और दिन मेहनत करते रहते हैं। तो कालू जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी दो लड़कियों से प्रेम हो जाता है और दोनों भी उससे शादी करना चाहते हैं। अब बात आती है कि शादी करे तो किससे करे। तो इसमें एक बहुत ही कॉमेडी रेप बताया गया है, कॉमेडी फिल्म है, और जिसे गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया है, और इसका म्यूजिक और संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने उस समय, और इसके गीत जो लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। बहुत ही खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये जो उसमें फिल्मों में जो काम करने वाले लोग थे, जैसे जॉनी वॉकर, श्यामा शकीला, जगदीप, जगदीश शेट्टी, राज खोसला, आत्माराम, गुरुदत्त खुद, और इस तरह से गुरुदत्त की इस फिल्म को असिस्ट कर रहे थे उनके ही ब्रदर। तो शायद आपको याद हो एक खूबसूरत गाना है जिसके बोल आपको अभी भी याद होगा, जैसे मैं गाना चलाऊंगा।

जी हाँ, ये खूबसूरत गाना है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस गीत को सुनते हैं। बजरू सुल्तानपुरी का ये खूबसूरत गीत और गीता दत्त ने इसे गाया है और संगीतकार ओपी नैयर। आर पार का 1954 का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, कहते हैं जब प्रेम से मीत बुलाते हो, दुश्मन भी गले लगाते हो, जब कहीं किसी से वैर न हो, सब अपने हो कोई गैर न हो, अपनत्व की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आज के सफर को बहुत यादगार बनाएंगे ओल्ड मेलोडीज जो आपको सुना रहा हूँ 50s और 60s के। तो बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, गीता दत्त का गाया हुआ, ओपी नैयर का संगीत से सदा, 1954 का आर और पार का ये गीत आपने सुना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और कहते हैं बचपन हमारा कभी भी यादगार रहता है, बचपन बुलाए नहीं भूलता, बचपन की बातें, बचपन की मोहब्बत बहुत याद आती है, माता पिता भाई बहन का प्यार बुलाए नहीं भूलता। सचमुच कभी कभी आप सोचिए एक बार अपने बचपन को याद करके, तो बड़ा ही वो जो फील है, वो शायद उस समय का जो तनाव टेंशन से दूर हम लोग रहते हैं, बल उस समय पैसा हो ना हो हमें कोई फिक्र नहीं रहता, बचपन इसीलिए खूबसूरत होता है। इसीलिए अंग्रेजी में भी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो ऐसा ही प्यार भरा एक और गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भरत भूषण पर एक पिक्चर आया था 1952 में, जिसका नाम था बैजू बावरा, शायद आपने सुना होगा। उसमें एक खूबसूरत गीत है जैसे कि ये।

जो अक्षर बी से शुरू होता है। किसी को क्या बताए कि कितने मजबूर है हम, चाहता एक तुमको और तुमसे ही दूर है हम। आइए बचपन की मोहब्बत को ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूं का लिखा, नौशाद साहब का संगीत से सजा, बैजू बावरा का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना आप अभी सुन रहे थे। नौशाद साहब का संगीत बैजू बावरा, जी हाँ इसके गाने सभी हिट थे और हम लोग सुना रहे हैं आपको अक्षर बी से। तो ये खूबसूरत गाना आपके लिए अभी था, 1952 का ये खूबसूरत गाना आपने अभी सुना। आइए आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, कहते हैं जब तन मन जीवन सज जाए, सद्भाव के बाजे बज जाए, महकाए खुशबू खुशियों की, मुस्काए चंदनियां संडियों की, तृप्ति की आवा होती है उस रोज दिवाली होती है। आप समय है रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM पर, मैं हूं आपका हम सफर सनी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गाना मुझे याद आ रहा है जो अक्षर बी से शुरू होता है। जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण का लिखा, सुमन कल्याणपुरी और रफी का गाया ये खूबसूरत गीत, जिसको संगीत से सवारा है मदन मोहन ने। 1964 का ये फिल्म है जिसका नाम जहां आ रहा था, और इस फिल्म में एक बहुत ही सुंदर जो कहानी है, प्रेम कहानी है,

जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे पल आते हैं जाते हैं, खुशी के, गम के और साधारण पल भी आते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या किया जाए, कभी कभी हम सोचते हैं अरे कितना कुछ करना है और कितना मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे कहीं कश्मकश हमारे जीवन में आते जाते हैं और उसमें ऐसे मुश्किल घड़ी में या फिर ऐसे तन्हा में किसी का आगमन हो जाता है तो जीवन में बड़ा सुकून मिलता है। बात मुद्दत की ये घड़ी आई है। जी हाँ, ये खूबसूरत गाना अभी आपको सुनाते हैं। तो चलिए, जहां आरा 1964 का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। हमसे दीवाने कहीं तरके वफा करते हैं, जान जाए कि रहे बात निभा देते हैं, जान जाए कि रहे बात निभा देते हैं। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सभी से बातें हो रही है और आप बहुत ही पुराने 1950s और 60s के गानों का आनंद उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इन पुराने फिल्मों के बारे में या फिर इनकी कुछ जीवन कहानियों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि बस बातें सुनते जाए कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन को छू जाते हैं ये सारी चीजें। तो आइए ऐसा ही कुछ एक और फिल्म के बारे में बात करूंगा, चांद और सूरज। हुआ ऐसे कि 1965 में ये मूवी गंगा चित्रा ने प्रोड्यूस किया था, जिसको डायरेक्ट किया था दलाल गुहा ने। फिल्म के जो कलाकार थे धर्मेंद्र, अशोक कुमार, निरुपमा रॉय, तनुजा और अजित सेन, और इस पूरे फिल्म को संगीत से संवारा था सलील चौधरी ने। और इसमें एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, बागों में कली खिली। और हुआ ऐसा कि इस गाने को गाया आशा भोसले जी और सलील चौधरी ने संगीत दिया। अब बिल्कुल यही सारा म्यूजिक, यही सारा कंपोजिशन जो है, एक 1966 में फिल्म आई थी मलयालम मूवी छेमम करके, और उसमें ये गाना बिल्कुल एज इट इज उसका म्यूजिक कंपोजिशन कॉपी किया था। तो वहां पर 1966 के इस फिल्म छेमम को नेशनल अवार्ड मिला इस म्यूजिक के। तो समझ सकते हैं कि आपने ये खूबसूरत जो गाना है दूसरे स्टेट में इसको कितना पॉपुलैरिटी मिली। कहते हैं जब तक मानव नहीं उठेगा, अपने हक को लेकर नहीं लड़ेगा, होगा तब तक उसका अपमान, कब तक मदद करेगा भगवान। जी हाँ, कभी कभी हमें अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है और फिर बाद में हम उसे अपनाना भी पड़ता है। तो ऐसे कहीं कश्मकश जीवन में आते हैं तो किसी न किसी मोड़ पे हम अपने जीवन में अपनी शक्तियों का प्रयोग करके भी हम अपने हक को पा सकते हैं। लेकिन पहले विधि विधान को समझे, नियम संयम को समझे, उस अनुसार करते हैं तो वो सभी के लिए एक प्रेरणा मिल सकता है। अगर कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो हो सकता है कि काम बनने के बजाय और बिगड़ जाए। तो चलिए बातें कम करके सीधे मैं ले चलता हूँ आपको इस फिल्म के गीत की ओर, बागों में कली खिली। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM।

0: सफर अरविंद सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। बहुत ही खूबसूरत गीत का आप आनंद उठा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गीतों का सिलसिला जारी रहेगा और गीतों के बीच में फिल्मी दुनिया की कुछ खास बातें, जो कुछ कही हैं और कुछ अनकही बातें भी हैं। तो आइए, 1960s में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी, और ये फिल्म के प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी थे और इसके डायरेक्टर थे राम मुखर्जी, और इस फिल्म में जो कलाकार थे वो सुनील दत्त, जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, जागीरदार, हेलन, लीला चिटनिस, प्रेम चोपड़ा और संजीव कुमार। अब ये फिल्म जो बनी 1960 में हम हिंदुस्तानी, इसमें एक बहुत ही पॉपुलर गाना था छोड़ो कल की बातें, लेट गो ओल्ड स्टोरीज, यानी पुरानी बातों को छोड़कर नई चीजों को अपनाए, नया हिंदुस्तान बनाए। तो ये पॉपुलर गाना रहा इस फिल्म का। अब इस फिल्म के बारे में बता रहा था, 1960 में जब ये फिल्म रिलीज हुई, 1952 में एक बंगाली फिल्म आई थी जिसका नाम था बासु परिवार, और ये फिल्म का ये रीमेक हिंदी में बना 1960 में हम हिंदुस्तानी। इसके साथ एक और छोटी सी स्टोरी जुड़ी हुई है, हेलन। हेलन इसमें अच्छा रोल किया एक डांसर का, तो उसके बाद उन्हें कैरेक्टर रोल कभी नहीं मिला। उसके बाद जो भी फिल्में हेलन को मिली उन सब में वो एज ए डांसर ही कास्ट किया गया। उषा खन्ना ने इस फिल्म को संगीत दिया था और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बिजनेस इसने किया था। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को, जैसे कि ये गाना,
2: बाल मोरी लट सुल जाते, बाल मोरी लट सुल जाते।
1: आशा भोसले की आवाज में उषा खन्ना का संगीत, फिल्म हम हिंदुस्तानी, 1960s का ये खूबसूरत गाना। आप सुने हैं ख्वाबों का सफर रेडियो प्रोग्राम, मैं हूं आपका हम सफर सनी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत गानों का आनंद उठा रहे हैं। 1950s और 60s के ये खूबसूरत सिलेक्टेड गाने जो अक्षर बी से शुरू होता है, मैं आपको सुना रहा हूँ। आइए 1960s के बाद 1962 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आरती, और इस फिल्म में अशोक कुमार को पिक्चराइज किया गया था, साथ में मीना कुमारी, आरती गुप्ता, प्रदीप कुमार, दीपक, शशिकला, सुरेखा और राम निरंजन शर्मा, रमेश देव, प्रवीण और केष्टो मुखर्जी, इसके साथ ही मास्टर अनिल, इन सभी पर यह फिल्म आया गया था। तो एक इसमें गीत है जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बार बार तुहे क्या समझाए। इस बात को सुनने के बाद मुझे लगा आज के समय में हर बात को बार बार बताना पड़ता है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे प्रेम की बात हो या नशा मुक्ति की बात हो, इन सभी के लिए एक अभियान छेड़नी पड़ती है, उसके जरिए लोगों को बताना पड़ता है। फिर भी लोक कल्याण की बात, लोक कल्याण के हित में बार बार बताने के बावजूद वो चीजें जो है उतना होता नहीं जितना होना चाहिए। तो चलिए अब बात आती है जब मोहब्बत के, इस गाने में मोहब्बत से जुड़ी बातें हैं। तो मोहब्बत की बात भी मुझे लगता है कि जब से मोहब्बत शुरू हुई तब से इसे बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि कोई इसे आज तक ठीक से नहीं समझा है। अगर आपने समझा हो तो जरूर मुझे समझा देना। तो चलिए गीत ये आपके लिए खास,

मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ ये गीत लता मंगेशकर और रफी साहब ने गाया है। रोशन साहब ने इसे संगीत दिया था फिल्म आरती 1962 का। तो चलिए इसी के साथ मैं एक और गाना आपको सुनाना चाहूंगा, बैक टू बैक दो गाने। एक और 1968 में फिल्म आई थी, राजकुमार पर पिक्चराइज किया गया था और पूरी फिल्म में फोकस फैदा रेमन पर किया गया था। नीलकमल में एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, बाबुल की दुआ लेती जा। तो ये गाना भी बहुत पॉपुलर रहा 60s में और लोगों ने काफी हद तक आज भी इसे बहुत प्यार करते इस गीत को सुनते हैं। रवि साहब का संगीत, नीलकमल फिल्म का, साहिद लुधियानवी साहब का ही लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, आपके लिए सुनाते हैं बैक टू बैक दो गाने। आप समय है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। न जाने कैसा रिश्ता है इस दिल का तुझसे, धड़कना भूल सकता है पर तेरा नाम नहीं। हमारी आरजुओं ने हमें इंसान बना डाला, वरना जब जहां में आए थे बंदे थे खुदा के।

तो चलिए बहुत ही खूबसूरत दो बैक टू बैक खूबसूरत गानों का आनंद उठाया है। मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही प्यारे प्यारे गीत जो है आज के इस कार्यक्रम में सुनने को मिला। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, सोने का टुकड़ा क्यों ना हो जाए कीमत कम नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं इन लाइनों के साथ साथ ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि हम कभी कभी अपने मूल्य को या अपने वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाते कई बार लालच लोग या जल्दबाजी के कारण उसे पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंसानियत कम हो जाती है और हमारी वैल्यू गिर जाती है। इसलिए मूल्यों को सामने रखिए, आप खुद मूल्यवान बन जाएंगे। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबो खास सफर, मैं आपका हम सफर सनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलना चाहता हूं। ये बहारें फिर भी आएगी, ये एक फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था गुरुदत्त ने। इसके साथ ही इस फिल्म में जो कलाकार थे माला सिन्हा, धर्मेंद्र, तनुजा रहमान और इन सभी लोगों ने इसमें काम किया। ओपी नैयर साहब ने संगीत दिया था। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं और हम सोचते हैं कि क्या अब क्या होगा, ऐसे में कुदरत उस जगह किसी और को रिप्लेस कर देता है और कार्य चलता है, वो काम हो जाता है। तो हमें भी कभी कभी कुछ मुश्किलें आती हैं तो रुकना नहीं है, बस कोशिश करना है, प्रयास करना है और आगे बढ़ना है। प्यार आज भी तुझसे उतना ही है, तुझे एहसास भी नहीं और हमने जताना भी छोड़ दिया। उन्हें शौक था अखबारों के पत्रों पर बने रहने का, वक्त ऐसा गुजरा कि वो रद्दी के भाव बिक गए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। तो चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, महेंद्र कपूर की आवाज में, कैफी आजमी का लिखा, ओपी नैयर का संगीत से सजा ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए।

0: फ्लाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे पहले हमारे साथ है शिवम। शिवम, आप अपने बारे में बताओ।
1: मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं एमपी पचोड़ से आया हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
1: फिफ्थ।
0: और उसके बाद युग। युग, आप बताओ।
2: मैं सूरत वराछा से आया हूँ, मैं चौथे क्लास में पढ़ता हूँ।
0: और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत वराछा से आया हूँ।
0: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
3: मैं 9 में पढ़ता हूँ।
0: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: सेकेंड।
5: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं एमपी से आई हूँ, मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
8: हाँ दीदी।
0: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो?
8: रात को
0: देखते हो। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा, जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो, जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
9: मुझे एक सपने में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
0: अच्छा, मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना है, तो आप संगीत सीखने लगे?
9: हाँ दीदी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया, है ना? और किसी को अपना सपना याद है? और पायल, मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखी है नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
9: मैंने देखी थी।
0: तो कोई सपना आया आपको?
9: हाँ।
0: उसको देखने के बाद
9: जग गए?
0: नींद से जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा, ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं, हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे वो करेंगे, हम बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा, तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
10: मैं डॉक्टर बनूंगी।
0: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
10: दीदी, मरीजों का इलाज।
0: मरीजों का इलाज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान, आप बड़े होके क्या बनोगे?
6: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
0: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, करोगे?
8: हाँ।
0: और कशिश, आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
11: टीचर।
0: और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
11: सब बच्चे को पढ़ाने के लिए।
0: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम, आप बताओ, आप क्या सपना देखते हो बड़े होके क्या बनोगे?
12: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
0: बड़ा होके सोचोगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं रहता आपको बनने का, किसी को देख के? कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो शिवम बड़ा होके डिसाइड करेगा, पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है।
13: संगीत कलाकार।
0: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
13: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
0: अच्छा, मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
13: आधा गिटार है, थोड़ा सा दो के लिए।
0: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष, आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
3: बड़ा होकर CID बनना चाहते
0: हो? CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है, मैं बताओ तो?
3: वो देश की रक्षा के लिए कानून होता है।
0: अच्छा, तो आप क्या करोगे CID बनके?
3: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है, और उसको मैं मिटाऊंगा।
0: देश में जुर्म बढ़ रहा है, उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी न किसी की सेवा होती है, है? और ईश्वरी, आप क्या बनना चाहते हो?
4: टीचर।
0: टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: दीदी, बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा, और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं ईश्वरी, आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं अच्छा हम अच्छा ये बताओ, आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं? कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं? अच्छा स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मनता है काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी? क्या सोचते हो बता?
14: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
0: अच्छा मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है? ईश्वरी आप?
4: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
0: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और पायल?
5: दीदी बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
6: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
5: डांस।
0: डांस, अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
3: मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
0: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
13: किसी को लगता है पर हम में से नहीं।
0: आप में से किसी को भी नहीं लगता?
5: नहीं लगता।
0: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है?
3: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
0: इसलिए औरों को
3: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज है।
0: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्या लगता है?
5: दी हमको भी यही लगता
0: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना? बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
5: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे। और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
4: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करती है ना, खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे? तो
4: घुमाऊंगे।
0: तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें ध्यान रखना है ना, अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएंगी। और युग?
13: बड़ा सा घर बनाऊंगा, उसमें वो आराम से रहेंगे। ऐसा
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी, अरे वाह। और हर्ष?
3: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बड़े बड़े लड़के कैसे अपनी मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना? तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान? और
6: मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होके उनका नाम रोशन करूंगी।
0: मम्मी पापा की सेवा करोगे? आप क्या करोगे?
5: दीदी हम
0: आप भी सेवा करोगे। और ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है? आप बताओ फैमिली में कौन कौन है घर पे?
5: मम्मी पापा, दादी, दादाजी, चाची, चाची।
0: अरे वाह आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
5: दीदी मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा? मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए।
5: हाँ।
0: और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना, सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते है ना? और आप बताओ यू?
13: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं,
0: इसलिए वो फेवरेट।
13: मैंने कैसी मांगा था तो उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था बड़ा सा।
0: अच्छा पापा ने? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
13: दादी दादा और मैं और मम्मी पापा।
0: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा तो उनसे
13: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं।
0: दादी दादा, अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
5: मम्मी पापा, दादा, दादी
0: और सबसे अच्छा
5: दीदी मम्मी पापा।
0: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा?
5: मम्मी।
0: क्यों? मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
4: दीदी अग्रजा एंड मम्मी पापा।
0: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
4: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
4: तो मुझे मैं कल ही चप्पल मांगी थी और आज ले आई।
0: अच्छा और मुस्कान?
6: मेरी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची।
0: और आपका फेवरेट कौन है?
6: मम्मी और पापा दोनों।
0: दोनों मम्मी पापा हमारी विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
6: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
0: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तभी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
9: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: हाँ और आप बताओ?
4: दीदी हमको भी
9: वैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी
0: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
9: कभी कभी होती है।
0: होते हो?
4: हाँ दीदी।
0: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा होते हो?
9: जब एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है इसलिए।
0: अच्छा जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा? नहीं। क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा क्यों मारते हो? मुस्कान क्या करते हो आप? ऐसे शरारत करते हो? बताओ। ऐसे ही मारते हो? क्या शरारत करते हो मुस्कान बताओ?
6: वो कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
0: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवम? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें ले लेंगे और फिर सही जगह पे रख देने, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? हाँ युग बोला।
9: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
0: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
9: भाई?
0: आप नहीं जीतते हो?
9: टीवी में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम्हारा।
0: अच्छा टीवी के लिए लड़ाई होती है?
9: हमारे घर में तो है ही नहीं, और मैं एक ही हूँ।
0: अच्छा तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
9: चुप हो जाते।
0: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वर आप कभी गुस्सा होते?
4: नहीं।
0: लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं? मम्मी जब कहती है सब मानते हो?
4: हाँ।
15: मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
0: झगड़ा होता
15: है? पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
0: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
15: टीवी के लिए मेरी दो बहन है वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
0: टीवी के लिए झगड़ा हो जाता है आप टीवी बंद कर देते हो? और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
15: रिमोट लेके भाग जाता हूँ।
0: अच्छा और आप लोग बताओ कशिश कभी झगड़ते हो?
4: हाँ दीदी।
0: क्यों झगड़ते हो?
4: दीदी मेरी छोटी बहन है वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती तो हम झगड़ते, तो दीदी फिर कुछ नहीं करते चुपचाप बैठ जाते।
0: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
15: हाँ।
0: अरे वाह ये तो सभी बहुत ही अच्छे बच्चे, झगड़ते नहीं है और देखने देते हैं।
9: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है फिर ऐसे करके लेने का, जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है ऐसे।
0: क्या प्लान बनाते हो?
9: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
9: कोई बना रहा होगा पर ये तो कह रहे हैं मुझसे।
0: अच्छा और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
9: और कोई टीवी देख रहा हो पानी पीने के लिए जा रहा हो तब भी कोई रिमोट ले लेता है। ऐसा भी बनाते हैं।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ दीदी,
0: सबकी होती है।
2: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हो?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर वो टीचर से बोल देती है, तो टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हैं
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना? तो क्या हुआ, लड़ाई की, उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, है ना? और ईश्वरी, आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड मुझे धक्का देते हैं, फिर मैं भी उसको धक्का, फिर हम फ्रेंड बन जाते हैं।
0: अच्छा, और धक्का देते तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन जोर से नहीं देना, नहीं तो लग जाएगी चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी, है ना? और आप बताओ,
1: कभी झगड़ा हो जाता है?
0: क्यों?
1: बातचीत करते हुए
0: झगड़ा हो जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बता देते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है फिर? लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड से हमें बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बतानी चाहिए। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
2: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तो
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते।
0: अच्छा, उसकी भी जगह बता देते हो?
2: वो तो पता कैसा चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी, हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी, ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: सब भूल गए। कशिश?
4: दीदी, हमारे साथ
0: क्या होता है?
4: दीदी, कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शार्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है, उसके बाद क्या करते हो?
4: दीदी, कुछ भी नहीं करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। और यू?
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मैं ही ताकतवर हूँ, सब उसकी टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं?
5: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो, है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
5: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
5: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरें,
5: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
5: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
5: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर क्या, चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना, तो मैंने कहा मम्मी को, देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा सभी नहीं बोलते, ले जाते ही है।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया। अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएस में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरे माँ पे साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष, आपको बताओ।
1: मेरा एडवेंचर्स बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ। क्या करते हो आप?
1: इसे मैं एडवेंचर्स सीखूंगा तो बड़ा होके भी बड़े बड़े एडवेंचर्स करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
1: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग कर।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो? स्विमिंग तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
1: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
1: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
1: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
2: डांस में।
0: डांस में? कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
2: राधा के।
0: राधा के? अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
2: मैं, टीचर।
0: टीचर? और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको? क्या करते हो बर्थडे पे?
2: सब लोग केक खिलाते हैं।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं, इसलिए मजा आता है। और आप सबको केक नहीं खिलाते?
2: खिलाते।
0: खिलाते हो? अच्छा, पायल आप?
7: मुझे भी डांस में बहुत मजा आता है।
0: डांस में बहुत मजा आता है? आप किस गाने पे डांस करते हो?
7: दीदी सारे गाने पे करते हो? सारे गाने?
0: सारे? बहुत सारे? मतलब स्कूल में जब भी डांस कंपटीशन होता है आप पार्ट लेते हो?
7: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
3: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा?
7: दीदी मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत एंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं।
1: हाँ
0: बताओ।
1: बार एक योगा में कॉम्पिटिशन किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हमें प्राइज मिलता तो मजा आता ही है?
1: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
1: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना, हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसीलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा ये बताओ, आप लोगों को मजा आता है, कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
2: नहीं।
0: नहीं?
2: नहीं,
0: किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
2: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युग?
5: कभी खाने में अच्छा नहीं होता इसलिए करेला का साग होता है ना।
0: क्या होता है?
5: कभी खाने में करेला का साग होता है ना इसलिए।
0: करेला? अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
5: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं।
5: रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
2: दीदी किसी से नहीं किया।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी नहीं?
3: नहीं लगता।
0: और आपको?
1: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
2: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। तब तक के लिए रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लूटा।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं,

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग बात करेंगे करियर इन कंप्यूटर साइंस में। जी हाँ, करियर इन कंप्यूटर साइंस की बात अगर हम लोग करें तो कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा विकल्प है, जहाँ पर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों से जुड़ते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, वेब डेवलपिंग, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सुरक्षा विश्लेषक, AI, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, UIE, UX डिज़ाइनर और IT कंसल्टेंट, जैसे बहुत सारे विकल्प इसमें कंप्यूटर साइंस में आते हैं। आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से लेकर डेटा एनालिसिस, सुरक्षा और नए AI आधारित सिस्टम के निर्माण तक विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। तो इसका मुख्य विकल्प, जैसे करियर की बात करूं मैं, सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सुरक्षा विश्लेषक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, UI, UX

एक्स डिजाइनर, आईटी कंसल्टेंट, गेम डेवलपर, डेक्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क इंजीनियरिंग, ये सारे विकल्प इसमें आते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो साथियों, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे विकल्प हैं और आज के समय में इसका प्रचलन है और हर व्यक्ति जो है इस फील्ड में आगे बढ़कर काम करना चाहता है। मैं चाहूँगा कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करने के लिए इसको ठीक से समझे, पढ़े और आगे बढ़े। और ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और विकल्प है करियर का, जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। तो आइए इसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे कुछ ही पलों में। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इस करियर के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला जो इसका एक पार्ट आता है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में या वेब डेवलपर के रूप में। तो आइए इसमें बात करते हैं, इसकी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, ये है क्या चीज। वेब डेवलपर वेबसाइट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वेब डेवलपर मुख्य रूप से वेबसाइटों के लिए HTML, CSS और JavaScript जैसे तकनीकों का प्रयोग करके कोड लिखते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपर की भूमिका अधिक व्यापक होती है और वे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर जटिल एप्लीकेशन तक किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो वे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप या जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने पर काम करते हैं। उनकी भूमिका में समस्या समाधान और उचित स्तरीय इंजीनियरिंग कार्य शामिल होते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो वेब डेवलपर, ये विशेष रूप से वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि वे HTML, CSS और JavaScript जैसे भाषाओं का प्रयोग करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर भी होते हैं इसमें। वेबसाइट के उपकरणों, इंटरफेस, UI और ग्राहक के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है उस पर काम करते हैं। और एक साइड होता है बैकएंड डेवलपर, जो सर्वर साइट लॉजिक, डेटाबेस और सुरक्षा पर काम करते हैं, जिसमें वेबसाइट को कार्यक्षमता मिलती है। तीसरा एक विकल्प होता है यहाँ पर फुल स्टॉक डेवलपर, ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर काम करते हैं, जिसमें ये दोनों तरह के विकल्पों पर अच्छी तरह से अपनी पकड़ रखते हैं। और यहाँ पर एक और बात आता है समस्या और समाधान। दोनों भूमिकाओं के लिए मजबूत समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होती है। रखरखाव, वे बनाए गए सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों के निरंतर रखरखाव, परीक्षण और डिबिंग के लिए जिम्मेवार होते हैं। तीसरा सहयोग, टीम में काम करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। निरंतर सीखना इसका एक विकल्प है। डिजिटल परिदृश्य में बदलाव के कारण उन्हें लगातार कई तकनीकों और भाषाओं की सीखने की आवश्यकता होती है, जो वेब डेवलपर को या सॉफ्टवेयर डेवलपर को करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी किया आपको। आइए आगे बढ़ते हुए एक और विकल्प के बारे में बातें करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो 1 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। अभी हम लोग जैसे कंप्यूटर साइंस इस करियर के बारे में बातें कर रहे हैं, तो इसमें एक और ऑप्शन आता है विकल्प, वो है डेटा साइंटिस्ट। तो एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जो बड़े डेटा सेट से मूल्यांकन जानकारी निकालने के लिए डेटा को इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसकी व्याख्या करता है। वे गणित, सांख्यिकी और प्रोग्रामिंग कौशल का उपयोग करके व्यावसायिक समस्याओं को हल करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं, जैसे कि रुझानों की पहचान करना, अल्गोरिदम में सुधार करना और भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी भी करना है। जैसे हम लोग देखें तो डेटा एकत्रित और साफ करते हैं, वे डेटाबेस से सही डेटा निकालते हैं और उसे विश्लेषण के लिए तैयार करते हैं, मॉडल बनाते हैं, वे मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग करते हैं ताकि पैटर्न और भविष्यवाणियों की बातें की जा सके। इसके साथ विश्लेषण और व्याख्या करते हैं, वे डाटा में छुपी हुई अंतर्दृष्टि को समझते हैं और व्यावसायिक निर्णयों के लिए निष्कर्ष भी निकालते हैं, परिणाम संप्रेक्षित करते हैं, वे हितधारकों को डेटा विजुअल एप्लीकेशन तकनीकों का उपयोग करके निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से समझाते हुए। डेटा साइंटिस्ट के लिए आवश्यक कौशल की अगर मैं बात करूं तो तकनीकी कौशल प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे पाइथन, आर, सांख्यिकी और मशीन लर्निंग बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल की बात करें तो महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, संचार और रचनात्मक, ये चीजें भी उनके लिए बहुत काम आती हैं। तो डेटा वैज्ञानिकों को विशेष वित्त, विपणन, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और कई अन्य उद्योगों में काम मिलता है, जो वहां पर अच्छी सैलरी उनको मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और विभाग जिसमें एक और करियर विकल्प है। जैसे कि डेटा साइंटिस्ट है, उसके बाद आता है साइबर सुरक्षा विश्लेषण, ये भी कंप्यूटर साइंस के ही एक भाग है। और साइबर सुरक्षा विश्लेषक कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क और डेटा को साइबर हमलों और डिजिटल खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे सुरक्षा उल्लंघन के लिए सिस्टम को निगरानी करते हैं, कमजोरियों का पता लगाते हैं, खतरों की पहचान करते हैं और हमलों को रोकने और प्रक्रिया देने के लिए रणनीति विकसित करते हैं। इस भूमिका में फायरवॉल और एप्लीकेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने में भी इनकी विशेषता होती है। अगर आप देखेंगे सुरक्षा की निगरानी की बात करें तो साइबर हमलों से बचाव के लिए नेटवर्क और सिस्टम की लगातार देखरेख और निगरानी करना, खतरों की पहचान करना, संभावित कमजोरियों और खतरों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना है। तीसरी बात आती है सुरक्षा रणनीतियां बनाना, संगठन के डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के लिए निवारण उपायों और रणनीतियों का विकास और कार्य करना, घटनाओं पर आधारित प्रक्रिया को जानना, सुरक्षा उल्लंघनों का साइबर हमलों की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना, जांच करना और समाधान प्राप्त करना है। रिपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ घटनाओं और सुरक्षाओं की स्थिति के बारे में विशेष रिपोर्ट तैयार करना और हितधारकों को सूचित करना है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, फायरवॉल और एप्लीकेशन जैसे विभिन्न उपकरणों और प्रौद्योगिकों का उपयोग करना है। इस क्षेत्र में करियर कैसे बनाएं अगर आप सोच रहे हैं तो शिक्षा आपकी होनी चाहिए इसमें, कंप्यूटर साइंस ले लें, साइबर सुरक्षा में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करें तो आप इस विभाग की दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। और विभिन्न उद्योग मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से भी आपको काफी काम मिलता है। मजबूत विश्लेषक और संचार कौशल विकास करें जिसके बारे में आपको खुद को काम करना है, ठीक है। तो ये एक और विकल्प है साइबर सुरक्षा विश्लेषण, जो कंप्यूटर साइंस में ही आता है।
तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और फिर बात करते इसके बारे में आगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और बातें कर रहे थे हम लोग कंप्यूटर साइंस के विकल्पों के बारे में, जानकारी आपको दे रहे थे। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में एक और पार्ट आता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के समय में मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कहते हैं उसे, तो ये भी बहुत ज्यादा जो है वर्कआउट कर रहा है और आज के समय में बहुत करंट जिसको कहते हैं टॉपिक है, जहाँ पर लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रहा है। तो ये अगर बात करें तो आर्टिफिशियल लर्निंग और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें तो इंजीनियर ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और काम करने में सक्षम बनाती है। AI इंजीनियरिंग व्यापक AI सिस्टम बनाते हैं, जबकि ML इंजीनियरिंग विशेष रूप से डेटा से सीखने और पूर्व अनुमान लगाने के लिए AI सिस्टम के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर शॉर्ट में कहें तो AI एक बड़ा क्षेत्र है और ML इसका एक उप क्षेत्र है, और दोनों इंजीनियरों का लक्ष्य मशीनों को स्मार्ट और स्वचलित बनाना है। तो इसको अगर हम लोग देखें, इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसा सिस्टम बनाना जो मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल कर सके, और जैसे कि सूचना, निर्णय लेना और समस्याओं को हल करना। दूसरा, कार्य मशीन लर्निंग टेक्निक्स और अन्य तकनीकों को मिलाकर संपूर्ण AI सिस्टम बनाना। उदाहरण के तौर पे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें जो सड़क पर निर्णय लेती है और स्वचलित है कमांड के आधार। दूसरा, ML की बात करें तो मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीनों को डेटा से सीखने और भविष्यवाणियां करने की क्षमता प्रदान करना, ताकि वे समय के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सके। अल्गोरिदम बनाना और उनका उपयोग AI सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए करना है, और YouTube का रिकमेंडेशन सिस्टम जो आपको आपके देखे गए वीडियो के आधार पर सुझाव देता है, तो ये भी एक AI या मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो इस तरह के ये जो चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और जिसको आप आए दिन नए नए चीज़ें, नए नए सॉफ्टवेयर जो AI के टूल्स हैं वो मोबाइल में बच्चे और बड़े यूज़ कर रहे हैं। तो इसी का एक नतीजा ChatGPT भी है और बहुत सारे इसके विकल्प हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए, इसमें एक और भाग आता है कंप्यूटर साइंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग वो IT पेशेवर होते हैं जो क्लाउड आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं और रखरखाव करते हैं। वे व्यवसायों को कुशल, सुरक्षित और स्टेबल क्लाउड समाधान प्रदान करने में मदद करते हैं, जिसमें क्लाउड और उस पर माइग्रेशन, प्रदर्शन और लागत का अनुकूल और समस्याओं का निवारण इसमें शामिल है। इस क्षेत्र में आर्किटेक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स जैसे कई विशेषताएं बनी हुई है। यहाँ पर आते हैं कुछ चीजें जैसे कि डिजाइन और कार्य। व्यवसाय व्यवसायिकों को समझाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए क्लाउड समाधानों को डिजाइन करते हैं। फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट और रखरखाव। प्रबंधन और रखरखाव, क्लाउड संसाधनों का प्रबंधन करना, निगरानी करना और उसको देखरेख करके ठीक से, प्रभावी ढंग से हमेशा उसको उसके द्वारा काम लेना। समस्या निवारण की बात करें तो ये भी एक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर आने वाले समस्याओं को हल करते हैं और डेटा की सुरक्षा सुरक्षित करते हैं और क्लाउड प्रदर्शन को और अच्छी तरह से अनुकूल बनाते हैं। और आखिरी में इसमें ऑटोमेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लाउड संसाधनों के प्रबंधन और स्वचलित करने के लिए DevOps और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जैसी पद्धतियों का उपयोग करके ऑटोमेशन मोड पे चीजें होने लगती है। क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड स्पोर्ट इंजीनियर और शिक्षा, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर इसको आपको करना है
कंप्यूटर साइंस का ये एक भाग में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो यहाँ पर आपको अपना जो है अक्सर आईटी क्षेत्र में कुछ विशेष प्रमाण पत्रों के माध्यम से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, या आप प्रॉपर डिग्री लेकर भी इस पर अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई अलग अलग विभागों के बारे में। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन

आपको वो सारी चीजें मोटे तौर पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो खास चीजें थी वो मैंने आपको जानकारी दी है। फिर भी कभी इस पर और एक एपिसोड जरूर बनाएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर इन कंप्यूटर साइंस। इस विषय को लेकर हमने काफी बातें की और यहाँ पर जो अलग अलग चीजें हैं, और एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो था वीडियो गेम बनाना, गेम डेवलपर जिनको कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है विकल्प है आज के समय में, क्योंकि आप देखते हैं बच्चे वीडियो गेम बहुत खेलते हैं, और कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, किसी न किसी तरह से लैपटॉप हो, उसमें वो गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी एक भाग आता है जहाँ पर आप गेम डेवलपर वीडियो गेम बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें कोडिंग, प्रोग्रामिंग और गेम के सभी घटनाओं को एक साथ शामिल करते हैं। वे गेम डिजाइन के विचारकों को कोड और अन्य तकनीकों का उपयोग करके एक खेलने योग्य गेम में बदलते हैं। इसके लिए गेम इंजन का उपयोग किया जाता है, C++ या C जैसे प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान आपको है तो आप इन्हें अच्छा कर सकते हैं। तो गेम बनाना, वे गेम के विजुअल और मैकेनिक्स को कोड करके वास्तविकता में लाते हैं। दूसरा, वे डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान तकनीकी

चुनौतियों का समाधान करते हैं और वे डिजाइनरों, कलाकार और परीक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि गेम बनाना और उसे यूज करना ये एक समूह का काम है। वे गेम के नियम, पात्रों की हरकतों और अन्य यांत्रिकों को प्रोग्राम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है गेम डेवलपर कौशल है, जिसको जितना अच्छी तरह से आप सीखेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे और आप उतना अच्छा कमा पाएंगे। तो साथियों, कंप्यूटर साइंस में बस इतना ही आज के लिए, और मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ों को जानना चाहते, करना चाहते हैं या रुचि रखते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा विकल्प है जिससे आप अपने करियर को नई ऊंचाइयाँ दे सकते हैं। तो चलिए, आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते एक नए करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. आज सारा दिन awareness and checking, कौन ज्यादा powerful है, बातें, situations or me, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो,
1: खुश

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड

0: पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना। बात पुरानी बड़ी सुहानी, फक्त रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर हम आपके साथ। इन दिनों हम बात कर रहे हैं लाइफ स्किल्स की। भाई जीवन में ऐसा क्या हुआ कि हम जीना ही भूल गए? वो स्किल्स जो शायद अभी तक नहीं जानते थे, हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। कितनी तरह के थॉट्स हम एक दिन में क्रिएट करते हैं और फिर उनका इम्पैक्ट क्या है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमने बात की थी कि 7 तरह के डिफरेंट थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और उनके इम्पैक्ट्स हमारे जीवन पर क्या होते हैं। आगे बढ़ें और हमने जब राइट थॉट्स की बात की तो 10 रॉन्ग थॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं रॉन्ग को राइट कैसे करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बार फिर रिकैप करते हैं, क्योंकि जब भी पढ़ाई शुरू की जाती है, नई स्किल सीख रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हमारे पास रजिस्टर होने में। वो जो 10 आपने कहे थे कि रॉन्ग थॉट्स हैं जिनको राइट करना जरूरी है, चाहे हम पॉजिटिव नहीं भी सोच रहे लेकिन ये रॉन्ग जो है वो राइट किया जा सकता है, तो कौन से हैं वो थॉट्स?
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक बार समझ में आ जाए कि ये 10 कौन से हैं, कौन से मिरर्स हम यूज करते हैं, और फिर तब अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन से मिरर में मैं अपने को देख रहा हूं। सबसे पहले तो मैग्निफाइंग, कि हम छोटी बात को बड़ी बना करके देखते हैं। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, हम परिस्थिति को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं, एक्सट्रीम्स में देखते हैं, जो भी बुरा है। वास्तव में परिस्थिति जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे है, उसको सही रूप से देखना चाहिए। तीसरा है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ बात हुई तुरंत निर्णय पर आ जाते, फिर उसकी भी बुरी इफेक्ट होती है। हमें थोड़ा वक्त देना है, अच्छी तरह से परिस्थिति को एनालिसिस करे और फिर उसके बारे में आगे हम सोचे तो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। चौथी बात है ऑलवेज मेंटेलिटी, कि जब कुछ प्रॉब्लम आता है तब मेरे साथ ही होता है, वो ऑलवेज मेंटेलिटी भी बुरी है। पांचवी बात है वाई मी एटीट्यूड, कि कुछ समस्या हुई तो मुझे ही हुई, हमेशा हमें नहीं होती है। कुछ समस्याएं बल हमें भी होती है लेकिन औरों के सामने भी समस्याएं आती है, उस प्रकार से हमें परिस्थिति को देखना चाहिए। छठी बात है कि हम देखते हैं कि सर्चिंग नेगेटिविटी, कुछ बात हुई उसमें नेगेटिविटी को ढूंढ निकालते हैं, बल अच्छा बहुत ज्यादा हुआ है, बुरा तो बहुत थोड़ा हुआ है,
0: तब भी हम वो ढूंढ रहे
2: हाँ। पॉजिटिव थिंकिंग में हम पॉजिटिव को ढूंढते हैं, परंतु या सर्चिंग नेगेटिविटी में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। सातवा है नॉटिंग, कि फोर्सिबली कोई बात को भूलने की कोशिश करते, वह हमें नहीं करना है। वास्तव में क्या छोड़ना है वह नहीं सोचो, परंतु क्या पकड़ना है उसको सोचो। हमें कहाँ जाना है उसके बारे में विचार करो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आठवीं बात है कि डिस्क्वालीफाइंग द गुड, अच्छा ऑलरेडी हुआ है लेकिन आपने उसको डिस्क्वालीफाई किया। नवी बात है लेबलिंग, कि हम लोगों को भी लेबल करते हैं और लेबलिंग के कारण भी बहुत ही डिसएडवांटेजेस होते हैं। और दसवां है फ्लाई मेंटेलिटी, कि जीवन में अच्छा भी है बुरा भी है, मक्खी कैसे गंदगी पर ही बैठती है ऐसे हमें भी आदत हो जाती है, हम गंदे पर ही बैठते हैं। ये 10 बातें अगर व्यक्ति एक बार याद रख ले अच्छे से और सारे दिन में जो भी घटनाएं होती फिर सोचो कि उसमें से मैंने कौन से मिरर में अपने आप को देखा। कई बार आप ऐसा भी पाएंगे कि एक परिस्थिति में एक के साथ 2 या 3 मिरर में भी आप अपने आप को देख रहे हैं, वो तीनों को पहले पहचाने और फिर उसमें परिवर्तन करे तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव राइट थिंकिंग की भी हमें आदत हो जाएगी।
0: शिवानी, ये जो 10 रॉन्ग सडनली हमारे सामने आए हैं, इट्स एन अमेजिंग रेवोल्यूशन, लेकिन अगर नहीं चेंज हुआ सो व्हाट्स रॉन्ग?
1: क्या ये थॉट नहीं चेंज हुआ तो बहुत सारा उसका आगे बहुत सारा इफेक्ट आएगा। सारा दिन में हम, जैसे भाई साहब ने कहा, 35,000 to 50,000 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और आज दिन तक हम अवेयर भी नहीं थे कि वो 7 टाइप्स की हैं, उस हर टाइप में भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं। हम ये भी अवेयर नहीं थे कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर का जो पूरा प्रोसेस था हमें अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी। एंड फिर जब हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, वी वर ट्राइंग टू चेंज द रिजल्ट विदाउट ट्राइंग टू वर्क ऑन द सोर्स ऑफ दैट रिजल्ट, कि वो रिजल्ट क्रिएट क्यों हुआ, चाहे वो रिजल्ट ये था मैं फील कैसा कर रहा हूँ, चाहे वो रिजल्ट ये था मैंने बात ऐसे क्यों कर दी, चाहे वो रिजल्ट ये था कि मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, चाहे रिजल्ट ये था कि मैं वर्क में क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा। बहुत बार लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी लोग मेरे से खुश नहीं होते, फिर भी मुझे वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। सो वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग, जब वो प्रोडक्ट बाहर निकल कर आया, बिकॉज वी वर नॉट लुकिंग एट द प्रोडक्ट जब वो अंदर डिवेलप हो रहा था, अभी बाहर तो फिर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट निकला। तो जब हम अपने ऊपर ये चेकिंग करने शुरू करते तो हम देखते कि वो एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरता। थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हैं, इवन जब रात को सो रहे हैं तो भी चल रहे हैं, इवन दो इट्स एट अ लिटिल स्लो स्पीड। जैसे ही थॉट्स क्रिएट होते इट इज फॉलोड बाय फीलिंग, हमें महसूस होगा। इसीलिए जैसे आपने कहा था कि थॉट तो पता ही नहीं चलती, ये पता चलता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पर आ गया। फर्स्ट स्टेज की तो मैं अवेयरनेस ही नहीं थी, ऑलरेडी प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज से उठ के सेकेंड डिपार्टमेंट पर आ चुका है, फीलिंग के डिपार्टमेंट पर। लेकिन अगर फीलिंग के डिपार्टमेंट पर भी मैंने चेक कर लिया, यू नो इट्स लाइक अ प्रोसेस प्लांट, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर सेकेंड स्टेज पर भी आपको पता चल गया कि फॉल्टी है, इट्स इजी ना, आप तुरंत फर्स्ट स्टेज पर वापस जाएंगे एंड वहीं के वहीं आप अपने प्रोसेस प्लांट को चेंज कर लेंगे। हम फीलिंग पर भी उसको चेक नहीं करते, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कई बार पूरी दुनिया के बारे में, इट डिवेलप्स माय एटीट्यूड, मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड धीरे धीरे, जो कई बार हम कहते हैं इसका एटीट्यूड ही बहुत नेगेटिव है, इसको जो देखो इसको ये नेगेटिव दिखाई देता है,
0: एटीट्यूड चिंता वाला है,
1: हाँ, इसका ये एटीट्यूड है, हाँ. तो ये एटीट्यूड है मतलब क्या कि ये तो है ही ऐसा, यू नो
0: मतलब मैंने एक बार एंग्जायटी की फीलिंग क्रिएट की, घबराहट की हुई, उसके बाद आगे भी वही होती जाएगी, आगे भी, सो अल्टीमेटली हर सिचुएशन में मैं घबराऊंगा।
1: इट माइट नॉट बी इन हर सिचुएशन बट इट इज डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन, धीरे धीरे वो जाएगा व्हेन इट विल कम टू हर सिचुएशन। अभी एटीट्यूड मतलब लेट्स से आपसे मैं जितनी बार मिली मैंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट क्रिएट किया, तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति जो एटीट्यूड है वो उस क्वालिटी का बन, हाँ आपके प्रति, अभी वो सबके प्रति नहीं, अभी सिर्फ वो आपके प्रति है, लेकिन अब जैसा मेरा एटीट्यूड आपके प्रति हो जाएगा वो फिर मेरे एक्शन में आएगा। यू नो इफ आई से यू नो शी इज अ वंडरफुल पर्सन, नाउ दिस इज माय एटीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली मेरा आपसे बात करने का तरीका, आपकी हर बात को परसीव करने का तरीका, आप कुछ भी कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये है, ये बहुत अच्छे है, एंड ये अगर मेरा एटीट्यूड उसका ऑपोजिट हो आप कितनी भी अच्छी बात कहेंगे मेरे को उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा एटीट्यूड डिफरेंट डिवेलप हुआ हुआ है, तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम मैंने एटीट्यूड कौन सा डेवलप किया हुआ है आपके बारे में। जैसे भाई साहब ने कहा कौन से शीशे के थ्रू हम हर चीज को देखते हैं, एटीट्यूड इज अ बिग मिरर दैट वी क्रिएट, जिसके थ्रू हमें हर चीज उस रंग के फिर दिखाई देती है। अब एटीट्यूड लेवल पर जब आ जाती बात तो हम कहने लगते हैं मैं ऐसा ही हूँ, दिस इज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। यू नो कई बार कहते हैं इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ही बहुत केयरलेस है, ये सीरियसली लेते ही नहीं है, दैट्स माई एटीट्यूड। लेकिन बना कैसे, thought, feeling, attitude, now comes out into action. Action मतलब कोई word या कोई physical कर्म।

0: एक्शन। अब जैसा मेरा एक्शन होगा, पर कई बार मैं वही एक्शन को बार बार बार बार रिपीट करती, देन इट बिकम्स माई हैबिट। वंस इट हैज बिकम माई हैबिट, जिसको हम कहें माई संस्कार, देन इट्स नॉट विद वन पर्सन,
1: मैं
0: हर एक
1: ऐसे
0: के
1: ही
0: प्रति।
1: हूं।
0: हाँ, ये अब मेरे नेचर है, ये मेरा संस्कार है। शुरू शायद वो किसी एक से हुआ था, जो कई बार हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि कई बार हमें आदत है कि ऑफिस में काम कराने का तरीका कैसा है, गुस्सा किया गुस्सा किया गुस्सा किया, काम करवाया। तो घर पे भी बच्चों का से वो कुछ करवाने का तरीका कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों के साथ भी कैसा हो जाएगा, वैसा। क्यों? बिकॉज गुस्सा करना ये मेरा संस्कार बन चुका है, गुस्से से काम करवाना ये मेरा संस्कार बन चुका है। देन इट विल नॉट रिमेन विद दैट पर्सन स्पेसिफिक, देन इट इज विद मी, बिकॉज अब ये मेरा पैकेज है, दिस इज हु आई एम। ये हर एक के साथ ये होगा। एंड आई हैव लॉट ऑफ संस्कार्स, तो ये जो मेरे सारे संस्कार्स हैं, दिस इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो हर थॉट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फाइनली इट इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी, ये मेरा व्यक्तित्व है। थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी। अब हम जाते हैं पर्सनैलिटी वर्कशॉप्स के अंदर, हम जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर, क्या करने के लिए? मेरी पर्सनैलिटी चेंज कर दो। फिजिकल नहीं, इट्स दिस पर्सनैलिटी विच इज रेडी, स्टार्ट हुई थी थॉट से। आपको चेंज करना है कुछ भी, यू विल हैव टू स्टार्ट एट द लेवल ऑफ
1: थॉट्स
0: थॉट्स। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि जैसी मेरी पर्सनैलिटी होगी, हर स्टेप पे मैं वो पर्सनैलिटी को लेकर जाऊंगा, तो हर स्टेप पे जैसी मेरी पर्सनैलिटी होगी, वो एनर्जी बाहर जाएगी। जो एनर्जी बाहर जाएगी, वही एनर्जी वापस आएगी। जब एनर्जी वापस आती है, हम उसको डेस्टिनी कहते हैं। मेरे साथ जो होता है वो मेरा भाग्य है, तो मेरी थॉट मेरा भाग्य क्रिएट करती है। और अगर मैं अपनी थॉट को चेंज कर दूं, तो मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूँ, क्योंकि भाग्य कुछ भी नहीं है। भाग्य इज जस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी, बट दे आर अ रिटर्न ऑफ द एनर्जी दैट आई हैव सेंट आउट। द मिनट आई अंडरस्टैंड दिस, दैट आई क्रिएट माई डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द थॉट्स आई क्रिएट, अवेयरनेस बहुत ज्यादा होने लग जाती है उसके ऊपर। क्योंकि फिर आपको रियलाइज होता है कि सारी पावर आपके पास है, सारा कंट्रोल आपके पास है। चेंज द कंट्रोल, डेस्टिनी विल चेंज टोटली,
1: आई
0: इट्स
1: थिंक
0: बैक
1: द
0: विद
1: वे
0: यू।
1: ही ऑल्सो सेड कि आप एक्चुअली अट्रैक्ट करते हो उन सारी घटनाओं
0: बहुत
1: में।
0: सारे भाई बहने कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये कैसे वर्क करता है? वो इस तरह से वर्क करता है कि जैसे थॉट आप क्रिएट करोगे, धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब जो कर्म आप करोगे। जब हमें लॉ ऑफ कर्मा समझ में आता है कि जो कर्म मैं करूंगा उसी का रिटर्न मुझे मिलेगा, मेरे कर्म की क्वालिटी किस बेसिस पर है? जो मेरी पर्सनालिटी की क्वालिटी है। तो इसका मतलब कर्म की क्वालिटी पर्सनालिटी की क्वालिटी से, वो थॉट की क्वालिटी से, तो कर्म का रिटर्न भी थॉट की क्वालिटी से। तो भाग्य अपने आप, आपने ग्रेविटेट कर लिया ना वो भाग्य को अपनी तरफ,
1: जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप दे रहे थे
0: बस
1: बेसिकली,
0: दैट इज कमिंग बैक टू
1: जैसा
0: यू इन
1: चाहा,
0: रिटर्न।
1: मतलब जो मैंने क्रिएट किया वही
0: राइट
1: मैंने
0: सही
1: पाया।
0: कहा। यस, अब थोड़ा सा और एक स्टेप पर देखना है कि अगर थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है, तो थॉट्स की सोर्स क्या है? पहले भी हमने देखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ध्यान से कि नेगेटिव न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ बहुत ज्यादा ना पढ़े, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है थॉट्स पे। गॉसिपिंग की आपने पहले बात की
1: वेस्ट को,
0: कि
1: हाँ
0: क्यों नहीं गॉसिप करे, इन्फॉर्मेशन है जो
1: इन्फॉर्मेशन।
0: हम अपने अंदर भर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट करती है। सेकेंड है बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारी हमारी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने बनाई हुई हैं, जिनको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। कि जैसे बात हुई कि गुस्से से काम करवाना, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करो तो काम जल्दी हो जाता है, एक बिलीफ सिस्टम है। ये बिलीफ होगा, थॉट उसी क्वालिटी की चलेगी, पर्सनालिटी वही बनेगी, डेस्टिनी भी फिर उसी के हिसाब से होगी। तो इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थॉट्स चेंज होती जाएंगी, भाग्य बदलता जाएगा।
1: बिल्कुल, एक बहुत नया एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं हम कि भाग्य, जिसे हम अभी तक कह रहे थे कि बहुत सारी और बाकी चीजों पर हैं, सिचुएशंस, तो आज जो बात है कि थॉट की पावर जो है वो चेंज कर सकती है
2: और
1: जी।
2: एक बात ये भी करनी चाहिए कि राइट थिंकिंग अगर हमें डेवलप करना है, सचमुच प्रैक्टिस करनी है, तो एक चार्ट लिखना
1: वो
2: चाहिए।
1: जो रॉन्ग्स हैं, 10
2: हाँ,
1: रॉन्ग्स
0: उसको
1: को
0: राइट
1: राइट
0: में
1: कैसे
0: करना।
2: करें। हाँ, उसको ऐसे करे कि भी सारे दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाएं भी पहले पहले लिखो, मेजर ना भी लिखो, तो ये 10 घटनाएं हुई उस समय, मुझे फीलिंग्स क्या हुई, कि निराशा की फीलिंग हुई, गुस्सा आया, ईर्ष्या हुई, क्या फीलिंग्स आपको हुई। फिर थर्ड कॉलम में लिखो कि मेरे रॉन्ग थॉट क्या थे,
1: उन
2: जो मैं
1: 10 में से
2: दस
1: चुनो
2: हाँ
1: मैं।
2: जो
1: हाँ
2: 10 मिरर्स थे, वो कौन से मिरर में मैंने उसको फिट किया, उसको लिखो कि ये मेरे रॉन्ग थॉट थे। फिर ये लिखो कि भी राइट थॉट क्या होना चाहिए, कि भी ये घटना फ्यूचर में हुई तो मैं ये राइट थॉट करूंगा, उसे फिर रिपीट करिए कि बस फ्यूचर में घटना ही मैं यही करने वाला हूं, तो आत्मा में भी वह जाएगा कि फ्यूचर में होगा, आपने अपने आप को प्रोग्राम दिया कि मैं यही राइट थॉट करने वाला हूं। ऐसी प्रैक्टिस 3-4 सप्ताह भी करने लगो, ऑटोमेटिक आप राइट थिंकिंग
1: नहीं तो
2: करेंगे।
1: ये हर रोज शाम को करें या हर 1 घंटे बाद करें,
2: एक्चुअली
1: बिकॉज वो याद ही नहीं रहेंगी
2: नहीं,
1: घटनाएं।
2: टाइम मिले तो भले 2-3 घंटे बाद भी करो, और कोई कहे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, सारा दिन मैं बिजी रहता हूँ, तो बोले शाम को भी करिए, जो भी
0: बेसिकली एक
2: संभव।
0: छोटी सी नोटबुक अगर आपके पास है, यू शुड जस्ट स्क्रिबल
2: इमीजिएटली
0: इट डाउन इमीडिएटली।
1: दैट्स देखिए
2: बेस्ट,
1: याद
2: या
1: नहीं रहता फिर नहीं।
2: याद नहीं
0: एक्चुअली
2: रहेगा,
0: उसी टाइम अगर करते हैं ना, तो एक
2: दैट्स
0: तो उस
2: बेस्ट।
0: टाइम आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने से बचा लेते हैं। लेट्स से अभी मेरे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई और मैं आधा पौना घंटा उसी के बारे में सोच रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ माइंड जा रहा है। क्यों नहीं, लेट मी डू दिस एक्सरसाइज उसी टाइम, सो दैट आई इवन सेव दैट हाफ एन आवर ऑफ एनर्जी ऑफ
1: आई थिंक
0: डिप्रेशन।
1: साम्यर पहली चीज तो ये कि ये ब्लेम गेम जब खत्म होगा ना, अभी तक भी जब बहुत मेजर वाले इश्यूज आते हैं, इट्स नेवर लाइक कि मैंने क्रिएट किया।
0: सी, इश्यू बहुत बड़ा हो सकता है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। किसी ने चीट किया मुझे, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो बच्चा है, चीट किया मुझे, इट्स अ बिग इशू, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर भी थॉट तो मुझे क्रिएट करना है ना।
1: वही तो मैं कह रही
0: हाँ
1: कि वो जो फीलिंग आई है, जो फीलिंग ऑफ हर्ट, रिजेक्शन या जो कुछ भी, एंगर जो भी है, वो मैंने क्रिएट की, ये एक्सेप्टेंस और रजिस्ट्री होना, ये भी अभी वक्त लग रहा है। वाई डज इट टेक टाइम? आई डोंट वॉन्ट टू टेक द ओनस और वॉट इट इज।
0: बिकॉज वी वर नॉट अवेयर ऑल्सो ना, हम देख ही नहीं रहे थे कभी भी। जितना मैं बाहर देखती हूँ, मुझे हर चीज सिर्फ बाहर ही दिखाई देती है। मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था कुछ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था, कुछ नॉट सो अच्छा, मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा। तो ऑटोमेटिकली मैं कंक्लूजन क्या करूंगी कि ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है, ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है। दिस इज लाइक एन ऑटोमेटेड मोड, कि ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, आपकी कोई चॉइस नहीं है। मशीन और ह्यूमन बींग में क्या फर्क है? मशीन के पास कोई चॉइस नहीं है। ह्यूमन बींग मीन्स एट एवरी स्टेप अ चॉइस, कि भले किसी ने बटन प्रेस किया भी है, आपको ऑन होना है या ऑफ होना है, इट्स योर चॉइस, नाउ डिसाइड। आपको ऑफ होना है, ऐसे होके बैठ जाना है, ऑन होना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और इस केस में तो सिर्फ दो चॉइसेस नहीं है, ऑन एंड ऑफ बहुत सारे चॉइसेस है। एंड जितना हम अवेयरनेस में रहते हैं, हमें लगता है कि हर सिचुएशन में एक्चुअली कितनी सारी चॉइसेस थी। हमने हमेशा वो प्रोग्राम्ड चॉइस ले ली कि इन्होंने ऐसा कहा तो बुरा तो लगना ही है, गुस्सा तो आना ही है। सो वी वर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनी अदर पॉसिबिलिटी, ऑफ एनी अदर चॉइस ऑन दैट
1: इनोवेशन
0: क्रिएटिविटी।
2: और कारण है कनुप्रिया बहन की, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, बस मुख्य बात है कि हर बात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इवन मेरे थॉट के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: मैं कैसा फील कर रही हूँ, कैसा वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, इसकी जिम्मेदारी अगर मैं ले
2: बस
1: लूँ,
2: एक ले
1: बस
2: लो, फिर और सब कुछ आ
1: सारे हो
2: जाएगा।
1: जाएंगे। आई
0: और
1: नो
0: अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज स्ट्रगल हो रही है। सी, पेरेंटिंग स्ट्रगल, जॉब स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल, हर चीज में, तो एक रिलेशनशिप्स स्ट्रगल, हर एक चीज में क्यों स्ट्रगल हो रहा है? क्योंकि मैं जो ये सारी जिम्मेवारियां उठा रहा हूँ, मैं पहले अपना ध्यान नहीं रख रहा। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि वो थॉट बीज है, ये पूरा उसका वृक्ष है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। अभी हम निभा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट तरह से निभ रहे हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना, लेकिन शायद मेरा ही थॉट और व्यवहार मेरे बच्चे को इमोशनली वीक कर रहा है, तो देन एम आई फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बात, शायद आई एम क्रिएटिंग डैमेज, आई एम
1: डिफिकल्टीज।
0: क्रिएटिंग अ डैमेज, आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल फॉर माई चाइल्ड ग्रोथ, तो दैट आई हैव टू क्वेश्चन। बट वाई विल आई नॉट बी एबल टू डू दैट? पेशेंस नहीं है, कि मैं नहीं प्यार से समझा सकता, मुझे गुस्सा तो आ ही जाता है क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी ली है.
1: ओके, अपनी जिम्मेवारी नहीं ली, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसे थॉट क्रिएट कर रही हूँ उसकी नहीं ली. इट्स नॉट दैट इजी. सी अगेन, अभी भी मैं अगर सोचूं मुझे कोई चीज बुरी लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, और मैंने थॉट क्रिएट जाने की भी कोशिश की कि मैं जाके देखूं कि क्या है थॉट, तो वो थॉट जो है वो है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो सिचुएशन है. वो अब उसको मुझे ठीक करने के लिए आई वेट फॉर द सिचुएशन टू कम, और आई कैन से इधर आई गिव अप देन एंड आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स. लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ है वो इशू. ये चेंज कैसे होगा ये थॉट?
2: इसके लिए एक बात जो फाउंडेशन समझना चाहिए कि परिस्थितियों में जान नहीं होती है. जो हम
1: थॉट में जान है,
2: हाँ,
0: एनर्जी तो वही है
2: ना. सिचुएशन आर लाइफलेस, हम जो उसको लाइफ देते हैं वो अपने थॉट्स से देते हैं. तो बस थॉट्स को मुझे चेंज करना है और वो मेरे कंट्रोल में है
1: क्योंकि हमने उस पे जाके देखा.
2: एंगल को तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ. कौन से एंगल से मैं आपको देख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट लेट मी चेंज द एंगल.
0: और उसके लिए अगर हम कॉन्शियसली प्योर और पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं जबकि कोई परिस्थिति भी नहीं है. अगेन वी थॉट फर्स्ट स्टेप वॉज जब कोई परिस्थिति नहीं है चेक करो कैसी थॉट्स है. दूसरी स्टेप जब कोई परिस्थिति नहीं है consciously powerful positive thoughts create करें, जिसको हम meditation कह सकते हैं. You know, channelizing my mind in the right direction. गिरीश भाई ने पहले कहा था एक बार कि जिस direction में thoughts flow होंगे grooves उसी तरह बनते जाएंगे, पानी जैसे flow होगा. तो अब हम कुछ समय रोज निकालें अपने लिए कि हम पानी को deliberately उस तरह से channelize करें जिस तरह से we want my mind to work. अपने आप नहीं हो जाता है, situation आने पर नहीं हो पाता है, तो तब करना होगा when everything is silent. और इसीलिए मेडिटेशन हम करते हैं अर्ली मॉर्निंग में कि सुबह उठ के कुछ पढ़े बिना, किसी से बात करे बिना, कुछ भी और करे बिना, क्योंकि जैसे ही आप एक्टिविटी में चले गए आपका ये माइंड फिर हो जाता है. कई बार तो आप चेक करें जब आप सुबह उठते हैं पिछले दिन की बातें वो ऑटोमेटिक अभी भी चल रहे हैं, लाइक अ कमेंट्री वो माइंड में चलता जा रहा है.
1: पहली आंख खुलती है और वो सारा का सारा बैकलॉग सामने.
0: एक्चुअली वो सारा का सारा बैकलॉग सामने नहीं आया, नींद में भी वो चल रहा था. अभी तो आंखें खुली सिर्फ. इसीलिए उठने के बाद आप रेस्टेड फील नहीं करते, आप फील नहीं करते कि आप चार्ज थे, क्योंकि रात को सोने से पहले हमने उसको स्लो डाउन नहीं किया था. आंखें बंद हो गई, शरीर सो गया, माइंड अभी भी चल रहा था. सुबह जैसे ही आंखें खुली वीसी के वही सीडी बज रही है अंदर, वही वाले गाने सारे बज रहे हैं अंदर, वो रात भर भी बज रहे थे. आज मेजोरिटी लोगों से आप पूछो सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन किसका करता है. जो आपने टाइम का अलार्म लगाया है 5 मिनट और किसका मन करता है सोने को? मेजोरिटी विल से यस.
1: सब बोलेंगे यस.
0: नाउ व्हाई आप 5 घंटा 6 घंटा सो लिए उसके बाद 5 मिनट और क्यों सोना है? क्योंकि जैसे ही उठते हैं वी स्टिल फीलिंग वेरी टायर्ड. बॉडी ठीक है बट माइंड अभी भी बहुत थका हुआ क्योंकि वह पूरी रात भी चल रहा था कंटिन्यूसली. तो इसलिए अपनी थिंकिंग पर वर्क करें कॉन्शियसली रात को सोने से पहले एंड सुबह उठते ही. नींद बहुत अच्छी होगी, सुबह की तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो सारा दिन का काम इजी हो जाएगा उसको करने के.
1: डॉक्टर पटेल, यहाँ हम अलग अलग थॉट्स को देख रहे थे, अभी एलिवेटेड थॉट्स पर हम अभी आ रहे थे कि वो उनमें कौन से थॉट्स शामिल हैं.
2: अभी एलिवेटेड थॉट जैसे हमने देखा टॉक्सिक थॉट, वो नेगेटिव इफेक्ट में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है. तो ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट को देखे तो एलिवेटेड थॉट सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो एलिवेटेड थॉट है वो हाई एनर्जी थॉट है, उसमें ऊर्जा की हमारी एनर्जी भाई होती, आप खुद भी उमंग उत्साह का अनुभव करते. साथ साथ जो एलिवेटेड थॉट्स है वो जैसे टॉक्सिक थॉट्स नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन. ऐसे एलिवेटेड थॉट्स है वो पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एंडोरफिन्स, नॉर एंडोरफिन्स, डोपामाइन, सीरोटोनिन, यह सब अच्छे केमिकल्स है कि जिसके कारण ये जो फील गुड की बात थी वह फीलिंग्स आती है. तो एलिवेटेड थॉट से एक केमिकल रिलीज होते हैं, इसके कारण यह सबसे ज्यादा पावरफुल है.
1: और इनमें कौन से थॉट शामिल होंगे, कौन से वो थॉट?
2: अभी एलिवेटेड थॉट्स किसको कहेंगे कि बी नो व्हिच आर रियली एलिवेटेड. एक रियल इसमें हम जो डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, उससे भी जो ऊपर के थॉट है. सबसे पहले तो सेल्फ के बारे में, कि भी सेल्फ की एलिवेटेड लेवल क्या है, कि मैं रोल कॉन्शियस नहीं हूं, मैं रेस कॉन्शियस भी नहीं हूं, स्किन कॉन्शियस नहीं हूं, आई एम अ सोल, आई एम दैट स्पिरिचुअल एनर्जी। उसमें माइंड को स्टेबिलाइज करना वह सबसे पहला एलिवेटेड थॉट है। फिर उससे आगे अगर देखना है कि उससे आगे एलिवेटेड थॉट है कि आत्मा के गुण मेरे कौन से है, कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूं, शांति का खुट खजाना मेरे में समाया हुआ है, शांति को कहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम सही चीज को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। शांति अच्छी चीज है, परंतु हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वह है हमारे अंदर ही। यह थॉट अगर कि मैं आत्मा ही शांति से भरपूर हूं, आत्मा के सातों गुणों का अखूट खजाना मुझ में समाया हुआ है, यह दूसरा एलिवेटेड थॉट है। और थर्ड एलिवेटेड थॉट कि परमात्मा से मेरे संबंध क्या है, मेरा सोर्स है वह परमात्मा ही है, बस परमात्मा से मुझे सर्व शक्तियों को प्राप्त करना है। वह सही सोर्स होगा तो भी सब प्राप्तियां सहज हो जाएगी। आज हम टेम्परेरी छोटी छोटी चीजें लेने के लिए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भी किसी को पानी दे दो, उससे तो अच्छा है कि भी पानी दिया एक दिन प्यास बुझी, उसको नल दिखा दो कि भी नल कहाँ है तो जीवन भर उसकी प्यास बुझेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को समझना, उससे मन बुद्धि का संबंध जोड़ना, वह सबसे बड़ा एलिवेटेड थॉट है।
0: बहुत सारे भाई बहने जो टीवी का प्रोग्राम ये काफी समय से देख रहे हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। ये थॉट हम जितनी बार अपने साथ क्रिएट करते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग गुड इमिजिएटली। कोई परिस्थिति भी आती है तो हम तुरंत अपने आप को ये थॉट क्रिएट करते, आई एम अ पीसफुल सोल। तो थॉट चेंज की, फीलिंग चेंज हो गई, कर्म चेंज हो गया, डेस्टिनी चेंज हो गई, हमने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम। लेकिन ये आई एम अ पीसफुल सोल, उस टाइम कैसे ये थॉट क्रिएट करेंगे? अगर मॉर्निंग में जब कोई परिस्थिति नहीं थी तो 5 मिनट बैठकर अपने माइंड को ये तरह की थॉट्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस कराई थी। एंड एलिवेटेड थॉट्स क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि दे आर द ट्रूथ। तीनों बातें जो बताई कि आई एम अ सोल, सोल की क्वालिटीज और आत्मा का पिता परमात्मा कौन, ये तीनों चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी सारी चीजें लेबल्स हैं, अक्वायर्ड हैं। ये तीनों चीजें परमानेंट हैं, बाकी सब चीजें आज हैं, कल नहीं भी हो सकती है, टेम्पररी है, इसलिए हमेशा फियर बना हुआ है। जैसे ही आप ट्रुथ पर आ गए जो इटर्नल है, तो फियर एंड डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ऑटोमेटिकली फीलिंग कैसे आएगी? फील वेरी गुड। तो एवरी मॉर्निंग सिट एंड शेयर विद योर सेल्फ, अपने आप को समझाओ मैं कौन हूँ। गुस्सा करने से काम होता है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल। तो पीसफुल सोल काम कैसे कराएगा?
1: पीसफुली।
0: दिस इज सेल्फ टॉक, सेल्फ लर्निंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइफ स्किल्स। कि अपने आप को वो स्किल्स सिखाना कि आज सारा दिन में मैंने जो कुछ करना है मुझे इन स्किल्स को सीख कर फिर करना है, एवरीथिंग विल चेंज दैट।
1: तो आप दोनों हमारे साथ हैं, थैंक यू। अभी तक जिस तरह से जैसे शिवानी ने भी कहा कि एक पूरी साइकिल है, तो मेरा अगर एटीट्यूड है, मेरे थॉट्स के कारण मेरा एटीट्यूड है किसी के प्रति, या उस वो कर्म में आता है, उस एटीट्यूड फिर फीलिंग पीछे जाए और थॉट कैसे बनता है वो, उसको देखना शुरू करें। ये है वो स्किल, ये है वो टेक्निक जो अभी तक कहीं मिसिंग थी। लेट्स लर्न इट, लर्न करेंगे, उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, जीवन परिवर्तित होगा। तो इस परिवर्तन को महसूस करें। कोई बात मन में आ रही है, आप हमारे साथ फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: मुगल हुकूमत के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर। क्रांति के लिए नायक की जरूरत होती है, मगर 1857 की क्रांति का नायक कौन बनता? भारत में कोई ताकत ऐसी न थी जो अंग्रेजों का सामना कर पाती। ऐसे में क्रांतिकारियों की निगाहें दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर पर जा टिकी और उन्हें क्रांति का नायक बना दिया गया। बादशाह के नेतृत्व में 4 महीने तक जंगे आजादी के मतवालों ने अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया। हर कदम पर खूनरेज मुकाबला हुआ। जब अंग्रेजी फौजें लाल किले की तरफ बढ़ने लगी तो बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पनाह लेनी पड़ी, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ युद्ध में शिकस्त की बात होती तो और बात थी। अंग्रेजों ने बर्बरता की सभी सीमाओं को पार करते हुए उनके चारों शहजादों को कत्ल कर दिया और उनके सिर बादशाह के सामने भिजवा दिए। बादशाह ने अपना जज्ब नहीं खोया। शहजादों की लाशें शहर कोतवाली के सामने लटका दी गईं और उनके कटे हुए सिर

0: अरे राजू, आज दूध वाला नहीं आया अब तक?
1: अरे नुक्कड़ तक देखा हूँ काका।
0: अरे तू रहने दे भाई, तू रहने दे, नहीं तो वहाँ जाके तू भी वहीं बैठ कर रह जाएगा। अरे लो आ गया राम रतन, तू दूध ले ले, मैं जरा उन लोगों से दुआ सलाम करके आता हूँ। बाबूजी लोग आज काफी दिन बाद आए।
2: अरे कैसे हो काका जी?
0: बस हुजूर कृपा है आपकी, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ आप लोगों का।
3: हाँ, मेरी तबीयत जरा गड़बड़ चल रही थी तो बस मेरे ही घर पे जमा लेते थे बेटे, बाहर निकलना ही नहीं हुआ। और आप कैसे हैं काका?
0: आप लोग आते रहा करो रजा भाई। अरे उम्र तो मेरी हो चली है, बस ये ढाबा ही जिंदगी हसीन कर देता है।
3: बड़ा शायराना अंदाज हो रहा है आज, क्या बात है मियाँ।
0: अरे बस, वैसे आपने ठीक पकड़ लिया रजा भाई, असल में इन दिनों बहादुर शाह जफर के ऊपर एक किताब पढ़ रहा हूँ। अरे वो अपने नाटक वाले बच्चे आते रहते हैं ना, उनमें से एक तो बड़ा ही अच्छा लड़का, हर बार मेरे लिए काम की कोई ना कोई चीज पढ़ने को जरूर ले आता है। वो इस बार बहादुर शाह जफर पर कुछ दे गया, बस शायद वो ही दिमाग पर सवार है।
3: तो आज कल जफर के बारे में पढ़ रहे हैं? क्यों मियाँ?
0: हाँ। अरे आइए आइए मुकेश भाई, कैसे मिजाज हैं?
2: अरे काका जी, ढाबा तो बड़ा खूबसूरत हो गया है।
0: मुकेश भाई, आपका गाना सुने अरसा हो गया है, पहले तो आप लोग जब भी आते थे तो मेरे ढाबे पे क्या महफिल जमती थी।
3: हाँ यार मुकेश, कुछ सुना हो यार आज तो। काका, असल में 3-4 लोग तो तबादले में बाहर चले गए हैं, 2-1 लोगों ने घर इतनी दूर बना लिए हैं कि बस।
0: अरे भाई शहर आज जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, हम आप पल भर मिल लेते हैं, ये क्या कम है।
3: मुकेश यार, कुछ मूड बन रहा हो तो सुना दो।
2: अरे अब क्या गाना वाना यार, उम्र हो चली है, अब ऐसे में कहाँ सुनना और सुनाना, मुझे भी गाए हुए काफी दिन हो गए। अच्छा चलो, आज जफर की बात उठी है तो उन्हीं की एक गजल सुनाता हूँ।
4: गई यक बयक जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है, करूं इस सितम का मैं क्या बयां, मेरा गम से सीना फिदार है।
3: वाह वाह मुकेश भाई वाह, सच में जब इंसान नेकी और इल्म से सराबोर होता है तो जाकर इतनी सुंदर रचनाएं बनती है।
2: हाँ, बहादुर शाह जफर एक ऐसी ही शख्सियत थी असल में, जिन्होंने ना सिर्फ अच्छी शायरी लिखी बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ उठी पहली बगावती आवाज को बुलंद करने में अपना पूरा दमखम लगा दिया।
0: असल में मुकेश भाई, मैं तो सिर्फ उनकी शायरी के बारे में ही ज्यादा जानता हूँ, पर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्या योगदान दिया प्लीज थोड़ा बताओ।
3: हाँ काका, बिल्कुल ठीक है। बहादुर शाह जफर की शायरी और गजलों को लोग पसंद तो करते ही हैं, पर सूफी दर्शन, फारसी का विद्वान इब्राहिम ज़ोक और मिर्जा गालिब जैसे महान शायरों का शागिर्द एक शहनशाह इतनी अच्छी सियासी सूझबूझ भी रखता था, ये बात वाकई दिलचस्प है। क्यों भाई मुकेश?
2: हाँ, पर जमाने का दस्तूर देखो कि सब कुछ जब दिलचस्प होने लगे और अच्छे से गुजरने लगे तो जैसे कोई नजर सी लग जाती है। हाँ, नजर ही लग गई थी हमारे मुल्क।
5: सच ही कहते हैं कि तारीख अपने आप को जरूर दोहराती है। देखो ना, बाबर और अकबर की ही तरह आज हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हमारे हाथ पे है।
6: आलम पनाह, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान की जमीन को अपनी मां से बढ़कर समझा, इसकी इज्जत का सौदा उन्होंने कभी नहीं होने दिया।

0: हर तरह से अपना फराइज अदा किया। अब शायद फर्ज निभाने की बारी हमारी है।
1: ठीक कहते हो जमा वक्त, हम अपनी इस पाक सरजमी का सौदा हरगिज नहीं कर सकते, पर चाहे इसके लिए हमें अपनी जान का सौदा क्यों ना तय करना पड़े।
2: आने वाली तारीख इस बात की गवाह रहेगी अब्बा हुजूर कि वतन की आन बान और उसके वजूद को बरकरार रखने के लिए शहंशाह बहादुर शाह जफर ने बददिमाग फिरंगियों से लोहा लिया था, और वो भी तब जब तकदीर की डोर दुश्मनों के हाथ थी।
1: आमीन आमीन, ऐसा ही होगा मेरे बच्चों, ऐसा ही होगा।
3: हुजूर आलम, नाना साहब हुजूर से मुलाकात करना चाहते हैं।
1: उन्हें आने दिया जाए।
4: कानपुर के पेशवा नाना साहब उन दिनों अपने खास सहयोगी अजीमुल्ला खान की सलाह पर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। दरअसल वो तीर्थ यात्रा यात्रा न होकर एक कूटनीतिक यात्रा थी, लेकिन अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने यात्रा पर धार्मिक चोला चढ़ा दिया था।
5: बिठूर का नाना धुंधुपंत साक्षात बादशाह के दर्शन कर धन्य हुआ।
1: आइए नाना साहब आइए, रौनक तो इस लाल किले की बड़ी जो आपके मुबारक कदम यहाँ पड़े, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
5: शर्मिंदा ना करें श्रीमान, दरअसल अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान आपके दर्शन की अभिलाषा हुई तो हम यहाँ आ गए।
1: हम अक्सर आपकी इस यात्रा के बारे में सुनते रहते हैं।
5: जहाँ पना भारत का कण कण आज सुलग रहा है, गोरों ने हमारे देश पर ही नहीं एक एक देशवासी की आत्मा पर हमला किया है। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता पर सवाल उठाया है, वो शायद भारतवासियों की शांति प्रियता को उनकी कमजोरी समझ बैठे हैं, किंतु वे शायद भूल गए हैं कि शांति प्रिय देशवासियों के हृदय में धधकती हुई ज्वाला है जो समय आने पर उन्हें राख के ढेर में तब्दील कर सकती है।
1: आप ठीक कहते हैं नाना साहब, आज सारे हिंदुस्तानी ये बात समझ चुके हैं कि हिंदू मुसलमान मुगल मराठे इन सबसे अलग हमारे एक और वजूद है, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान की आबरू के लिए हम जान लड़ा देंगे।
5: आलम पना, आज हर धर्म जाति और तबके के लोग फिरंगियों से असंतुष्ट हैं। किसी को अपना धर्म भ्रष्ट होते दिखता है तो किसी को अपना व्यापार नष्ट होते दिखता है। प्रजा व सामान्य जन का कष्ट तो छुपा नहीं है, और फिर हम राजाओं जागीरदारों पर जो गुजर रही है उससे आप तो भली भांति परिचित हैं ही।
0: अब्बा हुजूर, मेरठ लखनऊ और इलाहाबाद के साथ ही दूसरी छावनियों से भी खबर है कि कारतूसों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर अंग्रेज हिंदुस्तानियों के जज्बात से खेल रहे हैं। छावनियों में इस बात के खिलाफ बेहद गुस्सा और बेचैनी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
2: जी अब्बा हुजूर, गोरों के खिलाफ आवाज अब बुलंद होती जा रही है, बगावत करने वाले अब आवाज अपना सर उठा रहे हैं, और बगावत की बयार का कुछ ऐसा असर है कि उनके जरिए अब कोई भी खबर सिर्फ 3 दिनों में हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जा सकती है।
5: आलम बना, ये तो सच है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी उठ रही है, लेकिन चिंगारियों को शोलों में तब्दील करने के लिए एक सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है, वो नेतृत्व जिसका हुक्म हर हिंदुस्तानी को कबूल हो।
0: आलमपना, आज सारे हिंदुस्तान की निगाहें आप पर हैं।
2: जी अब्बा हुजूर, आप हमारे खानदान की रवायत को और आगे बढ़ाएं, हिंदुस्तान की आजादी पर घिराए अब्रों को हटाएं। आज सारा हिंदुस्तान आपसे यही चाहता है।
1: लेकिन हमारी तो अब उम्र हो चली है, और हम अपना दिल बस उस खुदा की इबादत में लगाना चाहते हैं जिसने ये सारी कायनात बनाई है।
0: आज आपको उसी खुदा का वास्ता, उसी की बनाई कायनात के इन बंदों को आपकी जरूरत है।
5: अपनी प्रजा को निराश मत कीजिए जहाँ पना।
2: मान जाइए अब्बा हुजूर, आज नाना साहब की आवाज में पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, मान जाइए।
1: ठीक है, हमें मंजूर है। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो हम आजादी की मशाल जलाएंगे। बस एक शर्त है कि उस मशाल की आग से बेगुनाहों को नहीं झुलसाया जाए। हमारी लड़ाई अंग्रेजी निजाम से है, सारे अंग्रेजों से नहीं। हम उनकी औरतों और बच्चों से कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि इंसानियत के उसूलों के खिलाफ हो।
5: आप फिक्र ना करें आलमपना, भारतीय परंपरा पर हम कोई कलंक नहीं लगने देंगे। अब आज्ञा दें जिससे हम जल्दी स्वतंत्रता के सैनिकों को खबर पहुंचा सकें कि उन्हें आपका कुशल नेतृत्व मिल चुका है। विजय हमारी होगी।
1: आमीन।
4: बादशाह सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर की सहमति के बाद आजादी के परवानों की हिम्मत और बढ़ गई। कंपनी सरकार के खिलाफ बागियों के तेवर तेज हुए तो अंग्रेजों को भी खबर लग ही गई कि बादशाह और शाही महल के बाशिंदे अब बागियों के साथ हैं। लिहाजा जल्दी ही शाही महल अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गया और असर अब महल के अंदर भी दिखाई दे रहा था। महल के बाहर अब अंग्रेजी पहरा था और बादशाह अपने ही महल में नजरबंद था।

0: आदाब अम्मी जान।
1: आओ कमर, अंदर आ जाओ। क्या बात है बेटी, परेशान दिख रही हो।
0: परेशान तो हमें सारे लोग नजर आते हैं अम्मी। क्या हुआ है लाल किले को, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। ये आपकी पेशानी पर पड़ी सलवटें, ये किले पर छाया अजीब सा खामोशी का साया, और हुजूर की कलम से निकलता दर्द का ये दरिया, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है मानो कयामत आने वाली हो।
1: कयामत ही आने वाली है बेटी, सच कहती हो।
0: ऐसा क्यों कहती हैं अम्मी?
1: और नहीं तो क्या, ये सब क्या कयामत से कम है? आज हम शाही नहीं बल्कि कैदी हैं, अपने ही महल में नजरबंद कैदी। फिरंगियों ने किले को चारों तरफ से घेर रखा है, और शहजादे मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर को अंग्रेज गिरफ्तार कर किले से ले गए हैं बेटी।
0: या अल्लाह, लेकिन क्यों अम्मी जान?
1: बेटी, जिल्ले इलाही ने हिंदुस्तान की सरजमी को गुलामी के अंधेरे से निकालने के लिए खुद आगे बढ़कर जिहाद की मशाल थामी। क्या मुगल, क्या मराठे, हिंदू मुसलमान सब ने साथ मिलकर सामना किया अंग्रेजों का, और रंग लाई मेहनत। जिल्ले इलाही की अजीम शख्सियत के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। हमारी दिल्ली से कंपनी सरकार का परचम हट गया।
0: तो फिर ये सब?
1: हाँ, पर जो काम दूसरे न कर पाए वो अपनों ने कर दिखाया। खुद को हमारे साथ बताने वाले कुछ लोग जाकर उन अंग्रेजों से मिल गए और हम पर ही गोलियां बरसाईं। न जाने कितनों का खून बहा, और शायद उसी खून के साथ बहकर हिंदुस्तान का तख्त और ताज भी हमसे दूर चला गया। बेटी, हमसे दूर चला गया।
0: नहीं अम्मी, अब
1: हाँ, अपने ही महल में नजरबंद कैदी। खैर, हम तो ठीक ही हैं, पर मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर पर न जाने क्या गुजर रही होगी। कमबख्त उन्हें

0: जिस लाल किले में चंद रोज पहले रौनक थी, अब वहां उदासी का साया था और महल का हर बाशिंदा अपने आप को इस साये तले महसूस कर रहा था।
1: खुद बादशाह भी?
2: हाँ, वो तो स्थिति को सबसे बेहतर जानते थे।
3: अब तो ये कलम भी साथ नहीं दे रही और शायद हमारे लफ्जों और अल्फाजों पर भी उन पर भी पहरा है। अब कोई है?
4: जी जहां बना।
3: शाही मौसिकार को आने का पैगाम दो।
2: आदाब शाही आलम, आपने नाचीज को याद फरमाया?
3: हाँ उस्ताद साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे गम को अपनी पुरकशिश आवाज और सांस से ढक दें।
2: जी आलीजा, हुक्म सर आंखों पर।

0: सचमुच ऐसे हालात का सामना करने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी हिंदुस्तान के बादशाह को।
1: हाँ, अंग्रेजों के दिए दर्द का दरिया जल्दी ही समंदर में तब्दील हो गया और उस समंदर में डूबने लगी मुगलिया सल्तनत।
2: सरताज, ये हम क्या सुन रहे हैं? बोलिए। मिर्जा मुगल और मिर्जा खजर के सिर कलम करके बतौर नजराना जिल्ले इलाही को भेजे गए और आप खामोश हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं आप?
3: क्या बोलें हम? ये कि हाँ, ये सब सच है, या फिर ये बताएं कि यही नहीं, हम पर मुकदमा चलाया गया है, जिल्ले इलाही पर गद्दार होने की तोहमत लगाई गई है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, सब कुछ।
0: तो क्या सचमुच सब कुछ खत्म ही हो गया?
1: हाँ, खत्म सा ही हो चला था सब कुछ। जिस लाल किले से जफर पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत चलाते थे, उसी लाल किले के अंदर उन पर मुकदमा चलाया जाने वाला था।
4: यार मुकेश, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ?
1: हाँ हाँ रजा भाई, क्या हुआ?
4: यार देखो, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर और यहाँ यूं ही बैठा रहा ना तो मुझ पर भी मुकदमा चल जाएगा भाई। वो मुकदमा जो मेरी होम मिनिस्टर मुझ पर चलाएगी।
1: अरे हाँ रजा भाई, ठीक याद दिलाया आपने। होम मिनिस्ट्री की कार्रवाई से बचने के लिए हमें अभी इस मुकदमे की कार्रवाई को अगली बार के लिए मुलतवी करना होगा। तो चलो राम भरोसे भाई, बताओ कितने पैसे हुए?
5: वो तो मैं अगली बार ही बताऊंगा मुकेश भाई, जिससे आप जफर की बाकी दास्तान सुनाने जरूर आए।
4: भाई राम भरोसे, तुम्हारा ये अंदाज भी खूब है। चलो तो मुकेश, अगले हफ्ते की महफिल पक्की?
1: बिल्कुल पक्की। राम राम काका, तो चलो मिलते हैं अगली बार।

निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मार गोरी।
1: अरे हाँ, चोरी चोरी।
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सबने कहा, हमने भी मान लिया, सबने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
3: थैंक यू
2: सिस्टर। कल किसी से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही थी, तो मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा।
3: sure.
2: पहले तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि द यूनिवर्स इज नॉट पनिशिंग यू और ब्लेसिंग यू, एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दैट बिकॉज अगेन इससे कनेक्टेड मैं सवाल पूछना चाहूंगा। द यूनिवर्स इज ओनली रेस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल एटीट्यूड दैट यू आर एमिटिंग। यहां तक। वॉट इफ एवरी वर्ड यू सेड वेर अ विश टू द यूनिवर्स, would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Now, make sure to only put out ones that you want back. Yahan law of attraction kehta hai, you don't attract what you want, you attract what you are.
3: Perfect. This is all that we have been discussing since the last so many days. You don't attract what you want, you attract what you are. And what are you? Thoughts, feelings, attitude, starting from belief system. अब जब हमें ये वाली बात समझ में आ जाती है पूरी complete, अगर हम समझ लें इस equation को कि ये कैसे चल रही है, can I afford to have a wrong belief system?
2: कैसे पता चले कि मेरा रॉन्ग बिलीफ है कि राइट बिलीफ है?
3: अच्छा, टेंशन इज नेचुरल। एक बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम लिया तो सारा दिन में काम करते हुए मन ने कहा टेंशन तो होती है, टेंशन तो होगी ही, चिंता तो नेचुरल है, तो चिंता होती गई, वो एटीट्यूड में आया, एक्शन में आ गया, पर्सनैलिटी वैसे बनती गई, डेस्टिनी मेरी क्या हुई?
2: Full of tension,
3: टेंशन से रिलेटेड बीमारियां, टेंशन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जो मेरा टीम मेंबर्स के साथ आया, क्योंकि टेंशन इज नेचुरल, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही था कि टेंशन इज नेचुरल। आज तो सिर्फ टेंशन इज नेचुरल भी नहीं कहते, टेंशन इज गुड, मतलब स्ट्रेस इज गुड, बिकॉज स्ट्रेस इज द ड्राइविंग फोर्स। स्ट्रेस नहीं होगा तो हम बहुत पैसिव हो जाएंगे।
2: यू स्ट्रेस,
3: गुड स्ट्रेस, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हो जाएगा तो डेस्टिनी भी वही होगी। अब कह रहे हैं चाहिए खुशी, चाहिए शांति, मतलब डेस्टिनी को चेंज करना ना। आज मेरे भाग्य में तनाव है, चिंता है, मुझे अपने भाग्य में खुशी चाहिए, तो आई हैव टू गो बैकवर्ड्स कि ये जो टेंशन है ये कौन से बिलीफ सिस्टम से मेरे डेस्टिनी में आई है कि टेंशन इज नेचुरल। अब मुझे खुशी चाहिए, लेट मी ट्राई, जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, लेट मी एक्सपेरिमेंट विद अ न्यू बिलीफ सिस्टम। पहले बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल, अब हमने देखा पीस इज नेचुरल, ब्लिस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज नेचुरल। अब ये बिलीफ सिस्टम लिया,
2: पहले देखा था कि गुस्से से ही काम निकलता है, एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर इज नेचुरल। नेचुरली आप जब तक एक बार बोलो दो बार बोलो नहीं सुनेगा, डांट के बोल दिया काम हो गया।
3: राइट कितने सारे सारा दिन बिलीफ सिस्टम है ना। जैसे आपने एक बार पहले भी शेयर किया था कि छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा है और अगर वो कुर्सी से टकरा जाए या किसी चीज से टकरा जाए तो उसको हम ये सिखाएंगे नहीं कि ये चलने में गलती थी, और ये लगती है छोटी बात कि हम उसको क्या कहेंगे, कुर्सी को हाथ मारेंगे, कोई बात नहीं लग गया ना, कुर्सी गंदी,
2: और सब स्टाफ को डांटेंगे हटाओ कुर्सी, किसने रखी ये गंदी कुर्सी, बेटर नहीं रोना, चलो कुर्सी को निकाल दो,
3: तुम्हारी गलती नहीं, कुर्सी खराब। सीख लिया, अच्छा बच्चे को खिलौना ला के दिया, बच्चे को मूवी ले गए, सर्कस ले गए, उसको सिखाया दिस इज हैप्पीनेस। वी टॉट द चाइल्ड, दिस बिलीफ सिस्टम इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम अस टू अदर पीपल अराउंड अस।
2: बच्चा तो मैंने देखा घास लेके खुश हो जाता है, मिट्टी का टुकड़ा लेके खुश होता है, कागज फटे पुराने गंदे कागज को देख के हंसता है, खुश होता है
3: बच्चा। अगर हम फर्स्ट देखे बच्चा तो वो तो ऐसे इतना ओरिजिनली इतना प्योर होता है, बच्चे को फियर नहीं पता होता, बच्चे को एंगर नहीं पता होता, बच्चे को जेलसी नहीं पता होती, बच्चे को कॉम्पिटिशन नहीं पता होता, बच्चे को कंपैरिजन नहीं पता होता, किसने सिखाया? छोटा बच्चे को हम प्री स्कूल में जाने से पहले सिखाते हैं, कॉम्पिटिशन है, इतने सब बच्चे हैं, उसमें आपको आगे जाना है. वी नेवर टीच द चाइल्ड योर ओन परफॉर्मेंस मैटर्स. वी से इट हैज टू बी इन कॉम्पिटिशन टू अदर पीपल. बच्चा एग्जाम देके घर आता है, सी हम कैसे सटल तरह से बिलीफ सिस्टम को ट्रांसमिट करते हैं. बच्चा एग्जाम देके घर आता है, हम कहते हैं कैसा हुआ आपका पेपर आज, कैसा हुआ? कहना ठीक हुआ. सेकेंड क्वेश्चन, ऑलवेज सेकेंड क्वेश्चन, बाकी सबका कैसा हुआ?
2: बहुत अच्छा हुआ
3: ना. अब आपकी परफॉर्मेंस इन रेफरेंस टू बाकी सब, बाकी सबका बहुत अच्छा हुआ, फिर आपका क्यों नहीं अच्छा हुआ? और अगर उसने कह दिया नहीं बाकी सबका तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ, फिर ठीक है. कॉम्पिटिशन, कंपेरिजन, ये बिलीफ सिस्टम हम सिखा रहे हैं. छोटे बच्चे को बड़ों के सामने खड़ा करा देंगे, गाना गा के सुनाओ, वो वाली पोइट्री सुनाओ, डांस करके दिखाओ, वो कर देता है छोटा सा बच्चा, सब लोग वाह वाह करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. बिलीफ सिस्टम तभी से पड़ता है, परफॉर्मेंस गेट्स अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी अराउंड मी.
2: कंपैरिजन का तो कोई लिमिट ही नहीं रहा. वो देखो उसकी हेल्थ, देखो वो स्विमिंग में फर्स्ट, देखो ये. मैं अपने बच्चों को भी बोलता था कि भाई अगर कोई किसी और चीज में फर्स्ट है तो क्या वो आपकी तरह इतना अच्छा गा सकता है? आई शुड टेल, मेरी बेटी को मैंने बोला एक दिन, वो बोलने लगे ये इनको दुनिया के आता है, इनको शेयर मार्केट आता है, इनको अकाउंटिंग आती है, इनको पूरा बिजनेस रन करना आता है. तो मैंने बोला यू आर एन आर्टिस्ट, तुम जैसी वो पेंटिंग कर सकती है क्या? तुम्हारे जैसा वो गा सकती है? यू आर अ क्लासिकल सिंगर, यू आर अ पेंटर. तो उसमें एक है, इसमें एक है. लेकिन नहीं, उसने तुमको मुक्का मारा और तुम चुप क्यों रहे? वो कितना स्ट्रांग है.
3: कॉम्पिटिशन एंड
2: कंपैरिजन,
3: तो ये सारी चीजों से फिर डेस्टिनी में आ रहा है ना प्रभाव उसका. लेकिन क्योंकि भाग्य में आज जेलसी भी होगी, दुख भी होगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा कि अदर पीपल आर बेटर देन मी. क्योंकि बचपन से मुझे ये बिलीफ सिस्टम नहीं किसी ने क्रिएट किया, आई एम अ यूनिक सोल, ये नहीं सिखाया ही नहीं किसी ने. आई एम अ सोल, माई क्वालिटीज आर प्योरिटी पीस लव, बाकी सब तो स्किल्स एंड टैलेंट्स है. ये भी नहीं सिखाया, स्किल्स एंड टैलेंट्स को ही मेरी आइडेंटिटी बना दिया, मेरे मार्क्स को मेरी आइडेंटिटी बना दिया, मेरी डिग्री को, मेरे प्रोफेशन को मेरी आइडेंटिटी बना दिया. वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ये बताया ही नहीं. और फिर जब क्वालिटीज वैल्यूज की बात भी की तो वी थॉट वी हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर. प्यार किसी और से मिलेगा, रिस्पेक्ट औरों से मिलेगी, विश्वास औरों से मिलेगा, मुझे ये करना है, ये मेरी इनहेरेंट नेचर है, ये नहीं सिखाया. तो ये बिलीफ सिस्टम्स होने से आज हम अपनी डेस्टिनी को चेक कर लें. अब आपने जो पढ़ के सुनाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन
2: जी,
3: बिकॉज मोस्ट ऑफ अस टुडे आर अवेयर अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सिर्फ उसको ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं किया. सो वी थॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स व्हाटएवर आई वॉन्ट स्ट्रांगली,
2: I have to visualize that
3: and I will get it.
2: Hmm.
3: And aapne jo padha ki law of attraction is not what you want.
2: It is what you are.
3: It is what you are. Just look at the line. Means you will attract what you are. Ab agar main kahu mujhe ye banna hai. This is what I want. Mujhe itna paisa kamana hai is what I want. But what I am is a personality of doubt. अब want तो मेरे अंदर doubt करने की nature है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं,
2: हो सकता कि नहीं ये,
3: हाँ, और मेरे से better है. This is who I am. Means this is my thoughts. जब मैं उस target के बारे में सोचती हूँ, I create very powerful positive thoughts. नहीं नहीं, मुझे करना है, मुझे बनना है. लेकिन जो मेरी personality है, मेरी thought process है, वो डाउट करने की है, वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की है, आत्मविश्वास की कमी है, हीन भावना है अपने बारे में, दूसरों को देखने की आदत है, दूसरों जैसा बनने का संस्कार है, दूसरों को कॉपी करने का संस्कार.
2: ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप जो बात कर रही हैं अभी, तो लाखों करोड़ों रुपए की किताबें बिकती हैं, लाखों करोड़ों रुपए की टिकट्स बिकती हैं, लोग इसके क्या शिविर मतलब जो भी है,
3: रिट्रीट्स वर्कशॉप करते
2: हैं. बट उन्होंने यहाँ ये कहा कि आप बस उसको इमेजिन कीजिए कि मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, और ये देखिए अपने आप हो जाएगा.
3: और इसीलिए आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने वो किया लेकिन वो हुआ नहीं, मैंने विजुअलाइज किया।
2: मुझे ये पॉइंट आपका बहुत पसंद आया कि मैंने क्यों किया, देखा कि बाजू वाले को मिल गई उसकी जेलसी में। आई एम जेलस बट वॉट आई वॉन्ट इज दैट कार,
3: राइट।
2: तो इन्होंने किताबों में ये लिखा है कि एक औरत जाती थी, रोज विजुअलाइज करती थी कि शोरूम में गाड़ी देखी, लाल गाड़ी, कि मैं उस गाड़ी को चला रही हूँ, एक दिन मुझे वो गाड़ी मिल गई,
3: राइट।
2: एक जादू है।
3: सी, आप जो एक एम रखेंगे, नहीं जादू नहीं है, जैसे आपने एक एम रखा कि मुझे एक्टर बनना है तो बन गए ना।
2: मैं जेलेसी से नहीं बना ना।
3: नहीं, सपोज एक जेन्युइन एम,
2: मैंने मेहनत की ना,
3: तो मेहनत
2: मैंने अपनी फोटो खींची, फोटो खींच के देखा कि वेदर मैं फोटोजेनिक हो के नहीं, बाकी दूसरे फोटोग्राफ लगा के देखे, अपनी हाइट देखी, देखा, फिर रेडियो स्टेशन गया, रेडियो स्टेशन में मैं अपनी वॉइस टेस्ट की, स्टेज शोज की हैदराबाद में, रविंद्र भारती में, लोगों को इनवाइट किया, उनके ओपिनियन लिए, फिर फिल्म इंस्टीट्यूट गया।
3: लेकिन ये सब कुछ किया, और ये सपोज बहुत लोग करते हैं,
2: तो
3: यू विल गेट व्हाट यू आर, इसको देखें।
2: तो मैं व्हाट एम आई, तो इसमें मैं क्या था, मुझे क्यों मिला,
3: इज विल पावर। व्हाट एम आई इज डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की शक्ति, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं कहीं भी। यू विल गेट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट।
2: ये शक्ति तो फिर उसमें है, जब वो एडमिशन फॉर्म था जिसमें लिखा था कि क्या नाम है, क्या करना चाहते हैं। अगर एक्टिंग कोर्स में सिर्फ 8 सीट थी, 2 फॉरेनर्स की, मतलब हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में एक्टिंग कोर्स में जाना चाहते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 8,
3: राइट।
2: तो उसमें से मैंने लिखा आइदर एक्टिंग और नथिंग एल्स। नीचे अगर एक्टिंग कोर्स में नहीं मिला तो आप एडिटिंग कर लीजिए, कैमरा कर लीजिए, बाकी के कोर्सेज हैं कर लीजिए। आई सेड नथिंग डूइंग, नो फिल्म अप्रिसिएशन, नथिंग, एक्टिंग ओनली,
3: राइट। सो विल पावर,
2: क्लैरिटी,
3: डिटर्मिनेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस।
2: ये तो अपने आप को चेक करके आया ना, टेस्ट भी तो किया था,
3: तो डेस्टिनी बनी ना। लेकिन सी, टेस्ट तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग होंगे जो गुड लुकिंग है, टैलेंटेड है, वॉइस भी अच्छी है, कई बार तो इन्फ्लुएंस भी है औरों का कि सब कर देंगे, लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट, बट व्हाट एम आई। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है साथ में, और किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, कोई भी चीज जो आपको अचीव करनी है, उस चीज को अचीव करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, सिर्फ डिजायर नहीं उस चीज को अचीव करने का, दैट्स व्हाट इट सेज, यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू आर। व्हाट आई वांट, एक डिजायर, एक गोल कि ये दिस इज व्हाट आई वांट, बट आई विल गेट ओनली अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम। सपोज मुझे एक बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए, कोई भी पेरेंट चाइल्ड रिश्ता, पेरेंट कहेंगे मुझे बच्चे के साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। लेकिन व्हाट एम आई, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत क्रिटिकल बच्चे के प्रति, बहुत पोजेसिव, सफोकेटिंग, तो आई मे वांट बट आई विल नॉट गेट, आई विल गेट व्हाट आई एम। दिस डिफरेंस मेरे को बहुत,
2: आई वांट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, इफ आई am friendly,
3: I am accepting, I am non-judgmental, not only I am friendly, friendly means kya, I accept my child, मैं critical नहीं हूँ, मैं appreciate करता हूँ, मैं उसका comparison नहीं किसी और के साथ करता सारा दिन, मैं उसको हमेशा motivate करता हूँ, मैं उसको accept करता हूँ, मेरा प्यार उसके प्रति unconditional रहता है, ये सब कुछ मैं करूँगा, then I will get that relationship what I want. लेकिन वॉन्ट है कि आई वॉन्ट अ नाइस रिलेशनशिप, आई वॉन्ट अ गुड फ्रेंडशिप, लेकिन मैं डाउट करता हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ ना, आई वॉन्ट,
2: और मैं वो चाहता हूँ ये बने जो मैं चाहता हूँ,
3: एब्सोल्युटली,
2: उसकी चॉइस भी मुझे पसंद नहीं,
3: यस यस, मैं दूसरों को अपने
2: की हो या शादी की हो, या उठने बैठने की हो, मेरी चॉइस के फ्रेंड्स हो, मेरी चॉइस की तुम गाड़ी चलाओ, मेरी चॉइस के तुम कपड़े पहनो,
3: कंट्रोलिंग ना, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कुछ और बनाने की, व्हाट आई वांट, व्हाट आई एम, सिर्फ वांट से नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुझे आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दैट, यू विल नॉट गेट इट बाय वांटिंग। इवन अगर आप दिन में यू नो क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर कहे वो थॉट बार बार क्रिएट करो, बार बार क्रिएट करो, वो विजुअलाइज करो, उसको कागज पे लिखो, अपने सामने रखो, उसमें कोई डाउट भी मत क्रिएट करो. सपोज आई से आई वॉन्ट अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, नो डाउट आई वॉन्ट, बट वॉट अबाउट द क्वालिटीज विच आर नीडेड टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप? यू वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड एक्टर, वॉट अबाउट द क्वालिटीज विच आर नीडेड टू बिकम अ वेरी गुड एक्टर? स्किल्स एंड टैलेंट्स एक बात है, स्किल्स एंड टैलेंट्स डिवेलप भी हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी क्या मैंने डिवेलप की जो मुझे वो वॉन्ट मिल जाए? तो अब जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ वर्क करेंगे, हमें ये याद रखना होगा, माय थॉट्स बिकम डेस्टिनी, नॉट माय डिजायर्स बिकम डेस्टिनी, नॉट माय टैलेंट बिकम्स डेस्टिनी, माय थॉट्स बिकम डेस्टिनी. तो थॉट को क्लीन करना होगा, थॉट की चेकिंग करनी होगी. आई विल गेट हु आई एम.
2: मेरा एक दोस्त था, बड़ी अच्छी बात उसने कही कि यार मेरा अस्थमा जाता ही नहीं था, तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि चलो वो फलाने फलाने दादर में एक बहुत अच्छा होम्योपैथ है और उसकी दवा में उसकी खा लो तो आप ठीक हो जाएंगे. तो यार अपनी बीवी के सर में दर्द हो गया था, मेरे को मालूम था कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन मैंने 6 महीने उसके लिए खा ली. मुझे तो ना फेथ भी नहीं था और मुझे मालूम था ठीक नहीं होना. मैं कहा कि देख ला बेकार चीज होम्योपैथ, अभी देखो
3: राइट, क्योंकि ट्रस्ट नहीं किया.
2: नहीं अभी व्हाट आई एम
3: राइट,
2: आई वांट कि मैं ठीक हो जाऊं,
3: हो जाऊं,
2: लेकिन मुझे मालूम है इससे नहीं होना है.
3: सो नहीं
2: होगा, कितना कॉम्प्लिकेशन है.
3: एब्सोल्युटली. तो ये सारा दिन अब चेक करना है, क्योंकि थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी. जब ये क्लियर हो जाता है तो अब अपने भाग्य में, अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो एक ही व्यक्ति के पास जाना है,
2: अपने पास आना है
3: और कहीं नहीं जाना है.
2: मेरे पास जाऊं.
3: Absolutely.
2: I love this.
3: और कहीं नहीं जाना है और किसी से नहीं पूछना है, बस देख लेना है क्या चाहिए भाग्य में और उसको करते जाना है.
2: आज की सबसे अच्छी बात लगी है मुझे.
3: दिस इज बट वेरी इम्पोर्टेंट एंड दिस मेक्स अस वेरी पावरफुल कि मेरा भाग्य मेरी अपनी रचना है.
2: मैं कहां भीख मांगता फिरता हूं.
3: अब जब हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज यू गेट नॉट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर. अब हु आर यू? आत्मा. मैं कौन हूँ? जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो मैं हूँ वो मुझे मिलेगा. तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, बंडल ऑफ संस्कार एंड कार्मिक अकाउंट.
2: आत्मा.
3: मैं कौन हूँ?
2: संस्कार.
3: आत्मा, आत्मा जिसके बहुत सारे संस्कार हैं एंड जिसके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट है.
2: जी.
3: ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट भी आर व्हाट आई एम. मैंने ही क्रिएट किए थे.
2: और प्रेजेंट में भी तो बना रहा हूँ ना.
3: प्रेजेंट में बना रहा हूँ, पास्ट के कैरी फॉरवर्ड भी तो कर रहा हूँ.
2: तो दोनों भी है ना.
3: जब हम
2: वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ फिर बना रहा
3: हूँ, प्रेजेंट भी बना रहा हूँ. अब क्या होता है, कई भाई बहने फिर लिखते हैं कि हमने अच्छी थॉट क्रिएट की, क्लीन थॉट क्रिएट की, सिंसियरिटी, मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फिर भी वो डेस्टिनी वो नहीं बनी जो चाहिए. थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी. ये मेरे साथ हर क्षण वर्क हो रहा है, ऑलवेज वर्क हो रहा है. अब कब वर्क हो रहा है? जब से मैं आत्मा इस यात्रा पर हूं. सिर्फ मैं जब से इस शरीर में हूं तब से नहीं. थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी ये फॉर्मूला सिर्फ इस शरीर में प्रवेश होने के बाद नहीं वर्क हुआ मेरे साथ. थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी ऑलवेज.
2: ये पॉइंट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं.
3: ऑलवेज. अब मैंने पिछले कॉस्ट्यूम्स में भी

0: सफलता नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। किसी और का कार्मिक अकाउंट है, वो मेहनत नहीं करता ज्यादा, उसे सफलता आती जाती है, आती जाती है, मिलती जाती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको डिलीट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इग्नोर करने से अभी दुखी हो जाते हैं और अब दुखी होकर अब का थॉट्स भी चेंज हो जाता है। इफ लेट्स से मेहनत करो सफलता नहीं मिल रही, मेहनत करो सफलता नहीं मिल रही, पॉजिटिव थॉट्स भी अब क्रिएट कर रहा हूं, क्लीन भी हो, ऑनेस्ट भी हो, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही उतनी जितनी आई वॉन्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई वॉन्ट इतनी सक्सेस, मेरे को डाउट भी नहीं है कुछ भी उसमें, 100% कन्विक्शन है, सिचुएशंस फेवरेबल है, सब कुछ प्रेजेंट में 100% से ज्यादा परफेक्ट है, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि एक फैक्टर और है और वो है मेरा पास्ट कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट। ये पास्ट कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट मेरी सक्सेस उतनी नहीं ला रहा जितनी मुझे चाहिए। अब ये देखकर मन डिस्टर्ब होता है, जैसे ही मन डिस्टर्ब होता है अब जो थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, दुख, चिंता, निराशा, होपलेस फीलिंग की व्हाट इज दिस, हाउ मच एम आई गोइंग टू वर्क हार्ड एंड नॉट गेट रिजल्ट। इफ एट दैट टाइम आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, अभी जो मेरी डेस्टिनी हो रही है इसमें एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर मेरी पास्ट थॉट्स का भी है, एंड पास्ट मीन्स पास्ट पास्ट पास्ट पास्ट कार्मिक अकाउंट्स का भी है। उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और ये ध्यान रखना है कि उसको देखते हुए अभी जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें कोई नेगेटिविटी ना आ जाए उस वजह से, तब वो डेस्टिनी इम्प्रूव हो जाए।
1: पॉइंट समझा नहीं, अगर मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है और मैंने पहले जो जो सोचा था, जो भी किया था, आज मेरी सक्सेस में वो बाधा डाल रहा है, तो मैं वीक नहीं हो जाऊंगा? ठीक है यार, मैं तो फेल ही होना था मुझे, मैं तो उल्टा मैं वो हो जाऊंगा डिप्रेस।
0: सपोज हम पैरामीटर रख के करते हैं इसको वापस, सपोज मुझे 100% चाहिए कुछ चीज में, इक्वेशन में 100%, सब फैक्टर्स परफेक्ट है, मेहनत भी परफेक्ट, मिलना चाहिए 100%, सब बोल रहे हैं आपको 100% मिलना चाहिए।
1: Yes. और मिल कितना रहा, 60-70?
0: चलो 50.
1: 50.
0: Okay, मिला 50. फिर मेहनत की 50. फिर मेहनत की 50. अब परेशान अगर हो गए, अब चिंता में चले गए,
1: वहम में चले जाएंगे,
0: वहम में भी चले गए,
1: अंगूठी पहन लो, ये पूजा करा लो,
0: अब जैसे
1: ये
0: उसमें गए तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस
1: कम हो गया,
0: कम हो रहा, तो लो कॉन्फिडेंस, अपसेट फीलिंग, इनसिक्योरिटी कि शायद मेरे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है। अब जैसे ही ये थॉट्स प्रेजेंट के, ये जो हो रहा है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पास्ट का था, लेकिन जैसे ही ये थॉट्स प्रेजेंट में क्रिएट होने लग जाए तो प्रेजेंट थॉट्स से भी डेस्टिनी है। तो जो 50 पर हम पहुंचे थे
1: 60 हो जाएंगे, फिर
0: 50 पर हम पहुंचे थे जब हमारी स्थिति अच्छी थी।
1: अच्छा, मतलब और रिवर्स कर दिया?
0: नेचुरली नो, मेरी स्थिति बिल्कुल अच्छी थी
1: तो और गिर गए।
0: सी आई एम 100%
1: 50 से 40, 40 से 30, हम तो उल्टा गियर में चले गए,
0: नेचुरली हो जाएगा।
1: हाँ।
0: क्योंकि आई एम एकदम कॉन्फिडेंट, मैंने मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन 50 मिला, मतलब जब मेरी स्थिति परफेक्ट थी
1: तब
0: तो मुझे 50 मिला,
1: और जब मैं फुल ऑफ नेगेटिविटी हो गया, निराशा आ गई और लोगों में जाके हाथ दिखाने लग गया, पूजाएं कराने लग गया, अंगूठियां पहनने लग गया,
0: तो अब मेरी थॉट्स नेगेटिव होने लग गई हैं, तो अब मेरी पास्ट कार्मिक अकाउंट उधर ही है, उसी पैरामीटर पर है, लेकिन प्रेजेंट थॉट्स
1: और नीचे गिरा रहे हैं,
0: तो मेरे को 50 से 40 हो जाएगा, और फिर वो मेरे पर प्रभाव डालेगा।
1: ये भी बिलीफ है ना,
0: 30, क्या
1: दिस इज नेचुरल ना, 100 बार फेल होता है बंदा तो गांव गांव गली गली दरगाह से मंदिर से चर्च से गुरुद्वारे से हर जगह जाता ही है ना।
0: सो इस इक्वेशन को याद रखना, लेकिन थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, 50 को एक्सेप्ट करना पहले,
1: 40 नहीं होने देना,
0: अगर 50 पे भी बने रहे, लेट्स से
1: फाइट करने वाले,
0: तो नो, लेट्स से आई रिमेन एट 50 फॉरएवर, फर्स्ट इजंट दैट ओके,
1: मच बेटर देन गोइंग टू 20,
0: दिस इज इट।
1: ये बड़ी अच्छी लगी बात,
0: दिस इज इट,
1: वेरी नाइस,
0: एक्सेप्टिंग कि मैं

0: अपना बेस्ट दे रहा हो. दिस आई हैव टू एक्सेप्ट.
1: मैं अपना बेस्ट देकर 50 पे तो हूँ और मेरे पास कार्मिक अकाउंट जितना भी डिस्टर्ब करे प्रेजेंट में मैं अच्छा बनाऊंगा.
0: एब्सोल्युटली. और
1: मतलब ये पॉजिटिव बात है.
0: ये पॉजिटिव है. और जो इतना डिटर्मिनेशन से इस पॉजिटिव पे चलेगा ना वो 50 से 60 पे जाएगा ही, क्योंकि उसने प्रेजेंट फैक्टर तो बहुत पावरफुल है ना. अगेन मैं डिक्लाइन पे ना चला जाऊं. अगर मुझे ये सारे पैरामीटर्स पता होंगे ना कि ये है मेरी प्रेजेंट क्वालिटीज. सपोज प्रेजेंट मेरे अंदर ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क, यू नो समबडी कैन बी लाइक दैट. मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे पास रिसोर्सेज है, परिस्थितियां फेवरेबल है, सब कुछ अच्छा है, तब मुझे 50 मिल रहा है. क्योंकि इन सब फेवरेबल सिचुएशंस और क्वालिटीज में एक फैक्टर है पास्ट कार्मिक अकाउंट, जो मैंने ही क्रिएट किया था मेरी थॉट्स के हिसाब से. वो फैक्टर थोड़ा सा मेरा अभी अनफेवरेबल लग रहा है. चार फैक्टर्स फेवरेबल, एक फैक्टर थोड़ा सा उसको नीचे खींच के 50 पे ले आता है. लेट मी रिमेम्बर, मेरे प्रेजेंट चार बहुत फेवरेबल हैं अभी भी, एक अनफेवरेबल है. लेकिन उस एक अनफेवरेबल फैक्टर को प्रेजेंट के फेवरेबल पर ना प्रभाव डालकर, नहीं तो मेरे सारे पांच अनफेवरेबल हो जाएंगे. मैंने डीमोटिवेट हो गया, सेल्फ डाउट क्रिएट कर लिया, दूसरों को देखकर जेलेसी भी क्रिएट कर ली, इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गया. तो पास्ट अनफेवरेबल था, अब प्रेजेंट अनफेवरेबल हो जाएगा. अगेन थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी.
1: ब्यूटिफुल.
0: दिस इफ आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस, आई हैव टू डू दैट. पास्ट इज अ वेरी पावरफुल डोमिनेटिंग फैक्टर.
1: तो सिस्टर ये बात बहुत पसंद आई मुझे कि पास्ट है
0: उसको एक्सेप्ट करना चाहिए.
1: एक्सेप्ट नहीं, देखिए मैंने नई गाड़ी खरीदी, आज मैंने खुद ही एक्सीडेंट मार दिया. उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि कोई मेरा दोस्त चला के मार दे या ड्राइवर ठोक के आ जाए तो मैं चिढ़ता रहूंगा. जब मैंने समझ गया, जैसे आपने समझा दिया मुझे अभी, कि जो कुछ मेरे पास्ट मैंने ही किया था, मेरी वजह से ही जो 50 पे अटका हूँ, तो एक तो वहाँ इतना गुस्सा और इतनी टेंशन और इतनी वो परेशानी नहीं, एक्सेप्टेंस आ गया. अब यहाँ से मुझे 50 का 60 करना है और 40 पे नहीं जाना है कि भाई हाथ दिखाने जाऊं, कुंडली दिखाने जाऊं, पूजा करो, नजर उतारो.
0: नॉट ओनली दैट, यहाँ पर ब्लेम, निराशा, निराशा नहीं आ
1: रहा. निराशा के साथ साथ मैं ब्लेम गेम मेरा दूर हो गया.
0: Yes. So it's very
1: कोई
0: important.
1: और मुझे गिरा रहा है.
0: Absolutely.
1: लोग मुझे गिरा रहे हैं, यहाँ कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, यहाँ कोई दूसरे लोग सिफारिश से आगे बढ़ गए, मुझे पीछे.
0: Very beautiful.
1: ये सारी मतलब आपसे बात करते करते ये मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं.
0: ये सारी चीजें मेरे प्रेजेंट थॉट्स को क्या कर रही है. ये सारे थॉट्स जो आपने बोले, दूसरों से कंपैरिजन, ये सोचना कि दूसरे मुझे गिरा रहे हैं या दूसरे कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, जिस ये सारे मेरे प्रेजेंट के थॉट्स.
1: मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो कहते हैं आम भाषा में,
0: ऑफिसेज में बोलते हैं. ये मेरी प्रेजेंट थॉट्स को क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में ले जा रही है.
1: एक्सेप्टेंस हो गया, ब्लेम करना छोड़ दिया, अब हम अपनी थॉट्स को
0: और पावरफुल बनाए, जिधर अभी है उससे. और जब भी अगर परिस्थिति अनफेवरेबल होगी, यू नो सिचुएशंस मेरी फेवर में नहीं जा रही है, और फिर भी मैं स्ट्रांग रहूं, तो हम अपनी शक्ति को कितना ऊपर उठा के ले जाते हैं.
1: ये स्ट्रांग कैसे रहूं, मैं अगले एपिसोड में पूछूंगा आपसे. बहुत इंटरेस्टिंग है. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू. ओम शांति.
1: थैंक यू सो मच. ओम शांति. नमस्कार.
2: लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट मीन यू गेट व्हाट यू वांट. It actually means you get what you are. Our thoughts and words are what we are. These vibrate to the universe and we get them back. What you are is a soul carrying sanskars and karmic accounts. So, what we are going to get will be according to our sanskars and karmic accounts. Thoughts create destiny is always true for the soul, whether in this costume or an earlier one. Costumes may change, but the thoughts created then will still create our destiny. Destiny is created according to our qualities and skills of the present एंड ऑल्सो कार्मिक अकाउंट्स ऑफ द पास्ट. इवन इफ वी आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, डू नॉट लेट एनी ऑफ द प्रेजेंट क्वालिटीज एंड कर्मास डिक्लाइन. इफ वी क्रिएट जेलसी, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, देन वी आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव प्रेजेंट. Accept the past carry forward and keep yourself strong and motivated in the present. If the present remains powerful and positive, we will gradually settle the past and create beautiful karmas which will influence our present and our future.
3: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है. नमस्कार, मैं हूँ अमोल. आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
4: कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो. शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी. भाव चढ़ रहे, नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे, रात कटेगी, तारे गिन गिन.
5: अच्छा,
4: इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो. अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी. अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया, कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया. अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ. पैसे, अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल, धान के शेर सुनाओ. नोन मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे. अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली. कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली.
5: अच्छा,
4: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है. शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है.
5: अच्छा,
4: मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है. इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो.
6: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
0: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए. तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं. किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे. अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना. दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं. सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है. द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन. आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे। सो वी नीड टू से।
6: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपके बीच लेकर आई हूँ ज्ञान की कुछ बातें। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं जिसकी एक सुंदर सी अभिव्यक्ति है, क्षमा। हर मनुष्य की अपनी एक अभिव्यक्ति होती है जिसमें क्षमा एक मुख्य अभिव्यक्ति है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि मेरे बहुत पहले मेरे पास एक मेरी एक फ्रेंड है जो कि जैन धर्म से बिलोंग करती है। उसके कुछ मैसेज आए जिसमें उनके द्वारा पूरे साल किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट या ना देना और दूसरों को मतलब क्षमा याचना की गई थी। तो दरअसल जैन पंथ का एक पर्युषण पर्व मनाया गया जाता है जिसके इसके लिए 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा होता है, जिसके अंतर्गत सभी मातावलंबी जो है क्षमा की भावना रखने का प्रयास करते हैं। हम पाते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म में भी अपने गुनाहों की तौबा करने की और सभी की खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए शबे बारात पर्व, जिसका अर्थ होता है मुक्ति की रात, मनाया जाता है। उनका मानना है कि इस रात को साल भर का लेखा जोखा अल्लाह के लिए पेश किया जाता है। लोग रात भर जाकर इबादत करते हैं। और ईसा मसीह जी ने भी उनका भी कहा है कि वह बाइबल में इस प्रकार से उनका मिलता है कि जिन लोगों ने पाप तुम क्षमा करोगे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। मतलब जिन लोगों के पाप को आप क्षमा करेंगे तो वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिन लोगों के पाप तुम क्षमा नहीं करोगे तो वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब ईसा मसीह जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो यानी कि हर धर्म में हर पंथ में क्षमा की बात करता ही है। हर धर्म क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कहा तो ये भी जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। परंतु हम समझते हैं कि बड़ों को ही नहीं छोटों को भी क्षमा चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं अब तक पश्चिमी देशों में से सुनने में आती थी वैसी ही अब भारत वर्ष में भी सुनाई देने लगी है। एक नगर में एक 9 वर्षीय स्कूली छात्रा द्वारा अपनी शिक्षिका की चाकू से हत्या कर दी गई। इसमें तो मतलब इससे तो यही पता चलता है ना कि क्षमा करने और क्षमा लेने का महत्व छोटे बड़े सभी के लिए बराबर का है। क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए विशाल हृदय चाहिए, सभ्य और विराट हृदय। संस्कृति की एक सुंदर अभिव्यक्ति है क्षमा। क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए भी विशाल हृदय चाहिए। सामान्य शिष्टाचार के कारण या बिना दिल की गहराई के किसी से छोटी मोटी भूल या गलती होने पर क्षमा मांग लेना या कर देना या खेद प्रकट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रास्ते चलते कभी स्पर्श हो तो या किसी की बात समझ न आने पर, अन्य दैहिक कार्य व्यवहार में छोटी गलती होने पर सॉरी कहना अच्छे संस्कार है। परंतु होता क्या है जब किसी से जानबूझकर अपमानित करने के संकल्प से काम क्रोध लोभ अहंकार या विकार व शारीरिक दुर्व्यवहार किया या हृदय भेदी शब्द बाणों की बौछार की, तब क्या हम दिल के स्नेह की गहराई से क्षमा कर पाते हैं क्या? गलती फिर न होगी ऐसा स्वीकार करने के बाद भी गलती करने पर क्या स्नेह का सागर बन स्नेह की रत्नों का भेंट कर दे सकते हैं क्या? हम वृक्ष की तरह पत्थर स्वीकार करके फल दे सकते हैं क्या? यदि इसका उत्तर हाँ है तो सचमुच हम क्षमा और स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा शिव की सच्ची देवी संतान है।
तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आगे की चर्चा हम जारी रखते हुए एक सुंदर अभिव्यक्ति क्षमा की ओर। सक्षम होते हुए भी क्षमादान महानता है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अर्थात क्षमा उसे ही शोभा देती है जिसके पास विश्व हो। जहाँ हम सक्षम नहीं थे वहाँ मजबूरी वश दिल पर पत्थर रखकर किसी को क्षमा कर देना या क्षमा मांग लेना यह भी अच्छी बात है क्या? परंतु सक्षम होते हुए भी किसी के दुर्लभ व्यवहार पर भी उसे ना समझ समझ कर क्षमा दान देना, आत्मवत सर्वभूतेषु वाली भावनाएं स्वतः ही दिल की गहराई को से जागृत हो जाना वास्तव में महानता है। ऐसे सच्चे संत वास्तव में उस चंदन की लकड़ी की तरह है जो सर्वगुणों से सुगंधित है, जिस पर अनेक विषधर लिपटे रहने पर भी वह सुगंध देने की गुणों का त्याग नहीं करती। एक है समदर्शी समव्यवहारी और एक है समदृष्टा ही क्षमाशील। जितना दुरूह है काम की कालीमा के वश, दुशासन कीचक या भस्मासुर वन नारी का अपमान करने पर क्षमा कर पाना, धरती माँ की तरह गड्ढा करने वाले को भी धारिणी बनकर रत्न फल प्रदान करना कितना विराट हृदय चाहिए। आज गाली देने वाले को गले लगाना तो दूर की बात है। जिन्हें हम स्वजन मानते हैं उनके प्रति एक शब्द भी किसी अन्य द्वारा कहे जाने पर अधिकतर हम शुभ भावना के पुष्प छिपा

रख लेते हैं, कई बार बात तक करना पसंद नहीं करते। वह जीवन पर्यंत वह क्रम चलता है, तो यह तो क्रम चलता रहता है। मेरा कोई अपना नहीं, कोई पराया भी नहीं, सभी के लिए समदर्शी, समव्यवहारी, समदृष्टा भाव वाला ही किसी को भी किसी भी गलती पर क्षमा कर सकता है। एक होता है दया भाव, अपकारी पर भी उपकार करने की भावना दया भाव से ही जागृत होती है, होगी ना? अभी नादान है, ना समझ है, भले ही बुद्धिमान है, लेकिन कहते हैं किसी अवगुण की वशीभूत है। ऐसे स्मरण मात्र से गलती करने वाले को क्षमा करने के लिए का भी भाव आ जाते हैं। तो क्या होता है, एक बार एक साधु पुराने से फटे हुए कपड़े पहनकर राग शरीर में लपेटे एक गांव से गुजर रहा था। गांव के शैतान बच्चों ने उस पर रेत कंकड़ फेंकने शुरू कर दिए, परंतु साधु ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और चलता रहा। तो आगे एक व्यक्ति ने भी एक पत्थर बच्चों की तरह साधु के ऊपर फेंक दिया, जो सिर में जाकर लगा। साधु रोने लगा। एक समझदार व्यक्ति ने पूछा कि जब बच्चे धूल कंकड़ मार रहे थे तब आपने कुछ भी नहीं कहा, जब आप अब आप रो रहे हैं तो क्या कहता है? साधु ने कहा कि बच्चे तो नादान थे, ना समझ थे, परंतु यह तो बड़ा था, समझदार था। हम समझते हैं कि ऐसे स्थिति में समझदार और उम्र में हाँ बड़े में को नादान समझकर क्षमा कर देने में बड़ी आत्मिक संतुष्टि होती है। एक होता है विश्व बंधुत्व के भाव, एक होता है विश्व बंधुत्व के भाव मतलब किसी के द्वारा क्रोध में आकर दुर्व्यवहार या शारीरिक उत्पीड़न किए जाने पर क्षमा केवल वही कर सकते हैं जो समस्त संसार को अपना समझते हैं, हर कदम पर शिक्षा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने ही माता पिता बंधु बांधव द्वारा कुवचन कहे जाने पर जिस प्रकार सहन कर लिया जाता है, उसी प्रकार विश्व बंधुत्व की भाव जागृत होने पर क्षमा स्वतः ही कर दिया जाता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर आकर मिलते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। क्षमा एक सुंदर अभिव्यक्ति, सभी के प्रति सम्मान भाव, सम्मान भाव या समान भाव होने पर ही क्या होता है, अवगुण चित पर नहीं आएगा, यानी कि और क्षमा कर सकेंगे, मतलब परम पिता परमात्मा शिव के अव्यक्त महावाक्यों के अनुसार सम्मान देने वाला सबके दिन में मान्य स्वतः बन जाता है। सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को सम्मान देना देना नहीं, लेना है। ब्रह्मा बाबा ने आदि देव होते हुए भी, ब्रह्मा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सभी बच्चों को सदा सम्मान दिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह के बीज होंगे। विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी आत्मा भी हम तभी बन सकते हैं, तभी हम इसका अनुभव करते हैं, जब हम आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हैं। सम्मान देने वाले बच्चे ही आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है, क्योंकि जिनको सम्मान देता है उन द्वारा दिलों की क्या होती है, दुआएं मिलती है, जो सहज स्वमान याद दिलाती है। और अगर सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं तो सम्मानदाता बनो। हाँ, कोई कैसा भी है इसे सम्मान देना है, ऐसे नहीं कोई सम्मान दे तो मैं दूं, नहीं, यह तो बिजनेस हो गया ना, दाता नहीं हुआ। सम्मान दो तो मन में संकल्प रहता है, हाँ, यह हो, यह बदले में, यह ऐसा करे, वह करने लगे लग जाए। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन करना। एक होता है, एक है क्षमा करना, दूसरा है क्षमा मांग लेना। तो इसमें क्या होता है, केवल क्षमा करना ही नहीं, लेकिन गलती होने पर क्षमा मांग लेने के लिए देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। हाँ, और हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हम तो बड़े हैं, यह कोई हमारा बॉस है क्या, ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचने वाले लोग गलत होने पर भी क्षमा मांगना तो दूर, झुकना भी पसंद नहीं करेंगे। केवल मुख द्वारा क्षमा मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु हृदय से अपनी कमी को स्वीकार कर क्षमा मांग लेने वाले ही अधिक प्रकार के टकराव और तनाव से सहज मुक्ति मिल जाती है। उन्हें गलती स्वीकार करने पर गलतियों को कई बार क्या होता है, माफ भी हो जाती है। कितनी गलतियां जो होती है वो माफी भी हो जाती है उसकी, जो दिल से अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। और जिन्हें पश्चाताप होता है ऐसे क्या होता है, सह हृदय माफी मांगने में संकोच करते हैं, नहीं करते हैं। और लोग उन्हें क्या करते हैं, उन्हें माफी कर देते हैं। कभी कभी हम गलतियों पर पर्दा डालने के लिए क्या करते हैं, झूठ छल कपट का सहारा लेते हैं। बाद में उस गलती को सार्वजनिक हो जाने पर हम क्या करते हैं, कोई भी माफ करने पर संकोच करता है। लोग भले ही स्वयं कैसे भी हों, हाँ, परंतु दूसरों से सच्चाई की अपेक्षा अवश्य रहती है। नारियों में भक्त शिरोमणि मीरा हो या पश्चिमी विद्वान सुकरात, दोनों ने ही जहर के क्या कहते हैं, जहर के प्याले को खुशी से पी लिया था और क्षमा कर दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक आदिदेव ब्रह्मा बाबा ने समाज में इतनी प्रतिष्ठा उनकी होते हुए भी इस ज्ञान यज्ञ का विरोध करने वालों, स्वयं को गाली देने वालों, लाखों भवन में आग लगाने वालों को, कलंकित करने वालों को भी क्या किया, क्षमा किया। लोगों की एक धारणा यह भी है कि भारत के गुलामी राजा पुरु और पृथ्वीराज चौहान द्वारा आक्रमणकारियों के लिए नरमी और क्षमा के कारण हुई, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी को क्षमा करने से नहीं, वरन ऐसा होता है आपसी, हाँ, वैमनस्व, और एक होता है कि के कारण लोगों के द्वारा उनके साथ किए गए
एक विश्वासघात के कारण ऐसी घटनाएं घटित हुई। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। और चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं क्षमा एक सुंदर अभिव्यक्ति की ओर। दिल को मिलता है बड़ा सुकून, दिल को मिलता है सुकून किस चीज से? क्षमा मांग लेने से और फिर क्षमा प्राप्त हो जाने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जीवन कमल पुष्प समान खिल उठता है, मन मयूर नाच उठता है और शारीरिक बीमारियों पर भी नियंत्रण हो जाता है। इसी तरह एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति साधु के पास पहुंचा और कहा कि वह बहुत दुखी है। साधु जानता था कि इसने बहुत सारे अपराध किए हैं। उसका हाथ देखने के बहाने कहते हैं, उन्होंने बताया कि आपकी आयु अब केवल एक पक्ष यानी कि 15 दिन ही शेष रह गए हैं। एक सप्ताह बाद आ जाना, तुम्हें सुख का मार्ग बता दूंगा। वह व्यक्ति चला गया, परंतु जाने के बाद उसने यह सोचकर कि अब तो जाना ही है तो क्यों ना जिससे भी धन का हिसाब है वह चुका दिया जाए, जिस जिस के साथ अपराध हुए हैं उनसे माफी मांग ली जाए। उसने यही किया। सातवें दिन खुशी खुशी पहुंचा और साधु को बताया कि जिस जिस से के साथ मैंने गलत किया था या उनसे मैं माफी मांग ली है और जिनसे भी मेरा हिसाब किताब था वो सारे हम चुका दिए हैं। अब मैं पूर्णता क्या हूँ, निश्चिंत हूँ और खुश हूँ। मौत चाहे अब आ जाए, कोई चिंता नहीं। साधु ने कहा कि अब आप निश्चिंत होकर जियो, यही सुख का मंत्र है। तुम्हारी आयु अभी बहुत शेष है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम अपने मन में अगर किसी के प्रति कुछ गलत भाव रखते भी हैं और हमें पता रहता है कि हमने ये गलतियां की, तो उसकी चुप्त हो जाने से हम खुद ब खुद क्या होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। तो अंत में यही निवेदन है कि यदि अवश्य भावी महाभारत को किसी के क्षमा मांगने और क्षमा करने मात्र से रोका जा सकता है तो हे आत्मन क्या करना है? अभी तक जो तुमने लोगों के दंश सहे हैं उन्हें भुलाकर सभी को अपना समझकर स्वयं को और सृष्टि की जितनी भी जीवात्माओं को थोड़े दिनों का मेहमान मानकर क्षमा करते चले और जाने अनजाने में भी किसी के प्रति कुछ स्वयं से गलत हुआ है उसे हृदय से स्वीकार कर माफी क्या करना है माफी लेते चले तो घाव समय द्वारा भी भर जाएंगे और वे हमारी शुभ भावना क्या होगा, शुभ भावना रूपी मरहम से तत्काल ही भर जाएंगे। किसी ने कितना अच्छा कहा है, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी आसान कर ली, किसी को माफ किया, किसी से माफी मांग ली। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।